प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिन्नाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और मैं हूं आपकी अपनी आरजी याजू, आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत करती हूं। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से अभी सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारे आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ही साल 2026 अक्टूबर महीने का मंगलवार दिन और तारीख है 13। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और तेज दुनिया की ताजातरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक टी तंगजंग और तकनीकी अभियंता गोलो कालो। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 6:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों से आपको एक पॉजिटिव स्टार्ट मिलेगा। 6:40 सुनिए गालो दैनिक न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 6:45 देश है सुबह से पहले, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनिए आप अकानी डायलेक्ट न्यूज। 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट प्रोग्राम, जहां आपको मिलेगी लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए तागिन डायलेक्ट न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूदी म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8 बजे सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: 8:30 प्रस्तुत है नॉर्थ ईस्ट न्यूज पूर्वोत्तर के खास खबरों के साथ 8:40 सुनिए हेलो ईटानगर इन्फॉर्मेशन और म्यूजिक का एक परफेक्ट मिक्स। 9 बजे फिर से हिंदी न्यूज। नौ बज के 5 मिनट रहेगा इंग्लिश न्यूज। 9:10 एंजॉय कीजिए फिल्मी कपशप, जहां होंगे बॉलीवुड अपडेट्स, मूवी रिव्यूज, ओटीटी रिलीजेस और एंटरटेनमेंट की बातें। 10:10 शुरू होगा रेडियो ऑन डिमांड, जहां बजेंगे आपके पसंद के गाने और स्पेशल रिक्वेस्ट। तो दोस्तों बने रहिए अरुण एफएम के साथ, क्योंकि यहां हर सुबह होती है खास। आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ तस्करी, अवैध वित्तीय लेन देन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल की खाड़ी, बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित

गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले सुर और भक्ति से भरे गीत। पेश है भक्ति गीत।

दोस्तों, ये था आज का भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांति होगी। तो अब आप सुन पाएंगे गालो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

Si Akaswani Tanagara Tangatamrogam Jabamdu la pura polgo lorego la lobna ne gali arsaka kalau menken aku memelin jira menken men jinango gumarlendo Deputy Chief Minister nimu chona meni Tanagara lo gobon lo Governor nimu KT Parnaik de dubam do rango state ga laga ba din sina ko ma ka tau min si ge ba kaba do da lo infrastructure ok kanik deputy ga babam ne japa do la state ga chanyo chara lo ka doro lo ko motor badu bada sigim ne nechi ba indo ba मगर केंद्र अमला पार्मिनितो मेंठाला सेंट्रल ओके स्टेट अमने पांडिंग जिनाम ओके मोग स्टेट सो का आरेना 2026 लोके गोला 29 लोबा यदिन आइन मुर्को को योना सेक्टर लो मोलिक केंद्र दगम कोम पार्मिनितो ला सेकंड आगर लोके रिले इन बोलो मोग स्टेट का अनएम्प्लॉयड यूथ का दकम रगर दुगो अमने पार एम तो ओके स्पोर्ट्स गबाब लो जपा दो ला गवर्नमेंट दिन सिब मधुम दोना कम लासिन मेंटो गवर्नर बे मेंठाला स्किल डेवलपमेंट टूरिज्म हॉर्टिकल्चर Apaji am Tamili nam sigim ne yudga de dinciaba rige kamla mentu. DCM arena lubu pologa lorigola lopi alolo nam sai district loka sankhya muni buddha ga pilik namamne kobaram padula governor ne topnama gomemne jilen geba. Arunachal Pradesh University ga vice chancellor professor Asan Reddy lona lolo governor ne Keti Parnaik lo goban ithanagala dubam dola university amne yoba tusibala kendak de gamne parmenji tu. So governor menkenla Arunachal Pradesh University segi Arunachal Soka Aken Chechik University City segim ne aliba kachi tama kup lagi Abdullah University Soka faculty student Richards Rina Naru amne leken ba mayu hagi dola university amne kaken barak toka amla doyita to mental academic excellence amne dinsi ba mega bru toka Abdullah state government ka pela loka yo na development abago kadum kendak de gamne ko kem kadum ram to Doni logo ko balodum tanam Ford Prime Minister Youth Camp amne jut alolo aniniga government higher secondary school ka auditorium lolor abge ba donya lolo MLA Mutsumiti la Colonel Aditya Kulkarni muni pulik dola camp amne rikok mengkok jige ba camp sigin ne din sina ko bata dula Arunachal ga chamni ko la kan district lok 243 incident ko pulik dola donya lolo lo emle be state cultural diversity amne kadu la naru youth pulik ne gadam ne aken aken ga ada kadak na tribes ok ga bumura re nitom do yu jeli bali dokor te kor pom respect minji to ka amla main tu kanal nigom kom school au gadam ne army gad ga discipline amne kala state ok nation ga laga ba dins be madum dola army lokom relik dola bharat des amne kagu ru to ka amla do yu tage ba tanga don galo menken agom sin akashvani thanagar lok tafadu लोन अलो लो यूफिया डिस्ट्रिक्ट आई सी डी एस सेल का फेला लोक कैपिटल कॉम्प्लेक्स का लोकल कमिटी मेंबर्स एम ने गोकुम दोला डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स के कॉन्फ्रेंस हॉल लो दिन सी नकबा को दूगा तो कबा दो दग लो निगम का दसिलो मरो का सेक्सुअल हैरेसमेंट केस एम ने लोदुम नम एम का दोला पोस्ट एक्ट ओके सी बुक्स पोर्टल का बाब एम ने मेंटम तू सो गो निजी राज्य में एम ने अगर रिक लो दोलूरिक में लो दग ऑफिस लो दग Yedu alma ba jetala damla rola mutu chirela rinam ne cbox portal so adola complain amne menlik to ka amtu agam kala government force act amne kala dodla patak tum sako karam aji ama dorma jago karam ok modik rike jago karam agam ne pak mar amtu Dehradun government college Arunachal Pradesh state commission for women ka phela lok awareness program ko lodum ga to do nyalo lo chairperson nili yalem taga burum College out of them, cyber crime or drugs, lock out the root of them.

दोस्तों आप सुन रहे थे गालो बोली में समाचार। सुप्रभात, मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजो आकाशवाणी ईटानगर पर। दोस्तों खबरों के बाद अब अगले थोड़े वक्त के लिए हम बात करने वाले हैं सिर्फ अपनी सेहत, अपनी एनर्जी और आपके रूटीन की, क्योंकि शुरू हो रहा है हमारा शो सुबह से पहले।

200 दिन भर की भागदौड़ शुरू होने से पहले ये वक्त हम निकालते हैं ताकि बॉडी और माइंड दोनों को सही ट्रैक पर सेट कर सके। यहाँ हम डेली योगा पोस्चर से लेकर क्विक मॉडर्न वर्कआउट्स और ऐसी स्मार्ट हेल्थ हैबिट डिस्कस करेंगे जो बिना ज्यादा टाइम लिए आपको फिट रखे और साथ में चलता रहेगा बेहतरीन म्यूजिक। तो शुरुआत करते हैं सीधे बॉडी को स्क्रेच देकर। आज की योगा टिप में प्रैक्टिस कीजिए तदासना यानी माउंटेन पोज। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करके सर के ऊपर ले जाइए, पाम्स ऊपर की तरफ।

एक गहरी सांस लेते हुए पूरी बॉडी को ऊपर खींचे और धीरे से अपने हील्स को जमीन से उठा लीजिए। टोज पर बैलेंस बनाइए। 15 से 20 सेकेंड यहां होल्ड कीजिए और धीरे से वापस आइए। यह न सिर्फ आपकी पूरे बॉडी अलाइनमेंट को ठीक करता है बल्कि स्लीपी मसल्स को इंस्टेंटली वेकअप कर देता है। एक अच्छे से स्ट्रेच लीजिए और एंजॉय कीजिए ये पहला गाना।

दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से सुबह सवेरे में। अभी हमने बात की कि शरीर को लचीला और मन को शांत रखने की, लेकिन हमारे शरीर को दिन भर चुस्त रखने के लिए फिजिकल एक्सर्शन या कार्डियो मूवमेंट की भी उतनी ही जरूरत होती है। अगर आपको योगा करने का मन ना हो तो नियमित व्यायाम को अपनी आदत बनाइए। व्यायाम का मतलब हमेशा जिम जाना या भारी वजन उठाना ही नहीं होता। हमारे ईटानगर की ऊंची नीची सड़कों पर 30 मिनट की तेजी से की गई ब्रिस्क वॉक किसी भी कार्डियो वर्कआउट से बेहतर है। ढालन पर चढ़ते वक्त आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जो दिल की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा घर पर ही जैसे बेसिक बॉडी वेट मूवमेंट जैसे स्क्वाट्स, थोड़े आर्म रोटेशन और हल्की स्ट्रेचिंग हमारे जॉइंट्स की लुब्रिकेशन को बरकरार रखते हैं। उम्र चाहे जो भी हो, हर दिन थोड़ा पसीना बहाना और मसल्स को चैलेंज करना हमारी बोन डेंसिटी और एनर्जी लेवल को जिंदा रखता है। याद रखिए दोस्तों, एक घंटे का आलस पूरे दिन की थकान बन जाता है और 15 मिनट की मेहनत पूरे दिन की ताजगी। चलिए इसी पॉजिटिविटी के साथ सुनते हैं हमारा अगला गाना।

तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आते हुए बात करते हैं उन छोटी आदतों की जो बिना किसी मेहनत के हमारे सेहत को सुधार सकती है। सबसे पहले नियम, सुबह उठते ही खाली पेट कम से कम 2 गिलास गुनगुना पानी पीना। यह आपके मेटाबॉलिज्म को किक स्टार्ट करता है और रात पर जमा हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है। दूसरी बात, सुबह का नाश्ता कभी मत छोड़िए। अक्सर जल्दबाजी में लोग बिना खाए निकल जाते हैं, जिसे दोपहर आते आते कंसंट्रेशन और एनर्जी दोनों गिरने लगते हैं। अपने नाश्ते में प्रोटीन और सीजनल फ्रूट जरूर शामिल कीजिए। और आखिरी बात, दिन भर में पानी पीने का ध्यान रखिए और काम के दौरान हर 1 घंटे में 2 मिनट खड़े होकर शरीर को स्ट्रेच जरूर कीजिए। सेहत किसी एक दिन के मेहनत से नहीं बनती, ये हमारे रोज के छोटे फैसलों का नतीजा होती है।

200 घड़ी की सुइयां बता रही है कि अब सुबह सवेरे के इस सफर को यहां समाप्त करने का वक्त हो चुका है। उम्मीद है आज की बातें आपके दिन को बेहतर बनाने में मदद करेंगी। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर के साथ अगले कार्यक्रम के लिए। मैं आपको मिलूंगी ठीक 5 मिनट बाद।

आपदानी बोली में समाचार के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ आपकी आज की आरजे याजू आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम से। खबरों के बाद अब वक्त है हमारे सुबह के सबसे खास सफर का।

ये है हमारा मॉर्निंग इंफोटेनमेंट शो। सुबह की शुरुआत सिर्फ भागदौड़ में ना बीते, इसीलिए अगले थोड़े वक्त के लिए हम बैठ रहे हैं आमने सामने। यहाँ हम ताजा तरीन खबरों पर बात करेंगे, इतिहास के दिलचस्प पन्नों को पलटेंगे, नई जानकारी शेयर करेंगे और साथ में सुनेंगे बेहतरीन म्यूजिक। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की तारीख यानी 13 अक्टूबर के ग्लोबल इतिहास से। दुनिया भर में आज के दिन क्या बड़ा हुआ था, आइए जानते हैं।

अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में 1792 में व्हाइट हाउस का कॉर्नरस्टोन आज ही के दिन रखा गया था। जॉर्ज वाशिंगटन ने इसकी साइट चुनी थी और तब से ये ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा पावर सेंटर बना हुआ है। आज ही के दिन 1773 में फ्रेंच एस्ट्रोनॉमर चार्ल्स लिसियर ने पहली बार स्पेस में स्पाइरल गैलेक्सी डिस्कवर की थी, जिसे वर्लपूल गैलेक्सी नाम दिया गया। इसने ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस को बदलकर रख दिया था। आज ही के दिन 1884 में वाशिंगटन में हुई एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में ग्रीनविच को दुनिया के यूनिवर्सल स्टैंडर्ड टाइम यानी प्राइम मेरिडियन के रूप में चुना गया, जिसे आज हमारी घड़ियां सेट होती है। वही आज ही के दिन 2010 में सैन जोस कॉपर माइन में 69 दिनों तक जमीन के नीचे फंसे सभी 33 माइनर्स को आज ही के दिन सेफ बाहर निकाला गया था। ये मॉडर्न ह्यूमन रेस्क्यू हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिरेकल माना जाता है। दोस्तों, जब हम ऐसी घटनाओं के बारे में सोचते हैं ना, खास तौर पर उन 33 माइनर्स की कहानी, तो एक बात समझ आती है, इंसानी हौसले अगर मजबूत हो तो अंधेरे से अंधेरे वक्त से भी रास्ता निकल ही आता है। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें चल रही हो, उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िएगा। इसे पॉजिटिविटी के साथ लीजिए मजा इस खूबसूरत पहला गाने का।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते हैं, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण एफएम पर मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, मेरे यानी आपके आरजे के साथ। दुनिया का राउंड लगाने के बाद अब आते हैं अपने वतन हिंदुस्तान के इतिहास पर। 13 अक्टूबर की तारीख हमारे देश के लिए भी कई मायनों में बेहद यादगार रही है। आज ही के दिन 1999 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आज ही के दिन के तीसरे बार देश के प्राइम मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी, जिसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 1987 में इंडियन सिनेमा और म्यूजिक के सबसे वर्सटाइल गायक और एक्टर किशोर कुमार जी ने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा था। उनकी आवाज आज भी हर रेडियो लिसनर के लिए पर राज करती है। 1911 में स्वामी विवेकानंद जी की मुख्य शिष्य मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, जिन्हें हम सिस्टर निवेदिता के नाम से जानते हैं, उनका आज ही के दिन निधन हुआ था। उन्होंने भारत में विमेन्स एजुकेशन और सोशल सर्विस के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। 1895 में इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे पहले टेस्ट कैप्टन कॉलोनल सी के नायडू का जन्म आज ही के दिन हुआ था। उन्होंने भारत में प्रोफेशनल क्रिकेट की नींव रखी थी। सोचकर देखिए दोस्तों, एक तरफ किशोरदा का गीत है जो हमारी खुशी और दर्द दोनों के साथी है, और दूसरी तरफ सिस्टर निवेदिता और सी के नायडू जैसे पर्सनैलिटीज है जिन्होंने अपने काम से देश को नया आकार दिया। इतिहास हमें बस यही सिखाता है कि इंसान चला जाता है, लेकिन उसका काम और उसकी लेगेसी हमेशा जिंदा रहती है। इसलिए हर सुबह को एक नया मौका समझिए कुछ अच्छा करने का। चलिए सुरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं ये अगला लाजवाब गाना।

वेलकम बैक टू मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट आकाशवाणी अरुण एफएम पर। इतिहास की बातों के बाद अब सीधे आते हैं हमारे स्टेट और आसपास के माहौल पर। नजर डालते हैं दी अरुणाचल टाइम्स की आज की मुख्य खबरों पर। लिपिन एते टू रिप्रेजेंट इंडिया एट वर्ल्ड

कराटे चैंपियनशिप अरुणाचल प्रदेश के लिए एक गर्व का लम्हा। स्टेट की टैलेंटेड कराटे लिपिन अतर को अपकमिंग वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए सेलेक्ट किया गया है। लिपिन ने नेशनल लेवल पर लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है और अब वो इंटरनेशनल स्टेज पर तिरंगा लहराने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूरे स्टेट के दुआएं उनके साथ है। फोरम सीक्स सेपरेट रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया फॉर फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स। फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स के एक ज्वाइंट फोरम ने स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट से अपील की है कि फॉरेस्ट सर्विस रिक्रूटमेंट्स के लिए अलग से क्राइटेरिया तैयार किया जाए। फोरम का कहना है कि प्रोफेशनल फॉरेस्ट्री ग्रेजुएट्स जो सालों स्पेशलाइज्ड डिग्री लेते हैं उन्हें रेगुलर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान उनकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन के आधार पर प्रॉपर वेटेज एंड सेपरेट रिजर्वेशन मिलनी चाहिए ताकि फॉरेस्ट मैनेजमेंट बेहतरीन हो सके।

GYO seeks coordination meeting over Akajan Likabali Bame Road. Gala Youth Organization ne administration, construction agencies aur local stakeholders ke beech ek emergency coordination meeting bulane ki maang ki hai. Ye meeting Akajan Likabali Bame Road ki current condition aur construction delay ko lekar maangi gayi hai. GYO का कहना है कि कंटिन्यूस बैड रोड कंडीशन की वजह से कम्यूटर्स और लोकल बिजनेस को डेली ट्रैफिक डिस्ट्रप्शन झेलना पड़ रहे हैं जिसे जल्द रिजॉल्व करना जरूरी है. एनोमैलीज इन शॉर्टलिस्टिंग एंड रिक्रूटमेंट प्रोसेस. स्टेट में ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर कैंडिडेट्स और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स ने शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया में अलेज्ड इरेगुलरिटीज और एनोमैलीज का मुद्दा उठाया है. एसपीएन ने ट्रांसपेरेंसी की मांग करते हुए कहा है कि स्क्रूनिटी और शॉर्टलिस्टिंग प्रोसेस बिना किसी बायस अप्रोच के स्ट्रिक्टली मेरिट एंड सेट गाइडलाइंस के मुताबिक पब्लिश होनी चाहिए ताकि जेन्युइन कैंडिडेट्स के साथ जस्टिस हो. नीड फॉर रिजिड एक्शन ओवर CMYKY चीफ मिनिस्टर युवा कौशल योजना. यूथ स्किल डेवलपमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन को लेकर लोकल बॉडीज ने स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग की मांग की है. स्पीकर्स ने हाईलाइट किया है कि चीफ मिनिस्टर युवा कौशल योजना के बेनिफिशियरीज तक फंड्स, ट्रेनिंग मॉड्यूल्स और ग्राउंड असिस्टेंट बिना किसी डिले को पहुंचे और इस स्कीम के एग्जीक्यूशन में रिजिड एक्शन और स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी तय की जाए ताकि यूथ को रियल एम्प्लॉयमेंट मिल सके.

तो दोस्तों ये थे हमारे स्टेट की मुख्य खबरें। इसके साथ ही हमारा मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट का ये सफर यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आकाशवाणी अरुण एफएम पर पहला ट्रांसमिशन का सिलसिला यही नहीं रुकता। इस गाने के बाद आपके लिए आने वाला है तागिन बोली में समाचार। तो रेडियो को का डायल कहीं मत बदलिएगा। मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। लीजिए मजा इस खूबसूरत गाने का।

आकाशवाणी ईटानगर स्टेशन ने शुरू हुए तागिनगाम वे ते घर से गम गुते पाई ते घर से गम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोग के प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर बिजली योजना PMBY ala nampam nampam meneng lo nam nam lo nam nyecer lo nam lo solar system go nom unit go ba poluni padu ba melek gite de ko so ge solar so ge skin som सेवा संकल्प अभियान के अनालोक मरब डिपार्टमेंट ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश लोक मलिन मलिक जी ते दुखने ला मिफा दुखो सो गे सेवा सेतु अनाम कैम गुनिका सो गे पोलोग सितंबर फोलोग आलो लोडिंग गुला लोक का इन्ने ने तरक लोक मलिन जिला एक खुला अक्टूबर फॉल होगा अलो लोरिंग वाला लोग कहने न तर तल गो बा मलिन जिते दुको सकेने कैंप रिगे कोलो रजिस्ट्रेशन डेस्क गो मलिन जिला रिते गे दुको सो स्कीम सम काउंसलिंग नाला बैंकिंग डेस्क गो मलिन गई खुला कंज्यूमर दे देंगा रजिस्ट्रेशन गो स्पोर्ट बे मलिक जिते दुकने ला मिफा दुको ओके सो बैंक लोन नाका लापा मो दुको बे रजिस्टर कुने बेंडोर्स दे दंगा क्वाटेशन गुका मलिन जिला रितग दुको सो अरालो सेबा सेतु कैंप गुनिका

तागिन बोली में समाचार के बाद सुप्रभात आप सभी को। आकाशवाणी अरुण एफएम पर मैं हूं आपकी अपने साथी यानी आरजे याजू। दोस्तों, कुछ गीत वक्त के साथ पुराने नहीं होते बल्कि उम्र के साथ और गहरे होते चले जाते हैं। जब भी वो बजते हैं, किसी पुराने सुबह की खुशबू, किसी पुराने आंगन की धूप और यादों का एक पूरा दौर साथ लेकर आते हैं और उन्हीं अनमोल नगमों को समेट कर हम शुरू कर रहे हैं हमारा खास सिलसिला सदाबहार। अगले कुछ वक्त हम गुनगुनाएंगे उन्हीं हमेशा बहार गीतों को जिनकी धुनों पर हम सभी बड़े हुए हैं, पर संगीत के इस सफर के साथ हम नजर डालेंगे आज के मौसम भी ताकि आपका दिन बेहतर प्लान हो सके। तो चलिए यादों की इस महफिल का आगाज करते हैं एक बेहद प्यारे गोल्डन एरा के नगमे के साथ। सुनिए और महसूस कीजिए इस संगीत का सुकून।

दोस्तों आप सुन रहे हैं सदाबहार आकाशवाणी अरुण एफएम पर। सुरो की इस ढालन के साथ आइए रुक करते हैं आईएमडी अरुणाचल प्रदेश के ताजा वेदर बुलेटिन की तरफ। बात करते हैं पहले हमारी कैपिटल सिटी ईटानगर, नाहरलगुन और आसपास के फुटहिल बेल्ट की। आज 13 अक्टूबर को ईटानगर और एडजॉइनिंग एरियाज में सुबह के वक्त आकाश आमतौर पर साफ से लेकर पार्शली क्लाउडी बना रहेगा। हवा में सुबह के दौरान हल्की नमी और मॉइस्चर महसूस होगी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी करीब 75 से 85% के आसपास दर्ज की गई है। दोपहर होते होते धूप निकलने से तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखी जा सकती है, जहां मैक्सिमम टेम्परेचर 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है, जबकि पिछली रात का मिनिमम टेम्परेचर लगभग 19 से 21 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। दोपहर के बाद या शाम ढलते ही लोकल कोवेटिक क्लाउड्स डेवलप होने की संभावना है, जिसे लोकलाइज्ड लाइट शावर या हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। इसलिए अगर आप दिन भर के किसी जरूरी काम या ट्रैवल के सिलसिले में बाहर निकल रहे हैं तो हल्का अम्ब्रेला या विंड शीटर साथ रखना एक समझदारी बड़ा फैसला होगा। चलिए मौसम के इस ठंडे मिजाज के साथ सुनते हैं सुनहरे दौर का एक और लाजवाब गीत।

0: वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी अरुण एफएम पर सदाबहार। कैपिटल के बाद अब नजर डालते हैं पूरे अरुणाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट वाइज मौसम का हाल पर। आईएमडी के रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर के फोरकास्ट के मुताबिक पोस्ट मॉनसून ट्रांजिशन फेज की वजह से स्टेट के अलग अलग हिस्सों में मौसम का मिजाज काफी मिक्स बना हुआ है। तवांग वेस्ट कमिंग और हायर अल्टीट्यूड में उत्तरी और पश्चिमी ऊंचाई वाले इलाकों में सुबह और शाम के वक्त ठंडी काफी तेजी से बढ़ चुकी है। आकाश आमतौर पर क्लाउडी रहेगा और एलिवेटेड पासेस पर मिस्ट या शैलो फॉग छाई रह सकती है, जिससे सुबह के वक्त विजिबिलिटी कम हो सकती है। मिनिमम टेम्परेचर यहां सिंगल डिजिट लगभग 7 से 9 डिग्री सेल्सियस तक गिरने की उम्मीद है। ट्रैवलर्स को ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर ड्राइव करते वक्त कॉशन मेंटेन करने की सलाह दी गई है। सुबनसिरी बेल्ट, सियांग बेल्ट और दिबांग वैली इन रीजन के रिवर वैलीज और इंटरमीडिएट हिल्स में दिन में धूप चाव का सिलसिला बना रहेगा। स्कैटर्ड लाइट रेनफॉल की पॉसिबिलिटीज बनती है, खास करके शाम के घंटों में जब पहाड़ी हवाएं नीचे की तरफ आती है। टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के कंफर्टेबल रेंज में रहेंगे। कुल मिलाकर पूरे स्टेट में मौसम धीरे धीरे गुलाबी ठंड की तरफ बढ़ रहा है। दोस्तों, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, मौसम के मुताबिक वार्म लेयर्स साथ रखिए और पुराने संगीत की इस धरोहर को महसूस करते रहिए। दोस्तों, ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली और शिलांग केंद्र से समाचार।
1: It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership.
3: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र

0: मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर को अब तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम उड़ीसा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगे। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है, जबकि दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, मादक पदार्थ, कट्टरपंथ, तस्करी, अवैध वित्तीय लेनदेन और साइबर खतरों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी भाग लेने वाले गृह मंत्रियों और सदस्य देशों के प्रतिनिधि मंडलों का हार्दिक स्वागत करते हुए कहा कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद और संगठित अपराध जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक देशों के साझा संकल्प को दर्शाती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि सभी देश आपसी समन्वय के माध्यम से बिम्स्टेक क्षेत्र को अधिक सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है में बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। इसका उद्देश्य बंगाल की खाड़ी से लगे देशों और आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक तथा तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देना है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के युवाओं को नए विचारों, नवाचार और स्पष्ट उद्देश्यों के साथ भारत की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभानी चाहिए। नई दिल्ली में कल दिल्ली संवाद को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की प्रगति और चुनौतियों से निपटने की क्षमता का जिक्र किया।
2: 140 करोड़ की आबादी वाला भारत और उसकी युवा शक्ति देश की बड़ी ताकत है। जहां कई देशों में बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है, वहीं भारत की औसत आयु 30 वर्ष से कम है। अगले 3 दशकों तक इसके 30 वर्ष से कम रहने की उम्मीद है। हमें विश्वास है वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन की हो जाएगी।
0: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। पंजाब की सभी 117 विधानसभा सीटों के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के बाद कल अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में मतदाताओं की कुल संख्या बढ़कर 2,10,00,000 से अधिक हो गई है। इनमें 506 ट्रांसजेंडर मतदाता भी शामिल हैं। महाराष्ट्र में चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची पर दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा 26 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। ड्राफ्ट मतदाता सूची 31 अगस्त को जारी की गई थी। नई समय सीमा के अनुसार दावों और आपत्तियों का निपटारा 10 नवंबर तक पूरा कर लिया जाएगा, जबकि अंतिम मतदाता सूची 16 नवंबर को जारी की जाएगी। ये समाचार हमारी न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है।
3: दाँत खाँच खुजली में आराम, हानि रहित बेदाग जालिम लोशन,
4: तो शुरू करें इन्वेस्टिंग का पार्ट।

0: सेबी इन्वेस्टर जागरूकता पहल। जानकारी के लिए सेबी इन्वेस्टर वेबसाइट विजिट कीजिए। डाउनलोड सेबी सारथी ऐप।
1: सुनती हो, कमाल ही हो गया।
2: क्या हो गया ऐसा?
1: सिलेंडर आने में देरी हो रही थी ना, देखो आज आ गया।
2: ये कमाल कैसे हो गया?
1: मैंने www.tgportal.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट को बोल कर दर्ज किया और देखो

0: तुरंत एक्शन हुआ।
1: ये तो बहुत बढ़िया पोर्टल है।
0: 22 भारतीय भाषाओं में आप अपनी शिकायत दर्ज कराएं, अपनी समस्या का समाधान और प्राथमिकता का अनुभव पाएं, जैसे हमने पाया। सारी शिकायतों का समाधान सीपी ग्राम्स की समाधान दीदी।
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत सिंचाई अवसंरचना में सुधार की दिशा में अनुकरणीय प्रदर्शन करने के लिए देश के 100 जिलों में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये उपलब्धि सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने, कृषि गतिविधियों के लिए जल उपलब्धता में सुधार करने और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की दिशा में जिले के प्रयासों को दर्शाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। आज हम इस विशेष श्रृंखला में जानकारी दे रहे हैं नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में, जो आधुनिक भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ा रही है।
3: राजगीर की पहाड़ियों के बीच नालंदा की कहानी इतिहास से निकलकर वर्तमान में आती है। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर के उद्घाटन में 17 देशों के मिशन प्रमुख शामिल हुए। नालंदा की पहचान सिर्फ उसकी प्राचीनता नहीं बल्कि ज्ञान को दुनिया के साथ बांटने की परंपरा रही है। उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री ने इसी विरासत को याद किया।
4: नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था, अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है। नालंदा का नवजागरण, ये नया कैंपस विश्व को भारत के सामर्थ्य का परिचय देगा। नालंदा बताएगा जो राष्ट्र मजबूत मानवीय मूल्यों पर खड़े होते हैं वो राष्ट्र इतिहास को पुनर्जीवित करके बेहतर भविष्य की नींव रखना जानते हैं।
3: नालंदा की ये नई यात्रा भी सीमाओं से परे है। आज यहाँ 20 से अधिक देशों के विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं। अलग अलग देशों से आए ये विद्यार्थी उस विचार को आगे बढ़ाते हैं जिसे भारत वसुदैव कुटुम्बकम के रूप में देखता है। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी बताते हैं कि हम विकास भी और विरासत भी की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं।
5: ये जब हम नालंदा विश्वविद्यालय में अलग अलग तरह की कोर्सेज शुरू करते हैं, अलग अलग तरह के चिंताएं जताते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये जो नई पीढ़ी है उसके माध्यम से उसी ज्ञान परंपरा को आगे बढ़ाने का काम हम करते हैं।
3: पुरानी नालंदा की विरासत आज प्रधानमंत्री के प्रयासों से विकास और आधुनिक शिक्षा की नई ताकत बन रही है, जहां अतीत की सीख भारत के भविष्य को दिशा दे रही है। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से निदेशी की रिपोर्ट।
2: भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है। मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
6: भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4 करोड़ 77 लाख से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106 करोड़ 64 लाख वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। इंटरनेट उपभोक्ता आधार में ब्रॉडबैंड और नैरोबैंड दोनों प्रकार के ग्राहक शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार जून 2026 के अंत तक ब्रॉडबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 2.03% की वृद्धि हुई, जबकि नैरोबैंड इंटरनेट ग्राहकों की संख्या में 0.89% की कमी आई। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टेलीफोन ग्राहकों की संख्या मार्च 2026 के अंत में लगभग 133 करोड़ से बढ़कर जून 2026 के अंत में 134 करोड़ हो गई, जो तिमाही आधार पर 1.31% की वृद्धि है। समाचार कक्ष से मैं सरफिरोजी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष का प्रदान करती हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय आज से विजयवाड़ा में राष्ट्रीय सरस मेला आयोजित करेगा। विजयवाड़ा में पहली बार लगने वाला ये मेला ग्रामीण गरीबी उन्मूलन

0: सोसाइटी और आंध्र प्रदेश सरकार के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के 30 से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 1500 से अधिक महिला उद्यमी भाग लेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगी। मेला इस महीने की 31 तारीख तक चलेगा। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू भश्रू और न्यायाधीश के एस हेमालेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% की कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओरियंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर एक दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नादुसुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुडा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। वहीं पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और पूर्व विश्व नंबर एक किदांबी श्रीकांत आज राउंड ऑफ 32 में अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कुछ हिस्सों में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान की संभावना व्यक्त की है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और राजस्थान में भी कल तक ऐसे ही मौसम की उम्मीद है। छत्तीसगढ़ में चल रहे नक्सल विरोधी अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। इसमें सुकमा जिले के घने जंगलों में नक्सलियों द्वारा भारी मात्रा में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए हैं, जिनमें स्वचालित हथियार, जिंदा कारतूस और विस्फोटक शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
1: PCPND की कानून के विभिन्न प्रावधानों के तहत लिंग जांच करने और करवाने वाले दोनों को 3 से 5 साल तक की कैद और जुर्माने की सजा है।
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज।
3: धन्यवाद फरहत। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर प्रदर्शनों पर रोक लगाने का समाचार सभी अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। गृह मंत्रालय की समिति की सिफारिश पर दिल्ली पुलिस ने लगाई रोक। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, कई आंदोलनों के गवाह जंतर मंतर पर अब प्रदर्शन नहीं। 3 नए स्थान तय, रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान, सीबीडी मैदान। समुद्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को परास्त करेगा मंगरोल। नौसेना के बेड़े में शामिल हुआ 3रा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत। हिंदुस्तान ने उपलब्धि शीर्षक से खबर प्रकाशित की है। दैनिक भास्कर ने सऊदी अरब में मिसाइल ड्रोन हमलों की वजह से रियाद एयरपोर्ट के बंद होने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, सऊदी से उड़ानें बंद, केरलम के 10 लाख लोगों का त्योहारी प्लान अटका। 51% लोग शॉपिंग करने में ले रहे एआई की मदद, सोशल मीडिया पर वीडियो देखकर कर रहे शॉपिंग। नवभारत टाइम्स की खबर है, पोर्टलैंड के पास ओरेगन के जंगलों में गुस्सा निकालने का अनूठा शिविर, जंगल में जुटता है महिलाओं का समूह, भड़ास निकालने के साथ खुद को करती हैं शांत, 7 दिन का पैकेज 4 लाख रुपए, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद मनोज। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यपालों की नियुक्ति की। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर तमिलनाडु और ओपी माथुर केरलम के राज्यपाल होंगे। भारत आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी करेगा। चुनाव आयोग ने सभी पात्र मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान शुरू किया। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास हुए विस्फोट में लश्करे तैयबा के 4 आतंकवादी मारे गए। भारत में इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 111 करोड़ से अधिक हुई। और बैडमिंटन में डेनमार्क ओपन 2026 आज से ओडेंस में शुरू होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सरबजीत कौर। द हेडलाइंस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू अपॉइंट 6 गवर्नर्स। राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर मूव टू तमिलनाडु एंड ओपी माथुर टू केरलम। इंडिया टू होस्ट फर्स्ट एवर बिम्स्टेक होम मिनिस्टर्स मीटिंग इन न्यू दिल्ली टुडे।

दिल्ली और शिलोंग से प्रसारित समाचार बुलेटिन यहीं पर समाप्त होती है। आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अब वक्त हो चुका है हमारे शिक्षक और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम का। स्वागत है आप सभी का हेलो ईटानगर में। नमस्कार ईटानगर और सुप्रभात अरुणाचल, मैं हूं आपकी आज की आरजे याजू। दोस्तों, हर सुबह जब हम अपने घरों की खिड़की खोलते हैं तो हमारे सामने खड़ी ये खूबसूरत हरी भरी पहाड़ियां, ढालने और शांत वादियां मन को बेहद सुकून देती है। लेकिन हम सभी ये भी जानते हैं कि प्रकृति जितनी सुंदर है, कभी कभी उसके तेवर उतने ही कठिन और अनोखे हो जाते हैं। अरुणाचल प्रदेश एक ऐसी जगह है जहां लैंडस्लाइड, तेज बारिश, अचानक आने वाली बाढ़ और भूकंप के झटके हमारे जिंदगी का एक हिस्सा रहा है। आज 13 अक्टूबर है और पूरी दुनिया में आज का दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के रूप में। इस दिन का मकसद किसी आफत से डरना या घबराना नहीं है, बल्कि आफत आने से पहले उसके खतरे को कम करना और खुद को तैयार रखना। साल 2024 के लिए इस अहम दिन का ऑफिशियल थीम रखा गया है रेजिलियंस स्टार्ट्स एट होम, यानी आफत से लड़ने की ताकत और सुरक्षा की शुरुआत सबसे पहले हमारे अपने घर से होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट सिर्फ प्रशासन, एनडीआरएफ या सरकारी विभागों का नाम है, जबकि सच्चाई ये है कि किसी भी मुसीबत के वक्त सबसे पहला बचाव हमारी अपनी तैयारी और हमारा परिवार करता है। इस जरूरी विषय पर विस्तार से बात करने के लिए बने रहिए हमारे साथ, पर आइए पहले सुनते हैं सुबह का ये सुकून भरा पहला गीत।

दोस्तों, बात चल रही थी आज के विषय रेजिलियंस स्टार्ट एट होम की। आपको सच बताऊं, पिछले साल जब हमारे इलाके में लगातार 3 दिन मूसलाधार बारिश हुई और ढलान पर मिट्टी धसकने की खबर आई, तो हम सब घर के अंदर थे। उस वक्त अचानक लाइट चली गई, फोन का नेटवर्क गायब हो गए और घर में ढूंढने पर मोमबत्ती या टॉर्च तक वक्त पर नहीं मिले। उस छोटी सी घटना ने मुझे एक बात सिखाई, मुसीबत कभी बताकर नहीं आती और उस वक्त सबसे ज्यादा काम आती है तो हमारी पहली पहले से की गई छोटी छोटी तैयारियां। हर परिवार को अपने घर में ऐसी इमरजेंसी के लिए आम बातों पर ध्यान देना जरूरी है। हर घर में एक छोटा सा वाटरप्रूफ बैग होना चाहिए, जिसमें एक टॉर्च, एक्स्ट्रा बैटरीज, बेसिक फर्स्ट एड मेडिसिन, मैच बॉक्स, थोड़ा सूखा राशन और जरूरी कागजात की फोटोकॉपी सुरक्षित रखी हो। हमारे पहाड़ी शहरों में घर बनाते समय ड्रेनेज सिस्टम का सही होना बहुत जरूरी है, ताकि बारिश का पानी दीवारों या जमीन को कमजोर ना करे। साथ ही भूकंप के इलाज से घर के भारी फर्नीचर जैसे अलमारी को दीवार के साथ ठीक से फिक्स रखना चाहिए, ताकि झटका आने पर कोई चोट ना लगे। परिवार के सभी सदस्यों, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को पता होना चाहिए कि अगर अचानक कोई आफत आए तो घर से बाहर निकलने का सुरक्षित रास्ता कौन सा है और गैस सिलेंडर या मेन बिजली स्विच को कहाँ से बंद करना है। जब हम अपने घर को सुरक्षित बनाते हैं, तभी हमारे मोहल्ले और हमारा शहर सुरक्षित बनता है। इसी बीच चलिए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का दूसरा मधुर गीत।

0: dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next gen K Series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine, and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: गीत के बाद स्वागत है एक बार फिर से हेलो ईटानगर के अंतिम दौर पर। दोस्तों, घर की सुरक्षा के साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी ताकत होती है किसी भी इमरजेंसी में, वो है हमारा समाज यानी कम्युनिटी बॉन्डिंग। हमारे अरुणाचल की ये एक बेहद सुंदर परंपरा रही है कि गांव और कॉलोनी में लोग हमेशा एक दूसरे से सुख दुख में आगे आकर खड़े होते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पर हम सभी को ये समझना होगा कि आफत के समय अफवाहों से बचना कितना जरूरी है। सोशल मीडिया पर आने वाले गलत मैसेजेस को आगे बढ़ाने के बजाय सिर्फ प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा कीजिए। अपने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्गों, अकेले रहने वाले लोगों और छोटे बच्चों का विशेष ध्यान रखिए। लोकल डिजास्टर हेल्पलाइन नंबर्स जैसे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और फायर सर्विस का संपर्क नंबर हमेशा अपने घर के दरवाजे या नोटिस बोर्ड पर लिखकर रखिए। आफत को आने से रोकना शायद हमारे हाथ में ना हो, लेकिन उसके असर को कम करना, उससे होने वाले नुकसान से बचना और अपनों को सुरक्षित रखना पूरी तरह हमारे हाथ में होता है। घड़ी की सुई इशारा कर रही है अब हेलो ईटानगर के सिलसिले को यहां समाप्त किया जाए। उम्मीद है आज की ये जानकारियां आपके और आपके परिवार के लिए उपयोगी साबित होंगी। अपने घर को सुरक्षित रखिए, जागरूक रहिए और हमेशा जुड़े रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ। तब तक के लिए मैं छोड़ जाती हूं आपको ये कार्यक्रम का आखिरी गीत।

दोस्तों अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। उसके बाद आप सुनेंगे एक विशेष प्रसारण का।

दोस्तों, न्यूज़ के बाद आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम प्रस्तुत करेंगे एक विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला। और इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप सुनेंगे चुने हुए कुछ हिंदी फिल्मी गीत। तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के साथ।

0: संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 70 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1313 बूथ स्तर के अधिकारी, बीएलओ पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष शिविर भी आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्करे शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद फकास और मोहम्मद आसिम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मंडारपुर के निवासी थे। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अधिसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाने वाले 2022 के राज्य कानून को रद्द कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश विभू बखरू और न्यायाधीश के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने इस कानून को असंवैधानिक बताया। पीठ ने कहा है कि आरक्षण में ये बढ़ोतरी सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले में तय की गई 50% से कानूनी सीमा का उल्लंघन करती है। दिल्ली में कानून व्यवस्था स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक, गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, कनॉट प्लेस, आउटर सर्किल शामिल है। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व नंबर 1 दक्षिण कोरिया की आन से यंग से खेलेंगी। वहीं तन्वी शर्मा का मुकाबला जापान की नात्सुकी निदेरा से होगा। अश्मिता चालिहा, देविका सिहाग और उन्नति हुड्डा अपने प्री क्वार्टर फाइनल मैच आज खेलेंगी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी ईटानगर पर अभी आप दिल्ली से प्रसारित समाचार सुन रहे थे और समाचार के बाद अब प्रस्तुत किया जाएगा एक विशेष कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का पब्लिक सर्विस यानी सार्वजनिक जनसेवा में 25th वर्ष पूरे होने का उपलक्ष्य पर तैयार की गई स्पेशल सीरीज का अगला भाग। इस श्रृंखला में उनके नेतृत्व नीतियों और जनसेवा के सफर को समझा और दर्शाया गया है और इस विशेष प्रस्तुति के तुरंत बाद हम आपके लिए लेकर आएंगे चुने हुए मधुर हिंदी फिल्म की। तो सबसे पहले सुनते हैं माननीय प्रधानमंत्री का कार्यक्रम।

0: मार्केटर्स, इन्वेस्टर्स और थॉट लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म, एक मंच देता है, वहां पे सबको साथ लेकर आता है। अब इतने साल बीत गए और वाइब्रेंट गुजरात समिट सेमीकंडक्टर्स, एआई, एरोस्पेस जैसी नई तकनीकों पर भी बात करता है। अगले साल होने वाले वाइब्रेंट गुजरात समिट को जो उसका फोकस एरिया है वो डिसेंट्रलाइज्ड रीजनल ग्रोथ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज जैसे बड़े बड़े विषयों पे चर्चा करेगा। और ब्रॉडर रूप से देखा जाए तो वो जो भारत का फोकस है विकसित भारत की ओर, उसकी तरफ भी चर्चा करेगा। मैं आपसे समझना चाहूंगी एम्बेसडर सज्जनहार कि आपको लगता है कि वाइब्रेंट गुजरात समिट ने देश को एक दिशा दिखाई कि भारत के ग्लोबल स्टेज पे राइज का एक ये शुरुआती तार जोड़ा है? आप वाइब्रेंट गुजरात समिट को वैसे देखते हैं?
1: जी, बहुत धन्यवाद दीक्षा मुझे आमंत्रित करने के लिए। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। देखिए, वाइब्रेंट गुजरात समिट का जैसे आपने अभी जिक्र किया, 2003 में इसकी शुरुआत हुई और हमें देखना होगा जो इसकी शुरुआत उस समय क्यों हुई, क्योंकि उससे पहले हमने देखा है जो 2002 में कम्युनल रायट्स हुए थे वहां पर गुजरात में हालात इतने अच्छे नहीं थे। उसके पहले हमने देखा है 2001 में भुज में बहुत ही भयानक वहां पर भूकंप आया था, उससे बहुत ही तहस नहस वहां पर हो गया था। गुजरात को एक नया प्रोफाइल देने के लिए नए इन्वेस्टमेंट्स लेकर आएंगे, उसकी शुरुआत की गई 2003 में और तब से नए नए जो कार्यक्रम थे, नए नए जो आइडियाज थे, चाहे वो पेट्रोकेमिकल्स हो या फिर वो ऑटोमोबाइल्स हो या फिर उस प्रकार के जो फॉरवर्ड लुकिंग तरीके बनाए गए हों, वो प्रधानमंत्री मोदी ने उस समय शुरुआत की। तो 2003 में इसकी शुरुआत हुई और फिर हर दो साल बाद उसको वहां पर आयोजित किया गया। तो अलग अलग तरीके से वहां पर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी कुछ लेकर आए गए। 2003 के बाद 2005 को फिर से शुरुआत की गई, 2005 से 2007 में हर दो साल बाद इसका हुआ और अब अगर देखा जाए तो 2013 तक प्रधानमंत्री मोदी थे वहां पर मुख्यमंत्री थे। तो उसके बाद हम देख रहे हैं जो केवल गुजरात में नहीं, अब हम देख रहे हैं जो और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उन्होंने भी ये सब नए नए वाइब्रेंट अपने यहाँ पर अपने स्टेट्स के लिए इसको आगे बढ़ावा देने का उन्होंने काम किया है। तो इसीलिए, और आपने जैसे अभी कहा जो आगे ले जाते हुए दो साल के बाद फिर से ये वाइब्रेंट गुजरात होगा, तो उसमें ये बिल्कुल तार है विकसित भारत 2047 में आगे चलने का। और इसमें जो नए नए तरीके आए हैं, क्योंकि शुरुआत तो पहले की गई थी इन सभी क्षेत्रों से, जैसे मैंने कहा ऑटोमोबाइल्स, पेट्रोकेमिकल्स वगैरह वगैरह, फिर धुलेरा का स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, दहेज का, वो वाले सब वहां पर किए गए, परंतु अब इसको और बहुत ही विस्तार किया जा रहा है, विस्तृत तरीके से किया जा रहा है। और इसमें हम देख रहे हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या नए तकनीक जो हैं उनको भी साथ में लाया जा रहा है, क्वांटम कंप्यूटिंग को लाया जा रहा है साथ में, जिससे कि आगे चलते हुए जैसे अभी प्रधानमंत्री ने आह्वान दिया है जो हम 2047 तक अपना लक्ष्य पूरा करके रहेंगे, विकसित भारत को हम अचीव करके रहेंगे, वही हमारा लक्ष्य है। मैं समझता हूँ जो वाइब्रेंट गुजरात की जो कड़ी शुरू हुई थी 2003 में, वो अभी तक चलती आ रही है और इसको बिल्कुल आगे ले जाते हुए न केवल गुजरात में परंतु पूरे देश में इसको हम आगे लेकर जा रहे हैं और पूरे देश को विकसित भारत की ओर अग्रसर करने में इसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है।
0: अम्बेसडर सज्जनहार, आपने काफी विस्तृत रूप से हमें समझाया। अब मैं आगे बढ़ते हुए मिस्टर अनेजा, मैं आपसे बात करना चाहूंगी। अगर हम G20 समिट की बात करें या G20 प्रेसिडेंसी की बात करें, तो 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक भारत ने G20 की प्रेसिडेंसी संभाली और 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत के 60 से ज्यादा शहरों में होस्ट की गई। G20 की अगर हम थीम की बात करें तो G20 की थीम भी भारत की प्रेसिडेंसी में थी, वसुधैव कुटुंबकम। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, उससे पहले कि हम इस पे चर्चा करें, हम सबसे पहले आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G20 लीडर समिट को होस्ट करते हुए क्या कहा।
2: एक G20 रोड मैप बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, रेजिलियंस कैन नॉट बिल्ड इन

0: साइलोस, G20 को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजी को बढ़ावा देना चाहिए जो न्यूट्रिशन, पब्लिक हेल्थ, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस को जोड़कर एक मजबूत वैश्विक सुरक्षा बनाए।
1: मिस्टर अनिजा, G20 समिट ने भारत की डिसाइसिवनेस को एक गति दी है और ये भी दर्शाया कि हम इंक्लूसिव भी हैं और ग्लोबल साउथ के लीडर के रूप में भी हमें दिखाया गया है, तो इसके ऊपर आपके क्या विचार हैं?
2: देखिए, G20 की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि भारत अपने आप को एक ब्रिज की तरह अपने आप को प्रोजेक्ट कर सका, जिसमें ग्लोबल साउथ और ग्लोबल नॉर्थ को जोड़ना था। और ग्लोबल साउथ को जोड़ने की अगर बात करें तो फिर जो है 56 देश जो अफ्रीकन यूनियन के हैं वो सदस्य बने G20 के, तो एक तरह से प्रोग्रेसिव इंक्लूसिव फील या एक इमेजिनेशन प्रदान की गई G20 को। साथ में बात हुई है वसुधैव कुटुंबकम की, जो इसकी मेन थीम थी कि आप अगर जोड़ना चाहते हैं देशों को या लोगों को, डाइवर्स लोगों को, तो उसकी एक बुनियाद सोच है जो है कि एक दुनिया, एक विश्व, एक परिवार है। अगर परिवार है तो आपका उसमें दायित्व बनता है कि परिवार के जितने भी सदस्य हैं उनको आगे लेके चले। तो एक तरह से एक आइडियोलॉजिकल ब्रेक थ्रू था ये G20 में जो दर्शाया गया, जिससे आप एक वसुधैव कुटुंबकम की बुनियाद पे आप ग्लोबल साउथ, ग्लोबल नॉर्थ को आप जोड़ सकते थे। अगर हम बात करते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने के लिए, उसके पीछे भी वसुधैव कुटुंबकम की जो G20 की थीम थी वो भी अभी आएगी, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो यूक्रेन या रशिया के बीच में हो, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हो। तो वे कॉमन थीम जो थी, जो शुरू होती है वाइब्रेंट गुजरात से और एक तरह से कल्मिनेशन पॉइंट या एक तरह से मेच्योर लेवल पे आती है G20 के अंदर।
1: अम्बेसडर सज्जना, G20 समिट में हमने देखा कि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबर बनाया गया और साथ ही साथ जो मैंने पहले भी कहा कि G20 को भारत ने दर्शाया कि हम ग्लोबल साउथ की आवाज को आगे लेकर जा रहे हैं। तो अम्बेसडर सज्जना, आपसे मैं यहाँ ये समझना चाहूंगी कि अफ्रीकन यूनियन को इस फोल्ड में लाने के पीछे प्रधानमंत्री की कौन सी दूरदर्शी सोच रही होगी?
3: देखिए, जब से ये G20 की शुरुआत हुई थी 2009 में, 2010 में, जबकि एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था, तो तब से ये था जो अफ्रीका के जो देश हैं उनकी कोई भी वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। केवल साउथ अफ्रीका एक देश था जो कि G20 का एक सदस्य था, परंतु तब से बहुत सालों से, हमेशा से अफ्रीकन यूनियन ये हमेशा कहता रहा जो उसको इसका सदस्य बनना चाहिए। हम जानते हैं जो यूरोपियन यूनियन सदस्य है, यूरोपियन यूनियन 27 देश है उसमें, परंतु अफ्रीका के जो हैं वो 54 देश हैं, परंतु उनकी कोई वहां पर रिप्रेजेंटेशन नहीं थी। और प्रधानमंत्री मोदी ने, मुझे याद है, तब जब बाली का समिट हो रहा था तो तब उन्होंने कहा था, हम गारंटी देते हैं जो हमारे जब अध्यक्षता होगी तो हम जरूर अफ्रीकन यूनियन को इसमें सदस्यता दिलाएंगे। और आपको याद होगा जो 9 सितंबर 2023 को जब पहले दिन ही ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो उस समय पहले ही दिन प्रधानमंत्री मोदी ने ये ऐलान किया, जो ये पूरी तरीके से सभी देशों को मान्य है, जो अफ्रीकन यूनियन को भी एक इसका सदस्य बनाया जाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले जिसे कहा जाए ग्लोबल साउथ, जो भी हैं विकासशील देश हैं, उनके जो भी हित है उनको सामने लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसीलिए आपको याद होगा जो जब भारत ने इसकी अपनी अध्यक्षता संभाली थी 1 दिसंबर 2022 को, और उसके एक महीने के अंदर ही हमने, जिसे कहा जाए तो, एक वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ समिट का ऑर्गेनाइज किया था प्रधानमंत्री मोदी ने 11-12 जनवरी को, जो 125 देशों ने, डेवलपिंग कंट्रीज थे, विकासशील देश थे, उन सब ने इसमें भाग लिया, इसमें शिरकत ली। और उसमें हर लेवल पर, चाहे वो राष्ट्रपति के स्तर पर हो, अलग अलग देशों ने उसमें सम्मिलित हुए, या फिर प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति या विदेश मंत्री या अन्य मंत्रियों के लेवल पर उन्होंने इसमें शिरकत की। और फिर जो भी उनसे पूछा गया, जो उनकी क्या मंशाएं हैं इसमें, तो सभी के, चाहे वो डेट हो, चाहे उनका फूड सिक्योरिटी हो, चाहे एनर्जी सिक्योरिटी हो, ये सब चीजें जो हैं, चाहे वो विमेन लेड डेवलपमेंट हो, विमेन लेड ग्रोथ हो, ये सभी चीजें इसमें जो G20 की बातचीत हुई, जैसे आपने बिल्कुल ठीक बताया, जैसे अतुल जी ने भी बिल्कुल ठीक बताया, जो करीब 200 मीटिंग की गए 60 शहरों शहरों में ये मीटिंग की गए और ये जो सभी थे

0: डेवलपिंग कंट्रीज के, विकासशील देशों के, इनकी जो प्रॉब्लम्स थी इनको सबको लेकर आया गया। तो मैं समझता हूं जो भारत ने ये बताया है, जो विकासशील देशों की आवाज बनकर भारत उभरा है, हमारा जो इसमें थीम भी था वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वो था वसुधैव कुटुंबकम था, परंतु उसको और एक्सपैंड कर दिया गया और इस हिसाब से हमने इसको आगे लेकर जाएगा।
1: मिस्टर अनेजा, G20 समिट को लेके एक मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अगर इस पूरे समिट के अचीवमेंट्स की बात करें तो ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को भी G20 के साइडलाइंस पे लॉन्च किया गया और GBA यानी कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को काफी इंटरनेशनली पसंद किया गया, सपोर्ट मिला और अब इसके 24 मेंबर्स हो गए हैं। तो मिस्टर अनेजा, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि आखिरकार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस को लॉन्च करने के पीछे की सोच क्या थी?
2: दीक्षा, फोकस है रिन्यूएबल एनर्जी पे और कम से कम जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उसके ऊपर डिपेंडेंस कम से कम हो। ये एक ग्लोबल एक तरह से मिशन है भारत की, खास करके जो देश जिनके पास कच्चा तेल नहीं है, क्रूड ऑयल नहीं है, उनके लिए बहुत जरूरी है कि रिन्यूएबल एनर्जी और बायोफ्यूल्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया जाए। और खास करके हम देख रहे हैं जो ईरान में युद्ध हो रहा है कि ये एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर और ज्यादा फोकस है। तो एनर्जी के ऊपर बिना ऊर्जा के, बिना क्लाइमेट चेंज को रोकते हुए, रिन्यूएबल्स के बिना हमारी आगे एनर्जी सिक्योरिटी नहीं बनेगी, ये हमारी एक बुनियादी एक सोच है। G20 में जो वसुधैव कुटुंबकम या जो दो स्लोगन उसके आए हैं, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर या वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, अब अगर आप इनको देखेंगे तो इसके पीछे एक बड़ी आइडियोलॉजिकल सोच ये है कि भारत आइडियोलॉजी की बात करता है, अपनी विरासत की बात करता है, अपनी सिविलाइजेशनल स्ट्रेंथ जो है वो सामने आती है। तो मुझे लगता है कि ये जितनी भी एंगेजमेंट रही है G20 के अंदर, उसमें ये एक बड़ी खास बात थी कि भारत एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और जब मल्टीपोलर वर्ल्ड में आप एक सिविलाइजेशनल स्टेट हो तो आपका एक खास दर्जा रहता है और बाकी देशों को, खास करके ग्लोबल साउथ को जोड़ने में उसमें तो आसानी रहती है। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एलिमेंट भी इसके अंदर गया था ये G20 के अंदर। साथ में मैं एक और जोड़ना चाहूंगा बात, अगर हम सिविलाइजेशनल स्टेट की बात करें तो भारत, आपको याद होगा इन्हीं दिनों में ये वर्ल्ड डेमोक्रेसी समिट होते थे तो प्रधानमंत्री ने ये भी कहा उन समिट्स में एक से ज्यादा कि इंडिया इज अ मदर ऑफ डेमोक्रेसी। वो भी हमारी जो डेमोक्रेसी है ये हमारा एक तरह से सिविलाइजेशनल हेरिटेज है, एक विरासत है हमारी। तो वो आप वेस्टर्न सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी से अलग होकर आप डीपर जा रहे हैं और आपकी अपनी सोच एक तरह से एक सिविलाइजेशन सोच और बढ़ रही है। और ये जो हमारी एंगेजमेंट्स, एक्सटर्नल एंगेजमेंट G20 हो या जनरली फॉरेन पॉलिसी हो, ये एक नई चीजें जो है कि शुरू हम फिर करते हैं वाइब्रेंट गुजरात से और ये इवॉल्व होके अब एक क्लियर कट एक मॉडल बना है जो हमारा एक इंडिजिनस मॉडल है, जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है, खास करके जो केओस हो रहा है दुनिया के अंदर, जिस तरह से डिवाइसिवनेस आ रही है, उसको जोड़ने के लिए बहुत मदद करेगा।
1: मिस्टर अनेजा, आपने काफी अच्छे से हमें समझाया पूरी जो इसके पीछे की सोच थी उसको। आगे बढ़ते हुए अब मैं आप दोनों ही विशेषज्ञों से बात करना चाहूंगी ब्रिक्स समिट के बारे में और अम्बेसडर सज्जनार, सबसे पहले मैं आप ही की राय जानना चाहूंगी। ब्रिक्स इमर्जिंग इकोनॉमीज के लिए ग्लोबल इकोनॉमिक गवर्नेंस, डेवलपमेंट फाइनेंसिंग और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन में अपनी रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने का एक इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म बन गया है और हमने देखा है कि भारत हर प्लेटफॉर्म पे अपनी आवाज को बुलंदी से रखता है और ब्रिक्स की अध्यक्षता करते हुए अभी दिल्ली में ही पिछले महीने 12 और 13 सितंबर को लीडर्स समिट दिल्ली में ब्रिक्स का होस्ट किया गया। तो आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं प्रधानमंत्री के कुछ इम्पोर्टेंट अंश जो उन्होंने ब्रिक्स समिट में लीडर समिट को एड्रेस करते हुए बोला।
3: भारत में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत खुशी हो रही है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता पीपल सेंट्रिक और ह्यूमैनिटी फर्स्ट अप्रोच पर आधारित है। रिजिलियंस, इनोवेशन, कोऑपरेशन और सस्टेनेबिलिटी हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। इन प्राथमिकताओं के साथ हमने ब्रिक्स सहयोग को सामान्य जन से जोड़ने का विशेष बल दिया है। इसी सोच के साथ 350 से अधिक बैठकों का आयोजन किया गया, लगभग 30 शहरों में आपकी टीम्स का स्वागत करने का हमें अवसर मिला। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता को सफल बनाने में सक्रिय योगदान और समर्थन के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
1: अम्बेसडर सज्जनार, ब्रिक्स की एक्सपैंडिंग मेंबरशिप और बदलते ग्लोबल जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस के बीच भारत अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करते हुए इस ग्रुपिंग को एक इफेक्टिव प्लेटफॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकता है और जो

0: फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स जैसे लोकल करेंसी में ट्रेड और ग्लोबल साउथ के डेवलपमेंट जो हमने जिसकी बात भी करी कि प्रायोरिटीज को आगे बढ़ाएं, और इस प्रोसेस में भारत को किन कम्पीटिंग नेशनल इंटरेस्ट के बीच बैलेंस बनाना पड़ रहा है?
1: जी देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि मैं इसको ब्रिक्स समिट जो हुआ है 12 और 13 तारीख को सितंबर को और जो इससे पहले G20 हुआ 2023 में, मैं समझता हूँ जो चुनौतियाँ भारत के लिए दोनों समय बहुत ही ज्यादा थी, बहुत ही अधिक थी, क्योंकि उस समय भी एक ऐसी ही चुनौती थी जब एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध में बिल्कुल ही पूरा जो विश्व था वो अलग थलग दो धड़ों में डिवाइड हो गया था, क्योंकि एक तरफ उस समय रूस और चीन एक तरफ खड़े थे और दूसरी तरफ जो पश्चिमी देश हैं वो सब खड़े थे, और ये भारत के ऊपर सब कुछ मयसर हुआ जो हम दोनों को साथ में लेकर आए और एक प्रकार का जो यूनानिमिटी अग्रीमेंट वहां पर लेकर आ पाए। ऐसा ही यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसमें जो एक्सपेंशन हुआ ब्रिक्स का, आपको मालूम है जो शुरुआत हुई थी 2001 में, पहली मुलाकात हुई 2006 में जब विदेश मंत्री मिले यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस के साइडलाइंस पर, 2009 में सबसे पहली बार रूस के यहाँ पर शिखर सम्मेलन हुआ, परंतु अब पिछले कुछ सालों में क्योंकि हालात पूरे विश्व में इतने ज्यादा उथल पुथल हो गए हैं, जो बहुत देश चाहते हैं जो वो ब्रिक्स के सदस्य बने, और हमने देखा है जो 2023 में जोहानसबर्ग के समिट में, ब्रिक्स के समिट में यहाँ पर पहले 5 सदस्य थे, अब उससे 11 सदस्य हो गए हैं, और इसमें ये जो ब्रिक्स के देश हैं इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि अब और भी बहुत देश हैं वो अपना हेजिंग चाहते हैं, जितना ज्यादा सभी मिलकर ये देश मिलकर साथ में काम कर सके वैसा ही वो होना चाहिए, तो भारत ने ये ब्रिक्स का जो समिट है इसको बिल्कुल वैसे ही तरीके से जैसे कि G20 में हमने किया था वैसा ही हमने अग्रीमेंट यहाँ पर लेकर आए हैं, और मैं समझता हूँ जो आगे चलते हुए ये भारत ब्रिक्स को भी आगे लेकर जाएगा और सभी देशों को साथ में मिलाकर इनको आगे ले जाने में सफल हुआ है और आगे ये सफल होगा। एक चीज मैं इसमें ये और कहना चाहूंगा, जो जब G20 की हम बात करते हैं, थोड़ा सा अगर मैं पीछे ले जाऊं तो वहां पर एक ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस के अलावा हमने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी उस समय ये शुरुआत की, और मैं समझता हूँ जो कनेक्टिविटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक मुद्दा है जो कि सभी देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ये वाले जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और सभी देशों को साथ में लाने में बहुत ही इनका अच्छा योगदान रहेगा।
0: अम्बेसडर सज्जनहार की बात को आगे बढ़ाते हुए मिस्टर अनीजा, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, जैसे कि अभी अम्बेसडर सज्जनहार ने जिक्र किया कि हम कनेक्टिविटी पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, और अगर कनेक्टिविटी और बाकी इसके अलावा अल्टरनेट रूट की भी तैयारी की जा रही है, और इस बात का मैं जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपने वेस्ट एशिया में काफी समय तक अपना करियर बनाया है, वहां पे आप रहे हैं, आपने रिपोर्टिंग करी है, तो अगर अभी जो हम हालात देख रहे हैं वेस्ट एशिया के, उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि वहां से क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जब बंद हुआ तो काफी देशों को दिक्कतें आई, ना कि सिर्फ भारत को, तो अगर इस पूरे प्रकरण में भारत एक अल्टरनेट रूट और एक स्टेबल रूट बना के दुनिया के सामने रख पाता है तो उससे भारत की जो इमेज है वो वर्ल्ड लेवल पे किस तरीके से ग्रो करेगी? और दूसरा प्रश्न आपसे अम्बेसडर सज्जनहार और मिस्टर अनीजा दोनों से आपसे मैं ये करना चाहूंगी बहुत ही संक्षेप में, कि जो प्रधानमंत्री मोदी की अपनी पर्सनल केमिस्ट्री है वर्ल्ड लीडर्स के साथ, वो कैसे ट्रांसलेट करती है जब हम किसी भी मल्टीलैटरल फोरम में देखें तो वहां पे निर्णय निकल के आते हैं, या फिर किसी बायलैटरल मीटिंग में भी देखें तो काफी मुसीबतों का भी हल निकल कर आता है? इन दोनों ही प्रश्नों पे सबसे पहले मिस्टर अनीजा आपका जवाब चाहूंगी और फिर अम्बेसडर सज्जनहार का।
2: दीक्षा, आपका सवाल बहुत ही दिलचस्प है। आप देखेंगे कि अभी इस वक्त जो है हम दो मेन मैरिटाइम चैनल्स हैं, एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और दूसरा बाबल मंदाब जो रेड सी और इंडियन ओशन को जोड़ता है, दोनों में ही एक तरह से जो ट्रेड होती है या वहां से जो शिप्स निकलते हैं सीवियर बाधा पड़ी हुई है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि ये रूट्स का जो मैरिटाइम रूट्स के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो हमें देखना है कि अल्टरनेट लैंड रूट्स कौन से आ सकते हैं, यानी कि कॉन्टिनेंटल रूट्स की अब ज्यादा इंपॉर्टेंस हो गया, क्योंकि आज हॉर्मुज है, बाबर मंदाब है, और कल अगर स्ट्रेट ऑफ मलाका भी कुछ हो जाता है चीन और

0: यूएस के बीच में ताइवान के ऊपर जिस तरह से टकरार है, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? तो इसलिए भारत की ऑल्टरनेटिव रूट, जैसे अम्बेसडर सज्जनहार ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा हमें देखना है कि INSTC का फाइनली अगर हम देखें, उसका रूट ईस्ट वर्ड्स जाता है रशियन फार ईस्ट की तरफ, व्लैडिवोस्टोक की तरफ। वहां से नॉर्थ आर्कटिक रूट निकल रहा है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वहां से चैनल्स निकल रहे हैं। हमें वो ज्योग्राफी भी देखने की जरूरत है, क्योंकि वो फिर ना मलाका को क्रॉस करते हैं, ना ये हॉर्मुज या बाबल मंदा बलिया की प्रॉब्लम आती है। और तीसरा जो है व्लैडिवोस्टोक में चेन्नई। तो मुझे लगता है कि ये लैंड रूट्स और ये जो ओशियनिक बॉडीज हैं जहां पर विवाद कम है, वहां पर हमें ज्यादा जरूरत है इस वक्त, क्योंकि जो दुनिया के हालात है, ये इन ऑल्टरनेटिव ट्रेड रूट्स की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम जल्द से जल्द इनको एक्टिवेट करें। ये आप इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जब मैं दिल्ली में था, ये बात होगी शायद 2000 या 2001 की, तब से बात चल रही है, लेकिन अब एक अर्जेंसी आ गई है कि इन रूट्स को जो है पूरी तरह से कायम किया जाए, खास करके अभी जो रिसेंट हमारी प्रॉब्लम्स आ रही है हॉर्मोज को लेके और बाबर मंदाब को लेके। मुझे लगता है कि अभी ये सिलसिला खत्म नहीं हुआ। दूसरी बात आपकी दीक्षा जो थी वो है पर्सनल केमिस्ट्री की, प्रधानमंत्री की। ये एक बड़ा ही यूनिक एलिमेंट आया है कि पर्सनल केमिस्ट्री प्रधानमंत्री की जो कनेक्ट है, चाहे वो लोगों के साथ हो चाहे बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ, बहुत ही स्पॉन्टेनियस एक तरह से आता है। और उसकी वजह से मुझे लगता है कि स्पेशली क्योंकि दुनिया में कई लीडर ड्रिवन डिसीजन होते हैं, तो उसमें बहुत एक तरह से भारत के लिए बहुत फायदा है, क्योंकि आपके जो टॉप लीडर्स के साथ जो है सिर्फ आपकी इंटरेस्ट से नहीं, बट पर्सनल इक्वेशंस जो है वो बहुत अच्छी है। उसका मुझे लगता है कि हमें बहुत ही ज्यादा लाभ मिल रहा है। हम देख रहे थे इंडोनेशिया में भी विजिट हुआ, किस तरह से वहां के राष्ट्रपति प्रबोवो प्रधानमंत्री के साथ पूरे विजिट में साथ थे, रिसीव करने के साथ साथ जो भी पूरा विजिट था। जैसे हमने देखा कि इंडोनेशिया के अंदर जिस तरह से प्रधानमंत्री की गर्मजोशी से वेलकम किया गया प्रेसिडेंट प्रबोवो ने, तो मुझे लगता है कि वो पर्सनल एलिमेंट एक बीच में आके एक स्पेशल रिलेशनशिप बनाता है, तो उसकी एक बहुत बड़ी एक भूमिका रहती है। और हमने देखा प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कि ये एक एलिमेंट जो है वो हमारी डिप्लोमेसी का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार, जैसे कि मिस्टर अनेजा ने कहा, मैं आपसे भी चाहूंगी कि आप अपने विचार इस चीज पे हमारे साथ साझा करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पर्सनल केमिस्ट्री है वो वर्ल्ड लीडर्स के साथ किस तरीके से ट्रांसलेट होती है और उसका कितना फायदा मिलता है भारत को डिप्लोमेटिकली।
2: जी देखिए, ये बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि लोग ये कहते हैं जो बेसिकली दो देशों के बीच में अगर जो रिश्ते होते हैं, संबंध होते हैं, तो वो उनके इंटरेस्ट पर होते हैं, वो उनके हितों पर होते हैं, वो उनके पर्सनल रेपो पर्सनल रिलेशन पर नहीं होते हैं। परंतु मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमने देखा है जो प्रधानमंत्री मोदी का इतना सहज तरीके से सभी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनसे मिलना होता है, और चाहे जो पूरे विश्व के जो नेता हैं, जो प्रॉब्लम्स होते हैं दोनों देशों के बीच में, अगर किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको अपने पर्सनल रेपो से, पर्सनल रिलेशन से एकदम वो ठीक कर देते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है प्रधानमंत्री मोदी का, जो वो सभी विश्व नेताओं के साथ अपने संबंधों को बनाकर रखते हैं। एक जो दूसरा आपने प्रश्न किया था, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं बताऊं, जो कनेक्टिविटी के बारे में हम जो बात कर रहे थे, देखिए हॉर्मुज में करीब पूरे विश्व का 20% जो तेल है वो वहां से जाता है, और जब से ये युद्ध शुरू हुआ है 28 फरवरी को, तब से हम देख रहे हैं जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल निकलना बिल्कुल ही बंद हो गया है। और ये इसकी सबसे ज्यादा मुश्किल जो है उसका जो खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, वो एक तो डेवलपिंग कंट्रीज को, जो विकासशील देश है उनको, और उनमें भी भारत जैसे देश को सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत करीब अपना 85% जो तेल है वो बाहर से आयात करता है। और उसके अलावा अगर हम देखें जो गैस है, LPG है, LNG है, करीब जो भी हम जितना भी आयात करते हैं उसमें करीब 90% हमारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता है। तो इसलिए यहाँ का जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए बन गया है, और इसको इधर से तेल का आना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। और इसीलिए भारत हमेशा यही कहता है जो बातचीत से इस मसले को हल करना चाहिए। यही बात बाबेल मंडेप की है, यहाँ पर से अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 20% तेल जाता है तो बाबेल मंडेप का करीब 12-15% तेल जाता है। तो इसीलिए ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण चोक पॉइंट्स हो गए हैं, और इसीलिए जो कनेक्टिविटी की हम बात कर रहे हैं, अब INSTC की बात

0: में की बात हुई, और फिर अब ये पोलर रूट की बात है, क्योंकि जो रूस के उत्तर से जो पोलर रूट जाता है, और इसीलिए इसका बहुत ही ज्यादा इसमें योगदान रहेगा, जो हमको और भी जो हर प्रकार के जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि मुझे याद है ये जो INSTC 1997 में जब मैं मॉस्को में हुआ करता था तब की हमने शुरुआत की, परंतु ये इसको आगे हम नहीं ले जा पाए क्योंकि हमेशा ईरान के ऊपर हमेशा सैंक्शंस बने रहे। परंतु अब हमको ये जरूर प्रयास करना है, जो उसमें हो चाबहार को भी हमें डेवलप करना है, और जल्दी से इस क्षेत्र को बिल्कुल सभी मिलकर इसमें शांति लानी चाहिए, जिससे कि हम इसको आगे जो INSTC और चाबहार को और आगे ले जा सकें।
1: मिस्टर अनीजा, मेरे पास अभी दो और पॉइंट्स हैं जिन पे मैं दोनों ही विशेषज्ञों से आपकी राय जानना चाहूंगी। तो मिस्टर अनीजा, आपसे अगर मैं बात करूं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की, तो इसमें अगर देखा जाए तो इंडिया का इनिशिएटिव इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का फोकस दुनिया के 7 मेजर कैट स्पीशीज और उनके हैबिटेट्स के कंजर्वेशन के लिए है, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव से हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और ये सिर्फ डिप्लोमेसी की बात नहीं है, ये बायोडायवर्सिटी की बात है, ये वाइल्ड लाइफ की बात है। तो अगर इसके बारे में आप हमसे चर्चा करें तो इसके आउटकम्स आपके हिसाब से कितने इम्पैक्टफुल रहे हैं, और आगे आने वाले समय में इसको हम कैसे प्रोग्रेस करते हुए देखेंगे?
2: भारत की जो अप्रोच रही है पूरे विश्व के लिए वो एक होलिस्टिक अप्रोच रही है, खास करके अगर हम एनवायरनमेंट की बात करें तो एनवायरनमेंट में जो एक तरह से संतुलन की जरूरत है, जिसमें आपके जो ग्रीन कवर है, अमेज़न के फॉरेस्ट हैं जो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं, या वाइल्ड लाइफ है और जो ह्यूमन एलिमेंट है, इसके बीच में एक संतुलन लाने की बहुत जरूरत है, क्योंकि तभी विश्व में बैलेंस रहेगा। और जिसका इफेक्ट अगर बैलेंस ना रहे तो फिर हम देखते हैं कि एक्सट्रीम वेदर से लेके जो है कॉन्फ्लिक्ट, एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ रहा है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि ये संतुलन बनाए रखें, और यही अप्रोच भारत की रही है। जहां तक के सवाल आ रहा है बिग कैट अलायंस का, तो ये एक बहुत जरूरी उसमें एलिमेंट था। हमने देखा कि भारत के अंदर एक चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक पर्सनल इनिशिएटिव था कि इसको रिहैबिलिटेट किया जाए। तो आपको याद होगा 2022 की शायद बात है कि जब हम चीता को बोट्सवाना से और साउथ अफ्रीका से लेके आए यहाँ पर भारत में, तो बिग कैट अलायंस का और उसके तरफ जो फोकस है वो उस बात से बिल्कुल दर्शाता है, मुझे लगता है। दूसरी बात ये भी है कि हम बिग कैट अलायंस हो या वाइल्ड लाइफ कॉन्जर्वेशन हो, उसको टूरिज्म से भी जोड़ रहे हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बहुत इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट बन चुकी है सिर्फ भारत के टूरिज्म के लिए। अफ्रीका में देखा कि किन्या में जैसे तंजानिया के बॉर्डर पे आप देखते हैं कि हजारों की तादाद पर लोग जाते हैं एनिमल माइग्रेशन को देखने के लिए।
1: मसाई
2: तो
1: मारा
2: एक तरह से मसाई मारा वही एलिमेंट है कि सिर्फ उसके कई पहलू हैं, एक तो जो बैलेंस की मैंने बात की है, और दूसरी एक जो बात है कि हम अपने एनवायरमेंट और अपनी वाइल्ड लाइफ से ज्यादा और ज्यादा जुड़े। हम आजकल देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर जो है जो रोके जा रहे थे उनको भी खोला जा रहा है, तो इसलिए ये एक बड़ा मल्टी डायमेंशनल एक इनिशिएटिव है।
1: अम्बेसडर सज्जनहार। आखिर में चलते चलते मैं आपसे आपके विचार जानना चाहूंगी। हमने इतने बड़े मुद्दों पे चर्चा करी, और अब मैं चर्चा को विराम देने से पहले एक बहुत ही सॉफ्ट पावर की तरफ आना चाहूंगी, और वो है योगा डिप्लोमेसी। तो जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला प्रधानमंत्री के रूप में, उसी साल योगा डे UN ने डिक्लेयर कर दिया। और आज अगर हम देखें तो योगा सिर्फ एक शब्द ही नहीं है, और ना ही सिर्फ एक व्यायाम का रूप है, बल्कि पूरे दुनिया में लोग योगा से प्रभावित है, उनके जीवन में काफी बदलाव आया है। तो योगा को एक सॉफ्ट पावर और एक सॉफ्ट डिप्लोमेटिक टूल के रूप में अगर हम देखें तो कैसे इसने पूरा एक रूप निभाया है? और योगा के साथ अगर हम कल्चरल डिप्लोमेसी को भी जोड़ दें, आप कई देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, तो ये सारी चीजें एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के फेवर में कैसे काम करती हैं?
0: आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो जब प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला 2014 में, आपको याद होगा जो पहली बार वो सितंबर 2014 में वो गए थे वहाँ यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करते हुए, और तब मुझे याद है जो उन्होंने कहा था, और ये उनका ही था, आउट ऑफ द बॉक्स उनका ये थिंकिंग था, जो हमको कुछ ऐसा करना चाहिए, भारत की कोई ऐसी देन देनी चाहिए पूरे विश्व को जिससे कि वो पूरे विश्व को उसका फायदा होना चाहिए। और तब उन्होंने कहा जो हमको एक अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस में मनाना चाहिए, और मुझे याद है जो तब हमारे जो सभी वहां पर यूनाइटेड नेशंस में

0: जो अपनी डेलीगेशन थी उन्होंने कहा, जो उनको बहुत ही ये ऐसा इसमें कोई इतना ज्यादा अट्रैक्टिवनेस नहीं लगा, परंतु फिर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा नहीं, इसको हमको आगे लेकर जाना चाहिए। और फिर उसी साल हमने देखा है जो करीब पूरे विश्व के 193 देश हैं, परंतु उनमें से 177 देशों ने मिलकर इसको प्रमोट किया और इसको उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के इस जून को उन्होंने माना और पूरे विश्व ने इसको स्वीकार किया। और उसके बाद हम देख रहे हैं जो हर साल पूरे विश्व में ये मनाया जाता है और बहुत ही चाव से मनाया जाता है, बहुत ही एंथुजियाज्म से, बहुत ही एनर्जी से, इसको ऊर्जा से इसको मनाया जाता है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो ये सॉफ्ट पावर की हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान बनकर उभरा है और इससे पूरे विश्व में भारत का एक डंका बजता है, जो केवल एक इसको एज एन एक्सरसाइज लिया जाए, परंतु ये बिल्कुल ही पूरी तरीके से एक होलिस्टिक तरीका है जो अपने को डेवलप करने का, अपने को आगे ले जाने का, और इससे पूरे विश्व में इसका भारत की जो छवि है इसको और भी और आगे लेकर जाया गया है। तो मैं समझता हूँ योगा का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है पूरे विश्व में, और जो प्रधानमंत्री मोदी ने शुरुआत की, यही मैंने पहले भी कहा था, जो जो प्रधानमंत्री मोदी का जो लीडरशिप है, जो विजन है, वो इन सभी चीजों में दर्शाता है, जो कैसे हम जहां पर लोग नहीं सोचते जो कोई पॉसिबिलिटी है उसमें वो अपॉर्चुनिटीज निकाल लेते हैं, उसमें ही संभावनाएं निकाल लेते हैं, और उसी से पूरे विश्व में भारत का जो योगदान है उसको और आगे ले जाने में सफल रहे हैं।
1: अम्बेसडर सज्जनहा और मिस्टर अनीजा, दोनों विशेषज्ञों ने ही काफी विस्तृत रूप से सारे ही विषयों पे हमें जानकारी दी, और जो हमारा डिस्कशन रहा है आज उससे मेरे लिए तो काफी ही इनलाइटनिंग रहा है। आई एम श्योर जो भी लिसनर्स इस डिस्कशन को सुनेंगे उनको ये समझ में आएगा कि पिछले 25 वर्षों की जो प्रधानमंत्री की जर्नी रही है वो सिर्फ देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश में उन्होंने जो किया वो तो किया ही, उसके साथ साथ विश्व मंच पे कैसे भारत आगे जाए उस पर भी काफी काम किया गया है। आप दोनों ही विशेषज्ञों का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। आप दोनों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े, उसके लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत
2: धन्यवाद
0: धन्यवाद दीक्षा, बहुत धन्यवाद।
3: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 26वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा, गुजरात से विश्व मंच तक 25 वर्ष की यात्रा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार और रणनीतिक विश्लेषक अतुल अनेजा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी आकाशवाणी संवाददाता दीक्षा सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsttalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।

वेलकम बैक दोस्तों। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विशेष श्रृंखला के बाद अब हम आपको सुनाएंगे कुछ चुनिंदे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। पहला सॉन्ग है फिल्म जिंदगी मिलेगी ना दोबारा से, एक जुनून।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से, जहाँ होती है दिल से दिल की बात।

0: प्रतिबद्ध हैं। बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक एक क्षेत्रीय संगठन है जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल है। सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी में 13 जिला निर्वाचन अधिकारी, 17 मतदाता पंजीकरण अधिकारी

0: 1,313 बूथ स्तर के अधिकारी पर्यवेक्षक और 14,900 से अधिक बूथ स्तर के अधिकारी इस कार्य को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की संख्या इस वर्ष जून के अंत तक बढ़कर 111 करोड़ 41 लाख से अधिक हो गई है, जबकि मार्च 2026 के अंत तक ये लगभग 109 करोड़ 28 लाख थी। इस वृद्धि दर में तिमाही आधार पर 96% की वृद्धि दर्ज की गई है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने अपनी भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक रिपोर्ट में बताया है कि कुल इंटरनेट उपभोक्ताओं में से 4,77,00,000 से अधिक वायर्ड इंटरनेट उपभोक्ता और लगभग 106,64,00,000 वायरलेस इंटरनेट ग्राहक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि देवी वैष्णवी की दैवीय शक्ति असीम वीरता का प्रतीक है और वे ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति हैं। अपने सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देवी पूरे ब्रह्मांड को चलाती हैं और प्रसन्न होने पर मोक्ष प्रदान करती हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में कल नियंत्रण रेखा के पास घुसपैठ की कोशिश के दौरान बारूदी सुरंग फटने से लश्करे तैयबा के एक शीर्ष कमांडर सहित 4 आतंकवादी मारे गए। उनकी पहचान लश्कर के शीर्ष कमांडर मोहम्मद फैजान, मोहम्मद इश्तियाक, मोहम्मद वकास और मोहम्मद आसीम के रूप में हुई है। ये सभी पाकिस्तानी अवैध कब्जे वाले पुंछ जिले के हाजिरा तहसील के मंडला मडारपुर के निवासी थे। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित रहने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोल चक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग, क्लॉट प्लेस, आउटर सर्कल शामिल हैं। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। 2 ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 32 में ओलंपिक चैंपियन और विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की आन सान एंग यंग से खेलेंगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। India will host the first BIMSTEC Home Ministers meeting today in New Delhi, where issues related to terrorism, transnational organized crime, narcotics radicalization, trafficking, illicit financial flows, and cyber threats will be discussed. In a social media post, Home Minister Amit Shah said the historic meeting underscores the shared resolve of the BIMSTEC to strengthen cooperation in tackling common security challenges, including terrorism, organized crime. He said through decisive coordination, the members will remain committed to building a safer, stronger and more secure BIMSTEC region. The Election Commission of India, ECI, has stepped up efforts to ensure that every eligible citizen is included in the electoral rolls, with special camps and voter assistance campaigns being organized across several states and union territories. Chief Electoral Officers, CEOs and District Election Officers, DEOs, are taking proactive measures to help voters register their names, correct personal details and resolve discrepancies in the voter lists in line with ECI instructions. Special camps are being organized at polling booths to make voter registration and correction services more accessible. Delhi Traffic Police has issued a traffic advisory for today in view of the law and order situation in New Delhi. The Traffic Police said traffic movement is likely to be affected at various stretches, including Minto Road, roundabout Mandi House, Patel Chowk, Guru Nanak Chowk, Lodhi Road flyover, Sardar Patel Marg and Outer Circle, Connaught Place. The Traffic Police said informed that subject to the prevailing situation, diversions may be enforced at some major junctions and stretches of Delhi. Commuters have been advised to plan their journey in advance and allow additional travel time. In Jammu and Kashmir, four terrorists, including a top Lashkar-e-Tayyiba LET commander, were killed in a landmine blast along the line.

वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आपकी आज के आरजे याजू, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। सुबह की इस पहले ट्रांसमिशन के आखिरी पड़ाव पर अब हम आप पहुंच रहे हैं उस प्रोग्राम में जिसका पूरा रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में रहता है। जी हां, रेडियो ऑन डिमांड शुरू हो चुका है। यहां बातें सिर्फ वही होंगी जो आप चाहेंगे और गीत भी वही जो सीधे आपकी पसंद से निकल कर आते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे रेगुलर और बेहद प्यारे लिसनर शिवा गोप जी और उनकी पूरी फैमिली के साथ। शिवा जी, कल आपका इंतजार थोड़ा लंबा जरूर हो गया, इसलिए आज बिना किसी देरी के सबसे पहले आपकी पसंद का ये नगमा प्ले कर रहे हैं। सुनिए फिल्म अजनबी से मेरी जिंदगी में अजनबी का इंतजार है।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नेरगा।

गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट एनबीसीसी, एवेंजेलिस गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद। दोस्तों, अगली फरमाइश आई है असम से हमारी डेली लिसनर सुनीता बसुमतारी जी की तरफ से। सुनीता जी ने ये गाना खास डेडिकेट किया है अपने सारे दोस्तों के नाम, बाइकोन, देवशीष, रमेश, अमल और बिमल के लिए। दोस्ती के इस रिश्ते को सेलिब्रेट करते हुए फिल्म कोई आपसा से सुनिए, तेरे दिल का मेरे दिल से रिश्ता पुराना है।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: दोस्तों अगला गीत जाता है बोकाखात असम के हर्षित गोस्वामी जी के नाम, जिन्होंने हमें मैसेज किया है शाहरुख खान की मूवी का, जो मूवी का नाम है यस बॉस। हर्षित जी आपकी रिक्वेस्ट पर हाजिर है फिल्म यस बॉस से, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई, सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों, अगला मैसेज है धेमाजी आसाम से हमारे रेगुलर लिसनर बिमल बासमतारी जी का। बिमल जी ने ये गाना न सिर्फ अपने दोस्तों के लिए बल्कि आकाशवाणी के सभी श्रोताओं और यहां के आरजेएस के लिए भी भेजा है। बिमल जी, रोज जुड़ने के लिए और रेडियो से इतना लगाव रखने के लिए दिल से शुक्रिया। मिथुन चक्रवर्ती की फिल्म फूल और अंगार से पेश है आपका पसंदीदा ट्रैक मुझको पीना है पीने दो।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

दोस्तों आप बने हुए हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड में। हमारे रेगुलर ट्रायो रोमेश रूनू और लकी जी ने गोलाघाट आसाम से हमें मैसेज किया है। उन्होंने ये गाना अपने पूरे फ्रेंड सर्कल भाईकोन अमोल बिमोल देवशीष हितेंद्र जोगेंद्र सोनाली अंजलि और सुनीता के नाम भेजा है। फिल्म जमीर से सुनिए जिंदगी हंसने गाने के लिए।

दोस्तों, आज 13 अक्टूबर है, यानी संगीत की जादूगर किशोर कुमार जी की पुण्यतिथि। उनके बिना रेडियो और गीतों की बात अधूरी है। सरी हाजन, कर्बी आंगलोंग से जोगेंद्र जी, सोनाली और दोरमकिरी ने किशोर दा को याद करते हुए उनका एक बेहद एनर्जेटिक डांस नंबर रिक्वेस्ट किया है और इसे अपने सभी दोस्तों को डेडिकेट किया है।

दोस्तों अगला गाना जुड़ा है हेलम असम से हमारी रेगुलर लिसनर ज्योति सुरेन जी की फरमाइश से। ज्योति आपकी पसंद हम प्ले कर रहे हैं फिल्म अक्सर से मोहब्बत की।

दोस्तों, रेडियो ऑन डिमांड पर एक बेहद खास मैसेज मिला है और ये मैसेज आया है उस जगह से जिसे दुनिया जन्नत कहते हैं, गुलमार्ग कश्मीर से। हमारे साथ जुड़े हैं वसीम बशीर जी। वसीम जी, अगर आप पहली बार आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम के इस प्लेटफॉर्म पर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश के लोगों की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। गुलमर्ग का नाम सुनते ही जहन में बस बर्फ से ढके पहाड़ और चिनड़ के पेड़ आते हैं। वहां

के वह इस वक्त मौसम कैसा है। वैसे ठंड तो अच्छी खासी शुरू हो ही गई होगी। यहाँ अरुणाचल में भी हम हिमालयास के फुटहिल्स पर है, तो सुबह और शाम की हवाओं में ठंडी मीठी तितुरन अब महसूस होने लगी है। कश्मीर को अभी तक बस फिल्मों में या तस्वीरों में ही देखा था। एक अलग ही सुकून दिखता है वहां। वैसे मेरे पर्सनल बकेट लिस्ट में है कि जिंदगी में एक बार कश्मीर जरूर आना है। उम्मीद है किसी दिन ये सफर जरूर मुकम्मल होगा। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। आपसे कनेक्ट करके सच में बहुत अच्छा लगा। तो चलिए बिना किसी देरी के गानों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं अगली फरमाइश की तरफ।

दोस्तों चलिए गानों का सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। अगली फरमाइश आई है निशा रानी जी की तरफ से। उनकी रिक्वेस्ट पर हम प्ले कर रहे हैं फिल्म रुस्तम से अतीफ असलम का ये बेहद रोमांटिक ट्रैक।

दोस्तों अब चलते हैं बीमारी असम की तरफ, जहां से हमारे लिसनर लकी हेम्ब्रम जी ने हमें मैसेज किया है। कुमार सानू और अलका याग्निक के एक पुराने मेलोडियस ट्रैक। लकी जी, आपकी पसंद पर हाजिर है फिल्म एक रिश्ता से ये गीत।

दोस्तों, इसी के साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड यहीं पर समाप्त होता है और आज के इस प्रातःकालीन प्रसारण भी सत्र के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आपको हमारा ये सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक ती तंगजंग और तकनीकी अभियंता कोलो कालो। दोस्तों, कहीं मजा आएगा क्योंकि मनोरंजन का ये सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे नानस के साथ अरुण एफएम पर। तो अब अपने आरजे राजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। आप सुनते रहिए अरुण एफएम। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है।
1: Power is not just the ability to move ahead. It is also the ability to empower others to move ahead. भारत का मानना है कंपटीशन जरूरी है, लेकिन कंपेशन भी होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्तमान युग में डिजिटल शक्ति इस बदलाव के प्रमुख चालकों में से एक बनकर उभरी है और इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। श्री मोदी ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए अधिक से अधिक अवसरों के द्वार खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना हो, क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि भारत ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से स्टार्टअप्स के लिए भारत के पारिस्थितिकी तंत्र का काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्पों को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 6 राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति की है। सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर अब केरलम के नए राज्यपाल होंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को

तमिलनाडु का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। ब्रजमोहन राम ओडिशा के राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, जबकि डॉक्टर सुधा यादव कर्नाटक की राज्यपाल होंगी। डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाया गया है। दुष्यंत गौतम सिक्किम के राज्यपाल होंगे। सभी नियुक्तियां कार्यभार संभालने की तिथियों से प्रभावी होंगी। निर्वाचन आयोग ने प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में सुनिश्चित करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सूचित किया है कि 18 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर विशेष शिविर आयोजित किए जाएंगे। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में पैदल यात्रा के रास्ते और पुल बहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रैकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारियों ने 12 विदेशियों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। दिल्ली में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर यातायात पुलिस ने परामर्श जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न हिस्सों में आज दिन भर यातायात प्रभावित होने की संभावना है। कई जगह यातायात मार्ग परिवर्तित किया जा सकता है। इनमें मिंटो रोड, मंडी हाउस और पटेल चौक गोलचक्कर, गुरु नानक चौक, लोधी रोड फ्लाईओवर, सरदार पटेल मार्ग और कनॉट प्लेस आउटर सर्कल शामिल है। यातायात पुलिस ने प्रभावित मार्गों पर अनावश्यक यात्रा से बचने, मार्ग बदले जाने के संकेतों और यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी दूसरी प्रसारण सभा में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट अजय ननास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले आपके साथ जुड़ी हुई थी आप सबके चहेते आरजे याजुनादा, जिन्होंने आपके साथ बिताए हमारी पहली प्रसारण सभा का सफर, और अब उसने सौंप दिया है स्टूडियो का माइक मेरे हाथ में। तो अब से लेके अगले कुछ पलों तक आपका जीवन साथी यानी आपका हम सफर रहेगा आपका आरजे ननास। और दोस्तों, हमारे इस दूसरी प्रसारण सभा को शुरू करने से पहले आइए मैं आप सभी को बता दूं, आज की इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो और एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोने तथा तकनीकी अभियंता रितेश सिंह। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं हमारा ये दूसरा प्रसारण सभा कार्यक्रम फिल्मी लहर के साथ। तो बने रहिए और जुड़े रहिए हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: इसके बारे में? कुछ नहीं, हमारा आधा लाइफ निकल गया उसका पीछा करते करते। बर्फ ही नहीं होता ना तो हम आज पुलिस से एसपी बन के रिटायर करता। अभी हम होम्योपैथी की पूरी बेचता है। होम्योपैथी।
1: तो दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है हमारा कार्यक्रम फिल्म लहर आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। और अब दोस्तों, अब शुरू होगा वेस्टर्न मेलोडीज।
2: वेलकम बैक एवरीवन टू द वेस्टर्न म्यूजिक प्रोग्राम ओनली ऑन आकाशवाणी ईटानगर। आई एम सैम योर होस्ट फॉर द डे। टुडेस सेट लीन्स इनटू दैट क्वाइट इंटेंसिटी, द काइंड दैट डजंट रश यू बट स्लोली पुल्स यू डीपर। इट्स अबाउट अवेयरनेस, डिस्टॉर्शन, रिलीज एंड फाइंडिंग योर वे बैक थ्रू इट ऑल। थिंक ऑफ दिस एज अ मिड डे ड्रिफ्ट थ्रू द माइंड, लेयर्ड, शिफ्टिंग एंड ऑनेस्ट। We open with something that feels like a horizon just beginning to change. Moby takes a familiar emotion and stretches it into something cinematic, distant, echoing, almost like watching your own thoughts from afar. It's not loud, but it lingers, like the first realization that today might carry more weight than expected. New Dawn Fades by Moby.

0: छोटा दोस्तों, अभी आप अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास ये सुनिश्चित करना है कि भारत की क्षमताएं अन्य देशों के लिए भी अवसरों के नए द्वार खोलें।
2: इनोवेशन की पावर भी ऐसी ही है, एक आइडिया को प्रोडक्ट में बदलना, एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन में बदलना, ये अपने आप में एक बड़ी क्षमता है। लेकिन जब यह अवसर समाज के अधिक से अधिक लोगों को मिलता है तो शक्ति का संतुलन बनता है और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। भारत की स्टार्टअप जर्नी इसी बदलाव का उदाहरण है।
1: श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है।
2: पावर के पर्पज पर जो फोकस है, यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है, लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि ये दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2000 के बाद से स्टार्टअप के लिए भारत में काफी विस्तार हुआ है और स्टार्टअप्स की संख्या 2,50,000 को पार कर गई है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ये ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच पर्यटन भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। नेपाल में आई बाढ़ के कारण मध्य क्षेत्र में ट्रैकिंग और पुल ढहने से विभिन्न स्थानों पर 100 से अधिक विदेशी ट्रकर्स फंस गए हैं। काठमांडू से लगभग 100 किलोमीटर पश्चिम में गोरखा जिले में तड़के हुए भूस्खलन के बाद आज अधिकारी

मारों ने 12 विदेशों सहित 321 लोगों को सुरक्षित बचाया। सेना ने कहा है कि नदी का जलस्तर कम होने के बावजूद बचाव अभियान कल भी जारी रहेगा। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक में 0.6% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स लगभग 433 अंक की वृद्धि के साथ 72,357 पर था, जबकि निफ्टी 22,490 पर कारोबार कर रहा था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार श्रोता दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम गजल में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला गीत। कल चौधरी की रात थी, जिसे गाया है जगजीत सिंह ने। लीजिए दोस्तों पेश है ये बेहतरीन गीत आप सबके लिए। बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: सो तो दोस्तों इसी खूबसूरत गजल के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम गजल। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम आज के मेहमान।
1: नमस्कार, 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम आपकी सेवा में हाजिर है कार्यक्रम आज के मेहमान के साथ, और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त ग्यामर नीमे। और श्रोताओं, आज हमारे बीच मौजूद है हमारे अरुणाचल के एक बहुत ही प्रसिद्ध पर्वतारोही माउंटेनियर श्री तका तमुज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे अरुण एफएम के स्टूडियो में। श्री तका तमुज सर, उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया है 2018 में, और इसी के साथ साथ ही इज ऑल्सो रेसिपिएंट ऑफ स्टेट गोल्ड मेडल फॉर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन फॉर N-32 प्लेन क्रैश ड्यूरिंग जून 2019। सो सर, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट मेडल एंड फॉर योर एवरेस्ट एक्सपीडिशन।
0: थैंक यू वेरी मच।
1: तो चलिए सर, अभी हम शुरुआत करते हैं कि हम जानना चाहेंगे कि आपकी सफर की शुरुआत कैसे हुई। सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आप कहाँ से हैं, आपने अपनी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से करी।
0: जी, मैं सियांग, उस समय वेस्ट सियांग था, अभी सियांग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। सियांग डिस्ट्रिक्ट जमलोमोंगको विलेज से है। तो वहां से हम अपना क्लास 5 तक वहां पे पढ़ा है। उसके बाद मेरा बड़ा भैया देवमाले में था, उसमें जाके हायर सेकेंडरी किया है। उसके बाद क्लास 12 वहां पे अलोंग हायर सेकेंडरी में जाके वापस आके, उसके बाद कॉलेज करके अभी यहाँ
1: माउंटेनियरिंग में। जी है। तो कॉलेज आपने कौन सी सब्जेक्ट में आपने पढ़ाई करी कॉलेज में?
0: जी, मैं सिविल इंजीनियर एम है।
1: तो आप इंजीनियर है
0: जी, जी।
1: तो इंजीनियरिंग से ये माउंटेनियरिंग आपने, मतलब ऐसे जंप कैसे हो गया ये?
0: जी, नसीब कहीं में भी ले जा सकता है आपका, अगर लिखा है तो आप सीधा इंजीनियर से अभी हम माउंटेनियर बन गया है। तो उसमें कुछ ये भी है, उस समय इंजीनियरिंग का एग्जाम ये सब देके बेहतर आता। तो कुछ बहुत कुछ करप्शन ये सब का वजह से प्रॉब्लम भी महसूस किया है। बिसाइड उसके बाद हम जॉब का अलावा कुछ और कर सकता है, ऐसे मेरा ख्याल में था। और साल में बहुत कुछ इंस्पिरेशन मिला था किसी और से। तो अब तक ग्रेजुएट हम माउंटेनियरिंग कोर्स में करके, तो कोर्स करने का बाद और जुनून बढ़ते गया। तो फर्स्ट बेसिक कोर्स किया 2014 का आधा में, 15 में एडवांस कोर्स किया। उसके बाद कुछ पहाड़ चला है, तो और भी अपना को गर्व महसूस किया है, हम और कुछ कर सकता है बोल के। तो ऐसे करके, और एक पहाड़ चढ़ने के बाद फिर दूसरा पहाड़, फिर तीसरा पहाड़ करते करते ये माउंट एवरेस्ट तक आ गया।
1: या जी हाँ। तो आपने कहा कि आपको जब आप बहुत सारे इंस्पिरेशंस थे जिसके वजह से आपने ग्रेजुएशन के बाद माउंटेनियरिंग ज्वाइन किया, तो कौन कौन थे आपकी जिंदगी में जिन्होंने आपको इस पर्टिकुलर फील्ड को चुनने के लिए इंस्पायर किया?
0: जी, पहला तो हम जब कॉलेज 2014 में पास आउट हो रहा था, तो उसमें एक कॉलेज का प्लेसमेंट आया था। प्लेसमेंट आते वक्त हमको काम करना था दिल्ली में, तो दिल्ली में भी हम 6 महीना जैसे काम किया है। तो सिविल इंजीनियरिंग एक फॉग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी था, रमेश नगर में एक ये था, उसमें काम करके तब वहां पे आदमी लोग बहुत आगे था। कोई ट्रेकिंग जाता है मनाली लेह लद्दाख, उसमें जाता था। तो हम भी उसमें कहीं कहीं में साथ में, जब थोड़ा छुट्टी मिलता है तो साथ में दोस्तों का साथ, कॉलेज लोग का साथ जाता था। तो उसमें महसूस किया, अरे अपना घर में, अपना जगह में मेरा इतना बाहर है।

0: नदियां हैं और जंगले हैं, तो उस समय वही फील कर रहा था, नहीं हम कुछ करेगा तो अपना लिए करेगा, क्यों दूसरा का पैसा देके जाएगा, हम करेगा तो अपना, यहाँ में कोई किसी को पैसा देके आने देगा,
1: जी हाँ.
0: ऐसे सोच विचार कर रहा था। तो लकीली उस समय मेरा यहाँ पे भी बहुत एब्रेस्टर निकल चुका था, तो इंस्पिरेशन, मेन इंस्पिरेशन आपका एक पर्स मालूम हुआ था जहाँ पिताजी पोस्टिंग था, हम एक वेकेशन में आया था रोइंग में, तो पिताजी वहाँ पे पोस्टिंग था, तो उसमें देखा था 3 महीने नदी है तो मिसमी बेल्ट का वहाँ का, तो उसका घर जला हुआ था, एक्चुअली मेन रीजन जो घर जला हुआ था, तो सुन के ये 3 महीने का घर जला है सुना था, तो उसके बाद उसको मालूम हुआ तो एवरेस्टर है, तो ये एक पॉइंट था वो एवरेस्टर का सुनाई देने वाला माउंटेनियरिंग का। और साथ में एक हम यहाँ पे एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का यूडीसी एग्जाम था, तो उसमें दे रहा था, तो पेपर में लिखा हुआ था कौन सबसे अरुणाचल से आगे क्लाइम किया है माउंट एवरेस्ट, तो इसमें एक ऑप्शन में अंशु था, तीने था, तफी मरा था, हम उस सवाल का जवाब नहीं दे सकेगा, नहीं दे सका,
1: ओके.
0: तो मतलब हम फील हुआ कि कौन किया था अभी तक मालूम, उस समय मालूम नहीं था, तो उसमें इतना अपडेट में नहीं रहता था, तो उसमें बाद में मालूम हुआ कि थप्पी मारा था बोल के, तो हम ऑफिस में भी ऐसे जाके मिलके भी आया था, थप्पी मारा कौन है क्या है, और एक उस समय एक एक अच्छा गाइडेंस डॉक्टर रोमियो करके, उसने बहुत अच्छा गाइडेंस किया था, उसको मिला था, चलो उस दिन वो थप्पी मारा को नहीं मिला था, लेकिन रोमियो को, रोमियो माइते डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स में इस एडवेंचर सेल का वो ये था इंचार्ज था, तो उसको मिलके बात किया है क्या क्या करना है कैसे क्या करना है, तो ऐसे करके आके पूछताछ किया है, पूछताछ करके आके हम कहाँ पे कोर्स करता है उसको मालूम करके आ गया, तो खुद जाके उस समय आदमी भी बहुत कम था ऐसे खुद पूछ के आने के लिए, वो लोग बोल रहा था उस समय आदमी को बुला बुला के माउंटेनियरिंग के लिए इंस्पायर करके बुला के, ये कोर्स करो वो कोर्स करो माउंटेन चढ़ो तो इतना आगे जाएगा बोल के नहीं था, लेकिन खुद एक ख्वाहिश था, दिल्ली में भी ऐसे कुछ मिल गुल के कुछ देखा था, और अरुणाचल में आके अच्छा हुआ है कि यहाँ पे भी बहुत अच्छा कर सकता है बोल के, तो उसमें मालूम हो के हम कोर्स गया बेसिक कोर्स 2015 का फर्स्ट ये को मार्च को, उसके बाद उसी साल में 2017-15 का ये को अक्टूबर नवंबर को एडवांस कोर्स भी कर दिया था,
1: ओके.
0: तो उस समय एक साल में दो कोर्स
1: साथ में
0: कंटिन्यू
1: कर लिया. जी
0: करना
1: हाँ.
0: मेरे लिए बहुत स्पीड अप भी हुआ है, तो उससे हम माउंटेनिंग शुरू हुआ है यहाँ पे अरुणाचल में जितना भी हो, और हम लोग कुछ समय में बहुत था, कोई कोई छोड़ दिया, कोई कोई अभी तक स्ट्रगल कर रहा है, और हम तो जीत गया कि हमको और आगे जाना है करते, तो ये 3-4 साल में मेरा एवरेस्ट भी हो गया।
1: जरा लेट शुरू करा माउंटेनियरिंग, लेकिन लेट शुरू करने के बाद भी आपने वो पकड़ लिया उसे.
0: जी
1: बहुत ही कम समय में आपने बहुत कुछ अचीव करा है. तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि जब आप एक माउंटेनियरिंग करते हैं तो किस किस तरह की तैयारियां आपको करनी पड़ती है? मतलब
0: जी
1: किसी एक्सपीडिशन में जाने से पहले आपको किस तरह की तैयारियां करनी पड़ती
0: सभी एक्सपेडिशन चाहे एवरेस्ट हो या चाहे 6,000 का पीक हो, तो उससे पीक मेंटेन करना शुरू हो जाता है, तो हाई एल्टीट्यूड उससे बोलता है मेन, जो 6,000 एवप या 6,000 का ये जो माउंटेन जो एक ही है, सबसे बड़ा और छोटा मतलब इतना फर्क नहीं होता है, इसका तापनेस जो किसी में थोड़ा ज्यादा होता है, डेथ रेट किसी में ज्यादा होता है, लेकिन एक्चुअल हमको जो ये है सेम है हर एक माउंटेन, और हम लोग विश्वास भी वही करता है, आज छोटा माउंटेन चढ़ रहा है तो प्रॉब्लम और उसका जो जितना ये है डेथ मतलब कोई भी हो फैटलिटी हो सकता है वो सेम रेट है, तो आपको वही फर्स्ट जो एक मेंटल प्रिफरेंस होता है, मेंटल टफनेस जितना झेल सकता है उतना माउंटेनर का ये होता है, और साथ में फिजिकल फिटनेस, ये दोनों है प्राइम, और एक 3 नंबर में है सबसे प्राइम जो वो फाइनेंशियल,
1: जी
0: मेंटल
1: हाँ.
0: फिजिकल एंड फाइनेंशियल यानी कैपिटल पैसा जो, और तो तीनों साथ में होगा तो आपको भगवान ऑलमोस्ट साथ देगा जब तक तीनों ये नहीं होगा तो वही कोई आपका लाख का ऊपर में है, अगर ऊपर में सब्सिस होने का बाद भी ऊपर में कुछ क्या हो सकता है, वो तो बाई चांस एवलेंस आ गया आपका और लाइक क्रेवासेस में गिर गया, तो उसका उसको तो उपाय नहीं है, वो तो हम खुद नहीं कर सकते, वो भगवान कहीं में भी हो, अगर आस मरना है तो घर में भी मर सकता है, या तो पहाड़ में भी लास्ट एंड

0: वक्त पर मर सकता है, तो उसके लिए इतना ये नहीं है। लेकिन जो मेरा तरफ से प्रिपरेशन करने के लिए, एक पहाड़ को चढ़ने के लिए पहले तो आपका फिजिकल फिटनेस 100% चाहिए, और एक मेंटल फिटनेस, जो मेंटल जितना वहां पे बहुत सारा तकलीफ आ जाता है एल्टीट्यूड में आने के बाद, सांस लेने का प्रॉब्लम हो जाता है, आप कभी कभी सोचता है कि हम इसका बाद गिव अप कर देगा, ये यहाँ का ऊपर नहीं जा सके सोचता है, लेकिन उसमें अपना मेंटेलिटी को बराबर रखना पड़ेगा, तब जाके आप आगे और मुकाम हासिल कर सकेगा। और साथ में हम जैसे माउंटेनियर लोग के लिए बहुत कष्ट होता है, कभी कभी स्पॉन्सर नहीं मिलता है, साथ में आपको खुद का पैसा और अपना माँ पिताजी का जो पैसा है उसको लेके वहां पे, वो तो उसमें रिटर्न तो नहीं मिलेगा, पर भी अपना कुछ एक्सिस एम्स, अपना जो साहस है उसको करने के लिए जो पैसा जाता है, तो उसके लिए भी बहुत।
1: आपने अभी एक बात मेंशन करा है कि अगर जब कभी आप पहाड़ चढ़ते हैं तो उसमें बीच में मेंटली अगर आप स्ट्रांग नहीं हो तो बहुत बार गिव अप भी कर देते हैं। इन योर केस व्हाट कीप्स यू गोइंग? आप मेंटली अपने आप को किस तरह से स्ट्रांग बनाते हैं?
0: जो मेंटल, ये एक विलिंगनेस होता है जो एक आम इंसान के लिए सबसे बड़ा पावर होता है। जो पहले भी कोई कहा था, किसी भी चीज को चाहता है तो पूरा कायनात मिलाने में जुट जाता है, यही एक
1: अरे
0: ये है।
1: माउंटेनियरिंग के साथ साथ आप शायरी
0: नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी चीज को दिल से करेगा बोल के चाहता है तो वो एक आप मेंटल फिटनेस बोल सकता है, क्योंकि जब पहाड़ चढ़ते समय वही एक चीज था, कुछ कुछ ये सब, हम तो आराम से वहां पे जाके अच्छे से पढ़ाई करके एक ऑफिस में बैठ सकता है, उससे ख्याल आते रहता है छोटा छोटा चीज, तो उसमें बहुत गिव अप करने के लिए एक बोलता है छरो, एक हो जाएगा, इतना तक हो गया हो गया हो गया बोलता है, लेकिन उसमें एक आपका विलिंगनेस, जितना आप दिल से चाहता है
1: जी हाँ
0: कुछ करना ही है हमको, चढ़ना ही है चढ़ना ही है चढ़ना है, और स्पेशली इसको फीडअप भी करता है, ये हम लोग इंसान है, अपने आपको बहुत झूठ बोलने के लिए इजी होता है, क्या करते हैं जब झूठ बोलता है, दर्द हो रहा है तो दर्द नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है कहने से सच में दर्द नहीं होगा,
1: जी
0: तो
1: हाँ
0: इसके लिए हम लोग माउंटेन में जब चढ़ते समय हमको करना है करना है, पूरा ये करता है, हम लोग बोलते रहता है नहीं हमको करना है, कुछ भी हो करना है, तो कभी कभी एक क्लिप्स होता है जो चढ़ते समय बहुत आदमी लोग कोई कोई वहां से गिव अप करके आ जाता है, एक ही माउंटेन में नहीं होता है, हर एक अलग अलग माउंटेन होता है, एक टापनेस जो सबसे ज्यादा उसमें हो जाता है, तो उसमें कोई कोई गिव अप करते कर देता है, लेकिन जब जिस किसका पास विल पावर नहीं है ना, माउंटेनियरिंग हमको करना है, मरो जियो हमको करना है, तब हम लोग जाके वो सक्सेस होता है
1: नहीं,
0: वो।
1: तो आई थिंक मुझे लग रहा है कि माउंटेनियरिंग में फिजिकल फिटनेस और फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो बहुत ही बड़ा रोल निभाता है शायद।
0: जी
1: हाँ, तो आई थिंक माउंटेनियरिंग बच्चों का खेल नहीं है अंटिल एंड अनलेस आपके पास वो विल पावर और डिटर्मिनेशन ना हो, शायद आप आगे नहीं जा पाएंगे, नो मैटर आपके पास वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग हो तो भी।
0: जी,
1: हाँ,
0: ये बिल्कुल सही
1: तो
0: है।
1: अब तक आपने, जब से आपने शुरू करा माउंटेनियरिंग, अब तक आपने किस किस एक्सपीडिशन पे जा चुके हो आप?
0: जी, पहले तो शुरुआत यहाँ पे कोकटांग बोल के है, जो ट्रेनिंग का दौरान कब्रुदम, ये कोकटांग ये ग्लेशियर में सिक्किम में है, ट्रेनिंग का दौरान वहाँ पे हम लोग को ये किया था, चढ़ने दिया था एडवांस ट्रेनिंग का दौरान, तो उसमें शायद 5,800 का आसपास का, तो उसमें एक्सपीरियंस शुरू हुआ था, उसमें तो काफी मतलब खुद भी लग रहा था, खुद थोड़ा वीक भी लग रहा था, उसमें कुछ ये कोर्स जस्ट शुरू हुआ था हो रहा था, और साथ में कुछ पता नहीं था कि माउंटेनिंग डू एंड डोंट्स ये सब भी पता नहीं था, जो भी हो आगे जा रहा है तो पीछे पीछे जा रहा है, इंस्ट्रक्टर आगे जा रहा है तो पीछे पीछे जा रहा है, तो खुद कितना चलना चाहिए क्या चलना चाहिए अपने आप में कोई इतना आइडिया नहीं था, उसका बाद
1: बस चिड़ियों
0: जब
1: की तरह एक ही लाइन में चलते
0: हाँ
1: जाइए, चलते
0: चलते
1: जाइए।
0: गया, लेकिन जब हम एक अपना खुद ऑर्गेनाइज करके डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स ये किया था, स्पॉन्सर किया था, डॉक्टर रोमियो माइते, किशन टक्संग, मेरा साथी और तारक दोगर और विभू शर्मा बोल के हम लोग से टीम था, एक लद्दाख से भी एक औरत था रिंचिन मैडम, तो वो लोग गाइड कर रहा था कुछ चीज को, लेकिन उसमें खुद ऑर्गेनाइज किया है वो एक्सपीडिशन स्टोक कंगरी करके 6,200 मीटर सी लेवल से, तो उसमें बहुत चीज एक्सपीरियंस हुआ है, सेकेंड एक्सपेडिशन था, लेकिन सेकेंड होने से भी मेरा मेरा ये से सबसे टफेस्ट भी है एक तरफ से, उसमें कुछ सब चीज किया, सामान वामान कुछ बुका, जहाँ कैंप में पहुंचाते वहां पे कुछ सामान लोड फेरी, ये सब मेन जो लोड फेरी में जो

0: ज्यादा टाइम लगाता है, कोई उसमें गिव अप कर देता है, पहाड़ चढ़ना तो ये कर, एक एक्सपीडिशन को किस तरह से जाना है, कहाँ लेवल से क्या जाना है, क्या कौन सा सामान कैरी करना है, कौन सा नहीं करना है, उसमें सब चीज को एक्सपीरियंस क्या था। हम लोग का साथ वो महान वाला लोग क्लाइंबर लोग था साथ में, इसलिए वो एक्सपीरियंस जो मैं हमको बहुत कुछ सिखाया है। उसमें एक एक जगह ऐसा था उसमें तीन चार आदमी लोग गिव अप कर दिया था, एक ये में रेंज में पहुंचने के लिए, एक ही एज एज जहाँ पे एज टाइप का था क्लाइम करना था वहां पे पहुंचना था। तो उसमें हम लोग रात का 12 बजे ऐसे को निकला था, चलते चलते उस जगह में हम लोग का 3:30 का आसपास में पहुंच गया था। उसके बाद जो ऊपर जाना था वो सबसे तकलीफ था, तो उसमें हम लोग का आधा टीम लोग नीचे गया है, हम और एक तीन आदमी हम लोग धीरे धीरे जा रहा था, ऊपर में जा रहा था, तब अकेला हो गया खुद भी, और उन जो साथ में था पीछे में है, और जो आगे में था वो आगे में है। तो उसमें शुरुआत है फर्स्ट अपना खुद सेल्फ ऑर्गेनाइज वाला ये टीम, उसमें काफी तकलीफ हुआ है। मेन जो जहाँ वहां से सीख के मतलब एवरेस्ट में भी बहुत काम आया, बाकी सब
1: ओके
0: चीज तो
1: बहुत ही लर्निंग एक्सपीरियंस रहा था वो
0: हाँ
1: आपके लिए।
0: हाँ हाँ हाँ कुछ खुद ऑर्गेनाइज करना और दूसरा ऑर्गेनाइज करते समय साथ में जाना वो फर्क होता है, लेकिन जब खुद ऑर्गेनाइज होने से सब चीज मालूम हो जाता है कि क्या करना है। तो उसमें था इस तो कंग्री भले ही छोटा फीक है, पर भी मेरे लिए वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद जाके काफी ये मैं नेपाल साइड में हम ये किया है, क्योंकि एवरेस्ट उस साइड में था, और एवरेस्ट का सामने में एक ग्राउंड में, एवरेस्ट का सामने में उसका ग्राउंड का क्या है उसको सीखना, और वहाँ का बोल भाषा सीखने से क्या होगा। और साथ में कुंबू रीजन में बहुत अच्छा अच्छा माउंटेन है, मेराफिक करके है, और ये आपका आइसलैंड, और मेराफिक का साइड में और एक था एक केरला बोल के है, बहुत कुछ वहाँ पे सीखने का मौका मिला है वो जगह में 4 पास। और 2017 को प्री एवरेस्ट का ये मैं लोचे गया है 8,500 आसपास में, ऑल का वो भी 5 हाईएस्ट माउंटेन था, वो सब में जाके बहुत कुछ करा है, फाइनली
1: 2018 को एवरेस्ट।
0: एवरेस्ट कर।
1: हाँ, तो अभी फिलहाल तो मैं आपका ध्यान एक उस बात पे लेकर आना चाहूंगी, हमारे श्रोताओं का ध्यान, जिसके लिए आपको रिसेंटली बहुत सारे रिकॉग्निशन मिले, और वो था आपका जो रेस्क्यू मिशन था रिसेंटली हमारे सियोमी डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पे जो प्लेन क्रैश हुआ था N-32 जून 2019 में, उसके रेस्क्यू मिशन में आप शामिल थे, तो उसके लिए आपको बहुत रिकॉग्निशन मिले। मेरे श्रोताओं को बता दो कि रिसेंटली इसी रेस्क्यू मिशन के लिए उन्हें स्टेट गोल्ड मेडल भी मिला, और साथ ही साथ चीफ ऑफिसर कमांडिंग अवार्ड जो मेडल भी मिला गया, जो सिविलियंस को नहीं दिया जाता, पर इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए इनको इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ये अवार्ड दिया गया। और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट अनसंग हीरो अवार्ड रिसेंटली मुंबई में भी इनको इस रेस्क्यू मिशन और एवरेस्ट क्लाइंबिंग के लिए दिया गया। तो हमें उस रेस्क्यू मिशन के बारे में आपके एक्सपीरियंस जरा हमारे श्रोताओं से शेयर करें।
0: जी रेस्क्यू मिशन मेरा ये साल में 4 रेस्क्यू मिशन हुआ है, उसमें से एक है ये N-32 रेस्क्यू। मेरा रेस्क्यू मिशन में एक इतना ये नहीं था, हम वो होप नहीं किया था कि हमको कुछ ऐसे रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा करके। तो हम एक एडवेंचर कैंप करा रहा था, तो फर्स्ट अपना पार डे लेवलीहुड के लिए जो कमाना था इसके लिए हम वहाँ पे मियो में, तब ये फेसबुक व्हाट्सएप में देख रहा था कि N-32 एक अरुणाचल में गिर गया जून, हम लोग 5 तारीख ऐसे को उसको खबर मिला था, गिरा था आपका जून 3 तारीख को। तो उसमें हम ये करके, अरे ये चीज तो अरुणाचल में हो रहा है कैसे कैसे, उस समय वॉलंटियर्स नहीं है करके देख रहा था। तो हम वहां से डायरेक्ट में, और एक मेरा भाई था तगुंग तमुत करके, वो भी अच्छा ये है रिवर राफ्टिंग गाइड है, तो उसको हम बोला है ईटानगर में, हम दोनों वहां से सुबह को आके यहाँ पे शाम का 7-8 बजे को ऐसे हम लोग यहाँ पे पहुंच गया था। तो नेक्स्ट दिन सुबह को हम दोनों, हम घर में था तो न्यूज़पेपर में देखा है, तो अभी तक धुंध रहा है बोल के, तो धुंध रहा है बोल के आया था न्यूज़पेपर में अरुणाचल टाइम्स में। तो हम उसको देख के फिर, अरे ये तो अभी तक धुंध रहा है, तो हम तो मिल गया होगा ऐसे सोचा था, वहां में सिर्फ व्हाट्सएप वायरल में देखा था तो उसमें इतना विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन यहाँ पे आके पक्का मैसेज मिल गया कि हाँ अभी तक ढूंढ रहा है, कोई वॉलंटियर भी नहीं हो रहा है, आर्मी लोग और ये एयरफोर्स वाला लोग ढूंढ रहा है बोल के। तो हम डायरेक्ट वहां से जाके, नहीं ये सब चीज तो हम लोग का काम है, मतलब मन ही मन में ऐसा आ रहा था, तो ये सब चीज हम लोग का काम है, माउंटेनर पर्वतारोही का काम है बोल के, जंगल में गुम हो गया तो हम लोग को हाथ अपना हाथ बढ़ाना चाहिए करके। तो अपना ह्यूमेनिटी

0: क्या होता है कि जब चीज को कोई ये हो रहा है और आपका काबिलियत उसमें है तो एक एक गिल्टी महसूस होता है, अरे हमको इससे गवर्नमेंट ने कुछ स्पॉन्सर करके कुछ किया है, हम क्या रिपेयर किया आज तक। तो हमको यही सोचना था कि नहीं, इसमें हम ट्राई करना चाहिए एक बार, तो अपना स्टेट गवर्नमेंट के लिए और अपना ये के लिए, अपना कंट्री के लिए ये करना चाहिए, ये चीज ट्राई करना करके। तो हम वहां पे गया है आपका वो दहिसर मैनेजमेंट ऑफिस में, तो उसमें एक सार था, तो उससे पूछताछ किया है कि ये क्या क्या हो रहा है, हम भाग ले सकते हैं वॉलंटरीली करके पूछा है। तो बोला नहीं, ये चीज जो हम लोग का ये नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट और एसडीआरएफ का नहीं है बोल के, आर्मी और एयरफोर्स का ये है, सर्जन रेस्क्यू ऑपरेशन है बोल के। तो फिर हम जीतना ही चाह रहा है, हम एक बार चीज मतलब करके देखना ही है सोच के। तो हम उसको बोला है कुछ और आप फर्दर हेल्प कर सकेगा बोला है, तो वो उसका दीदी एमओ अभी तक नाम याद है लपसंग करके, ये वेस्ट सियांग का दीदी एमओ को फोन किया है वहां से, तो वेस्ट सियांग का वो डीसी को बात करना पड़ेगा बोल के, तो ऐसे बोला है। तो हम दोनों उसका 12-1 बजे को नेक्स्ट दिन को वहां से ईटानगर से निकल के पासीघाट का तरफ, और उसमें क्योंकि जब जंगल में सर्च एंड रेस्क्यू होना है कुछ कुछ ऐसे जरूरत है जो हम मेरा पास नहीं था, मेरा पास जो था रोप शॉप जितना था टेंट वगैरह सबको ले लिया था उसका रोइंग में हम लोग रात का 12 बजे से को पहुंचा है, खुद गाड़ी का तेल सेल जितना है वो सब भी खुद मैनेज करके और सामान जितना है उसको भी मैनेज करके। तो नेक्स्ट दिन सुबह 4 बजे को पासीघाट पहुंचने का बाद वहां थोड़ा 1 घंटा ऐसे के लिए रेस्ट किया था गाड़ी में ही बैठ के। तो उसके बाद बोलेंग में सियांग डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर बोलेंग में गया था, बोलेंग में जाके डीसी से रिक्वेस्ट किया था, डीसी उस समय नहीं था, तो हम फोन में बात करके वहां पे जाके एक विलिंगली जा रहा है बोल के एक वॉलंटरी ये के लिए एप्लीकेशन दे के हम सीधा आलोंग डीडीएमओ को मिलने के लिए आलोंग में। तो आलोंग वाला जो बोला है काइंग में है अभी, तो काइंग में जाके हम लोग उस शाम को सो गया था। तो उसके बाद नेक्स्ट दिन को हम लोग उसको डिस्कस किया है डीसी और ईएसी और आर्मी ऑफिसर लोग को था, हम लोग जो वॉलंटियरली आया है बोल के वो लोग भी थोड़ा खुशी हो गया था, क्योंकि वहां पे जो बाहर दे फेट कर रहा था वो लोग 5,000 कुछ ऐसे 4,000 जो जा रहा है शिकारी लोग को, तो लोकली इतना नहीं आया था। तो हम लोग ही फर्स्ट सिविलियन था जो वॉलंटरी विदाउट एनी पैसा
1: वाओ
0: और जो ये का वजह और सामान भी खुद खाना पीना भी खुद लेके आया था। तो सालू को बोला है तो हम लोग ये प्लान है बोल के, तो वहां पे पहुंचा है तो एयरफोर्स वाला लोग और आर्मी वाला लोग और ये लोग था ये सी सर था, तो उसने बोला है तो हम लोग जो एक्चुअली उन लोग का साथ डिस्कस करके बोल रहा था, तो वो लोग एक पुराना जगह को जहाँ पे ऑलरेडी उन लोग ढूंढ रहा है उस जगह को करके मैप भी हमको दिखाया था, मैप भी हमको दिखा के ये जगह ऐसे ऐसे है। तो हम बोला है एक हम लोग मतलब एक ऐसे काम कर सकते हैं जो मतलब पहले ढूंढ चुका है, 7 दिन हो रहा था वो लोग ढूंढ के नहीं मिला है वो जगह को, प्लेन से भी ढूंढ रहा है वो सबसे भी ढूंढ रहा है, चार पास उन लोग का एयर में भी था नीचे में भी ढूंढ रहा है तब भी नहीं मिला है। तो हम बोला है नहीं ये जगह में नहीं मिला है तो दूसरा जगह हम लोग ट्राई करना चाहिए। तो हम लोग जिस दिन निकलने वाला था उस दिन बहुत बारिश हो रहा था, तो हम लोग उसका कारण थोड़ा रुक गया था, लेकिन वो रुक के अच्छा ही हुआ है हम लोग के लिए, अगर उस दिन को नहीं रुकना तो कुछ ना कुछ इनपुट भी नहीं मिलना था। तो उसी दिन लकीली एक आदमी आया है तके तमे करके पायुम विलेज से, तो उसको उसने एक इनपुट लेके आया था। तो जब जा रहा था तो एक प्लेन देखा था 12-1 बजे का समय में, तो लेकिन वो पहले समय से बहुत भरा था यानी नीचे साइड में उड़ रहा था, तो पहले समय से भरा था। तो बोला है वो एक लाठी दिखा के इतना इतना भरा था बोल के। तो हम लोग को और भी उसमें इनपुट से अच्छा लगा है कि हम लोग जहां पे जा रहे हैं वहां से एक इनपुट आ गया, तो वहां से हम लोग जाके काइंग बस्ती में पहुंचा है और 9 तारीख को 9 तो उसमें पहुंच के हम लोग डिस्कस किया है गांव वाला लोग को बुला के मीटिंग किया है। तो क्योंकि उस समय जो वो उसी जो मेन पुलिस या सब चीज का काम था, पर भी हम लोग खुद ये आया है सामान वामान खुद लेके आया है, तो एक्चुअली उसमें जाके हम लोग को एक अच्छा इनपुट मिला, 4 आदमी आया है तो हम देखा था बोलने वाला, तो उसमें अभी नाम इतना याद नहीं है लिख के रखा था मेरा डायरी में। तो उसको हम जो जो इनपुट दिया था उसको हम नीचे भेज दिया था, ये हम लोग का पास पास आदमी माउंटेनर पास था और साथ में पासपोर्टर सियांग डीसी का तरफ से दिया हुआ था, तो हम लोग का वो जो सामान कैरी करने के लिए। तो जैसे तैसे बहुत बारिश भी हो रहा था पर भी हम लोग निकल के फायुम में इनपुट देने का बाद हम लोग वापस उसको भेज दिया था। तो उसका बाद

0: हम लोग गसे गसेंग नेक्स्ट दिन को गसेंग पहुंचाए, गसेंग के इनपुट को हम लोग वापस भेज दिया और गते का इनपुट्स को वापस भेज दिया। गते में एक एक मिला था, गसेंग में भी एक मिला था। गसेंग वाला बोला है कि हम जब खेती कर रहा था तो प्लेन गया हुआ था यहाँ से, लेकिन लग रहा था वहां पे रीच में टक्कर लगेगा बोल के, लेकिन उसका बाद जैसे तैसे पार हो गया बोल के। और गते वाला जो बोला है कि एक बम का आवाज सुना है, बम का आवाज सुना है तो पता है था, लेकिन आवाज कहाँ से आया उसको आइडिया नहीं। तो 11 को हम लोग ढूंढा था साइड साइड में, नहीं मिला है। 11 का शाम को मिला था, तो मिलके यहाँ पे जो हम लोग का साथ एयरफोर्स वाला लोग भी था, हम लोग सिर्फ नहीं था, माउंटेनर 2 था, एयरफोर्स 4 ऐसे था और आर्मी लोग का था। तो ऊपर में जाते समय देखा है हम लोग सिर्फ नहीं, क्रेडिट हम लोग सिर्फ नहीं है, तो सब आत्मी लोग था जो एयरफोर्स का भी था।
1: वही बहुत ही कठिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको, और कहानी तो आपकी काफी दिलचस्प और इंटरेस्टिंग थी। फिलहाल हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो हम जाने से पहले हमारे जो यंगस्टर्स हैं जो माउंटेनियरिंग करना चाहते हैं या फिर अलग तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ मैसेज अगर आपके पास है तो।
0: जी जी, मैसेज तो अभी अरुणाचल में तो प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यहाँ पे माउंटेन पॉलिसी रूल्स एंड रेगुलेशन इतना ठीक नहीं हुआ है, तो उसमें हम लोग को आगे आके यहाँ पे फ्यूचर बनाएगा बोल के। लेकिन मेरा तरफ से जो मतलब करना चाहता है ऑब्वियसली हम रिकमेंड करता है, तो माउंटेनियर करो, और अब जब तक नहीं आएगा तब तक अरुणाचल में बदलने वाला नहीं है, तो बदलने के लिए एटलीस्ट आ जाओ, साथ में काम करेगा और काम करके अरुणाचल को एक सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाता है। तो ये जो है नेपाल में जो हो रहा है वो माउंटेनर सिर्फ नहीं है जो एडवेंचर टूरिज्म का कारण है, और लेह लद्दाख में जो है एडवेंचर टूरिज्म का कारण आदमी इतना आ रहा है, जो आपको यहाँ पे जितना भी नॉर्थ इंडियन स्टेट है वही है, उत्तराखंड हो गया आपका, हिमाचल हो गया। आजकल लोग टूरिज्म का वजह से अच्छे से ज्यादा फेमस होता है और स्टेट का रेवेन्यू भी इतना बढ़ रहा है, तो अरुणाचल सबसे आगे है, डेस्टिनेशन बन सकता है। लेकिन जब तक माउंटेनियर का पॉपुलेशन नहीं बढ़ेगा और ज्यादा ये सब एक्सप्लोरेशन नहीं करेगा तब तक नहीं बनने वाला है। तो इसलिए आके माउंटेनियरिंग करना है, आके करके हम लोग अरुणाचल को आगे बना सकता है।
1: जी हाँ, बहुत ही सही कहा आपने। आपसे जितना मैंने बात करी उससे मुझे पता चला कि आप एक ऐसे इंसान हैं जो माउंटेनियरिंग खुद की खुशी के लिए तो कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ हमारे जो राज्य है इसे भी आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसके साथ साथ सभी यंगस्टर से ये भी कह रहे थे कि वी शुड बी एबल टू क्रिएट आर ओन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अगर हम खुद ही अपने आप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करें तो हमारा राज्य जरूर आगे जाएगा। तो जाने से पहले हम हमारे जितने भी श्रोताएं हैं उनको आपके पसंद का एक गीत सुनाना चाहेंगे।
0: जी, मेरा पसंद का ये सलमान खान का दिल दीवाना ये गाना।

0: के लिए मुझे और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जेबी नाबम को दीजिए इजाजत।
1: सो तो दोस्तों आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अब अगले कुछ पलों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आए ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत में स्टार्टअप का काफी विस्तार हुआ है।
3: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
2: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि यह ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
4: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेनदेन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
2: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर गृहमंत्री ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी आतंकी नेटवर्क को पनाह, भर्ती, प्रशिक्षण, धन या पड़ोसी देशों के विरुद्ध गतिविधियां चलाने के लिए क्षेत्र में कोई जगह न मिले। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कूटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के नेता सौरभ दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया है। ये लोग राष्ट्रीय राजधानी में जंतर मंतर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने कल जंतर मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटा दिया था। पूर्वी दिल्ली में 3 नए प्रदर्शन स्थल रामलीला मैदान, बुराड़ी मैदान और सीबीडी मैदान सूचित किए गए हैं। डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट आज ओडेंस में शुरू हो रहा है। महिला सिंगल्स के पहले दौर में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। पुरुष सिंगल्स के पहले दौर में लक्ष्य सेन और किदाम्बी श्रीकांत भी आज अपने अपने मुकाबले खेलेंगे। आयुष शेट्टी का मैच कल होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी कल अपना अभियान शुरू करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 554 अंक बढ़कर 72,479 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 176 अंक की वृद्धि के साथ 22,540 पर पहुंचा। नवरात्रि का आज तीसरा दिन है।

0: Benchmark domestic equity indices were trading around 0.8% higher in the afternoon session today. Sensex climbed 554 points to 72,479 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: श्रोता दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। और अब शुरू होगा दोस्तों आप सबका संगीत में सफर एक बार फिर से कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक के साथ।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार श्रोताओ, दोस्तों स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे अनास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। जी हाँ दोस्तों, आइए चलिए शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को एक बहुत ही बेहतरीन गीत के साथ। जी हाँ दोस्तों, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, और ये गीत है फ्रॉम द फिल्म फकीजा, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात।
1: शिमारू फिल्मी गाने के सारे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक

दोस्तों, आंखों में नूर है, चेहरे पे सवेरा है, ये कोई आम रात नहीं, मेरे महबूब का बसेरा है। जी हाँ दोस्तों, आपकी इस गर्मी भरी दिन में एक ठंडी राहत देने के लिए पेश ये अगला प्यारा सा नगमा, जो वक्त के हर दायरे से आगे निकल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, सदियों से दिल के तार छेड़ने वाले लेजेंड मोहम्मद रफी साहब का वो इमोर्टल क्लासिक फिल्म चौदहवीं का चांद से टाइटल ट्रैक सिर्फ आपके लिए, यही आपके अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। लीजिए दोस्तों पैसे ये बेहतरीन नगमा, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग, मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों करवटें बदलते रहे हम सारी रात उनके ख्याल में और वो चैन से सो गए एक ही सवाल में। यह दोस्तों दिल के कोने को छू जाने वाला किशोर कुमार और लता मंगेशकर का ये टाइमलेस एवरग्रीन क्लासिक फिल्म आपकी कसम से करवटें बदलते रहे हम। चलिए दोस्तों पे से ये बेहतरीन गाना आप सबके लिए, आइए सुनते हैं और इंजॉय करते हैं ये सॉन्ग तब तक।

और श्रोता दोस्तों, इसी बेहतरीन गीत के साथ समाप्त होता है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz, जहां होती है दिल से दिल की बात। लेकिन कहीं

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

श्रोता दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे मिड डे न्यूज और दोपहर

0: सामाजिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन के भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है।
1: ग्लोबल चैलेंजेस के लिए सॉल्यूशंस में भी योगदान देना होगा। क्लाइमेट चेंज हो, वाटर गवर्नेंस हो, पब्लिक हेल्थ हो या इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का रिस्पॉन्सिबल यूज हो, दुनिया को ऐसा सामर्थ्य चाहिए जो सॉल्यूशन दे, नए अवसर पैदा करे।
0: श्री मोदी ने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों में अपनी सबसे मजबूत स्थिति में है। श्री मोदी ने कहा कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद से भारत के नवाचारों का काफी विस्तार हुआ है।
1: भारत में कुछ 100 स्टार्टअप ही हुआ करते, अब देश में इनकी संख्या 2.5 लाख से अधिक हो गई। करीब आधे स्टार्टअप छोटे शहरों और कस्बों से आते हैं। 45% से अधिक स्टार्टअप में कम एक महिला डायरेक्टर या पार्टनर है, यानी इनोवेशन के अवसर अधिक लोगों तक पहुंच रहे हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के कृपया इसे फिर से सुन लें। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृहमंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों, तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने के साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
2: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृह मंत्री

0: ने कहा कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
1: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर बल दिया। श्री शाह ने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठित अपराध से निपटने में मनोनीत नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान और बेहतर समन्वय पर भी बल दिया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एनपीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। आईएमएफ की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। केंद्रीय वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वर्ष 2027 में भारत की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी वृद्धि दर 7% रहने के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुमान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कई मुक्त व्यापार समझौतों से वैश्विक आर्थिक गतिविधि को बल मिलेगा और आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। भारत के कोस्टारिका के सैन जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन ने कार्य करना शुरू कर दिया है। यह मध्य अमेरिका में अपने राजनयिक दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उम्मीद है कि मिशन भारत और कोस्टारिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करेगा। कनाडा के विदेश मंत्री अनीता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से कल मुलाकात करेंगी। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने का इच्छुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री तथा उद्योग और व्यापार मंत्री कारेल हावलेचक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति का और विस्तार करने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। एक रिपोर्ट।
2: नई दिल्ली में भारत मंडपम में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के एक सम्मेलन में श्री मिश्रा ने कहा कि आंकड़े भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय पर बल दिया ताकि आंकड़े जुटाने की प्रक्रिया में एक रूपता लाई जा सके और समान परिभाषाओं तथा मानकों को अपनाया जा सके। उन्होंने कहा कि विश्वसनीय आंकड़े इसीलिए भी आवश्यक हैं ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के दृष्टिकोण की प्रगति को मापा जा सके और एक समृद्ध, समावेशी, नवोन्मेषी और सतत राष्ट्र बनने की दिशा में देश की प्रगति का आकलन किया जा सके। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसेवा में 25 वर्ष पूरे कर लिए हैं। जनसेवा से देश सेवा उनकी इस यात्रा का मूल मंत्र रहा है। सेवा और सुशासन के इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार भारत को वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के जरिए लोगों के जीवन में बदलाव लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

0: आज इस विशेष श्रृंखला में हम बता रहे हैं कि भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास को कैसे स्थापित किया गया है।
1: 2014 से केंद्रीय सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत पूर्वोत्तर भारत को एक नए राजनीतिक प्रवेश द्वार के रूप में स्थापित किया है। गृह मंत्रालय के अनुसार क्षेत्र में उग्रवाद से जुड़ी घटनाओं में 70% से अधिक की भारी कमी आई है। सुरक्षा के माहौल में ये बड़ा सुधार बोडो, कार्बी और उल्फा गुटों सहित सशस्त्र समूहों के साथ हुए एक दर्जन से अधिक ऐतिहासिक शांति समझौतों का परिणाम है, जिसके चलते 10,000 से अधिक उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल और एक्ट को कई क्षेत्रों से हटाया गया है। इस सुरक्षित माहौल का लाभ उठाते हुए केंद्र सरकार ने क्षेत्र में रिकॉर्ड निवेश किया है। पीएम डिवाइन जैसी समर्पित योजनाओं के माध्यम से 8 राज्यों में बुनियादी ढांचे का बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है, जिसमें हर मौसम के अनुकूल राजमार्गों, नए रेलवे नेटवर्क और हवाई अड्डे तक शामिल है। 2023 में अपने असम दौरे के दौरान श्री मोदी ने कहा था कि पूर्वोत्तर भारत देश के प्रमुख आर्थिक केंद्रों में से एक बनने की राह पर है।
2: असम में नॉर्थ इसमें सरकार और समाज के सामूहिक प्रयासों से जैसे जैसे शांति लौट रही है, वैसे वैसे पुराने नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। लंबे समय तक आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आपसा नॉर्थ ईस्ट के अनेक राज्यों में रहा है, लेकिन बीते 8 सालों के दौरान स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था लागू होने के कारण हमें आपसा को नॉर्थ ईस्ट के कई क्षेत्रों से हटा दिया है। बीते 8 सालों के दौरान नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में करीब 75% की कमी आई है।
1: विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह समग्र दृष्टिकोण पूर्वोत्तर भारत को एक सीमांत इलाके से राष्ट्र के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक विकास इंजन में तेजी से बदल रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: केंद्रीय पर्यावरण और वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली में 5 सार्वजनिक इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री यादव ने दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के उपायों को लागू करने के लिए दिल्ली सरकार की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को महिला एशिया कप और एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन और महत्वपूर्ण मैचों में निर्णायक भूमिका निभाने के लिए सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल को वेस्टइंडीज के खिलाफ एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए रिकॉर्ड 5वीं बार आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। डेनमार्क बैडमिंटन टूर्नामेंट आज सोडेंस में शुरू हो गया है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु पहले दौर के मुकाबले में जर्मनी की यवोन ली से मुकाबला करेंगी। पुरुष सिंगल्स में लक्ष्य सेन और के श्रीकांत भी आज अपने अपने पहले दौर के मुकाबले खेलेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में 0.8% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 598 अंक बढ़कर 72,523 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 189 अंक की बढ़त के साथ 22,552 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृहमंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये से अधिक के लेन देन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। और शेफाली वर्मा तथा शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: सो दोस्तों, आप सुन रहे थे मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। और दोस्तों, अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे। जी हां दोस्तों, कभी कभी सड़क पर चलते चलते या भीड़ में अचानक से एक चेहरा दिख जाता है और दिल में बस एक ही बात बार बार आती है, ये तो बिल्कुल उन्हीं जैसा लग रहा है। दोस्तों, चाहे वो कॉलेज कॉरिडोर हो, कॉफी शॉप हो या बस की विंडो, जब दिल किसी के ख्यालों में खोया हो तो हर राह चलने वाला वही लगने लगता है ना। अगर आपके साथ भी कभी ऐसा क्रश मोमेंट हुआ है तो ये गाना आपके लिए बिल्कुल फिट रहेगा। उदित नारायण की प्यारी आवाज में फिल्म हर दिल जो प्यार करेगा का सुपर हिट रोमांटिक ट्रैक आते जाते जो मिलता है तुमसा लगता है, ओनली ऑन अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात।

दीजिए दोस्तों पैसे ये बेहतरीन गीत फ्रॉम द फिल्म यस बॉस जिसे गाए थे अभिजीत भट्टाचार्य और अलका याग्निक ने। तो बने रहिए और सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग। मैं लौट कर आता हूँ 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे जहाँ होती है दिल से दिल की बात। मैं हूँ आपका दोस्त आपका अपना होस्ट आरजे ननास।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per litre. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, next-gen K-Series, 1.0 litre dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
3: सो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s में. मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास, और आप बने हुए हैं हमारे साथ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात. चलिए दोस्तों, आइए इस ब्रेक के बाद हम शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से उदित नारायण और आलका याग्निक की आवाज से. जी हाँ दोस्तों, ये गीत है मेरा मन, फ्रॉम द फिल्म मन. लीजिए दोस्तों, एंजॉय कीजिए ये सॉन्ग. मैं लौट कर आता हूँ, सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़.

0: 오라 떵라 바직 삼라 갓 정산 붓나가게 떵라 레디 석수님
1: नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव सी पा सी सिप सी चुमसी मीटर हो पा ची सिप हा किलोहर्स माई मृचलांग खमते खमती हाउको मायो मने वन अंका लंगनी पीतई सोहिंग पा साउ दू मई नई इंग्लाजी पीमतई सोहिंग साउ हो वन अक्टूबर नई साउ साम वन कौखा लुकचाउ चिंता मन मई हने थोमता ग्रुप कमांडर खोंग नेशनल कैडेट क्रॉप्स एनसीसी हेडक्वार्टर तेजपुर हिची ब्रिक्स मायांग वैली माई गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी पनेक वन मंगा नियाती लोक भवन ईटानगर माई खोंग खा कन माइका मई हौचौ खाम पोंग लुई औखंग औकम खमसम हंग नम एनसीसी एक्टिविटीज नंगमंग स्टेट माई आउसी ओ सांग कनका माहो डिप्यूटी चीफ

有暗有神龙神狼有六叔就美科技没骂事安全安全的爹地多善良的阿莫了

Intakeable. Intakeable. Intakeable.

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

3.1 मेगाहर्ट्ज पे मैं हूँ आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे नरास। दोस्तों चाय का कप उठा लीजिए, ईयरफोन्स कान में लगा लीजिए, क्योंकि अगले कुछ पलों में हम करने वाले हैं बॉलीवुड की दुनिया की सारी गॉसिप्स, बॉक्स ऑफिस ब्लास्ट और अपकमिंग ब्लॉकबस्टर्स का पूरा खुलासा। तो सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि फिल्म सफर शुरू होगा अब बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। तो दोस्तों शुरू करते हैं बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े खबर के साथ। दोस्तों अकेले दम पर बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया है अजय देवगन ने। फिल्म दृश्यम 3 द कंक्लूजन जो 2 अक्टूबर को रिलीज हुई थी वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दोस्तों फिल्म ने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 480 से 490 का आंकड़ा पार कर लिया है और सीधा 500 करोड़ क्लब में एंटर करने के लिए तैयार है। और तो और साउथ के सुपरस्टार मोहनलाल ने भी अजय देवगन की इस परफॉर्मेंस की जबरदस्त तारीफ की है। मतलब विजय सालगांवकर ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि केस चाहे कितना भी उलझा हो, ऑडियंस को सिनेमा हॉल तक कैसे खींचना है तो उन्हें अच्छे से आता है।

तो दोस्तों अब बात करते हैं बादशाह की। शाहरुख खान के फैंस के लिए एक मैसिव ट्रीट आने वाली है। दोस्तों नवंबर 2 आने में अभी थोड़ा वक्त है, लेकिन खबर यह है कि शाहरुख खान के बर्थडे पर उनकी अपकमिंग फिल्म किंग का एक्सप्लोजिव टीजर लॉन्च किया जाएगा। डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद इस पर पूरी तरह से काम कर रहे हैं और फैंस ऑलरेडी सोशल मीडिया पर काउंटडाउन शुरू कर चुके हैं। लेकिन रुकिए दोस्तों, SRK से जुड़ी एक और स्वीट खबर सुनिए। डॉक्टर श्रीराम नेने, माधुरी दीक्षित के हस्बैंड, ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में रिवील किया कि जब उनकी वेडिंग रिसेप्शन थी तब वो शाहरुख खान और सलमान खान को पहचान भी नहीं पाए थे, क्योंकि उन्होंने कभी बॉलीवुड मूवी देखी ही नहीं थी। सोचिए, जिन्हें पूरी दुनिया पूछती है उन्हें कोई पहचाना ही नहीं।

चलिए दोस्तों, अब कुछ क्विक गॉसिप्स जो सोशल मीडिया पर आग लगा रही है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले कॉफी विद करण सीजन 9 की घोषणा हो चुकी है और इसके पहले गेस्ट कोई और नहीं बल्कि भाईजान यानी सलमान खान होने वाले हैं। करण जौहर ने इसका प्रोमो भी टीजर कर दिया है और फैंस यही सोच रहे हैं कि इस बार कॉफी पर क्या क्या राज खुलेंगे। और दोस्तों, ओटीटी की दुनिया से एक खबर आई है कि डायरेक्टर हंसल मेहता ने प्राइम वीडियो के लिए अपनी नई सीरीज की शूटिंग शुरू कर दी है, जिसमें सनी कौशल, बिपाशा बासु और विशाल झेटवा नजर आने वाले हैं। और अगर आपको वीकेंड बिंग वॉच के लिए कुछ चाहिए तो याद रखिए, इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर राजकुमार राव की दो फिल्म्स रफ्तार और प्रहार, साथ ही में यामी गौतम की नई नवेली भी रिलीज हो रही है। सिनेमा में पूरा मसाला एंटरटेनमेंट लाइनअप तैयार है। तो दोस्तों, ये थी आज की बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए दोस्तों, इस शो में सुनाते हैं आपको एक बेहतरीन गीत अतीब असलम और सुनिधि चौहान की आवाज में, फ्रॉम द फिल्म रेस 2।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं बॉलीवुड अपडेट्स आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे वांचो श्रोताओं का समाचार, लेकिन कहीं मत जाइए क्योंकि हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से शुरू होगा हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर अनि अक्टूबर लेन नि बन आजम तारीख मंगलवार इपो हासो आजम बाजी पुनी मिनट मोय के पेशम के वांचो साइका पंग कपई पंग का हो पाई फाले वांग का वांगसु। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई होतम ए ओवा वा एलिजिबल वोटर खनक मन वोटर लिस्ट मा चिहक चि ओम ले नक्तो अंग हाल क्या पक टिकतो अंग देश अंग क्या स्टेट्स हिया यूनियन टेरिटोरीज फोटो जवता प्रोएक्टिव कैंपेन मोथो मोकसा अंग तम तैले बोमा देश कैपिटल होनोई जंग महाला हजा मोथो मा हकबन आजम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर पुजम बन इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हाजत ताहो आजम बन आजम बीएलओ सुपरवाइजर्स थम बोमा हाजत बन अली हो आकू हो नई जो बूथ लेवल ऑफिसर थमले तमले तैले हजा बामा मोमो स्टेट या यूनियन टेरिटोरीज पोतो चु हालके स्पेशल कैंप टू सो अंगोत असो मोल तैले बोमा उत्तर प्रदेश स्टेट मा हालके स्पेशल कैंप लाक्ता हाजत पुजम बन आनत होनई जो बूथ मा सोल मोल तैले बोमा

सिक्किम स्टेट मा चु हालक्या बुथ छिंग खनक नु मन जा क्या प्रोएक्टिव स्पेशल कैंप टू सो हो आजोक सा आजम पोलिंग स्टेशन मा आंगो द सो लंगो ले ताइले आसम तेजपुर नय तो क्या नेशनल कैडेट कॉर्प्स एनसीसी हेडक्वार्टर अंग क्या ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर मायंक वेट मनी ईटानगर लोक भवन तो है ले अरुणाचल प्रदेश गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनाइक भाई आप असोले हॉकी हजा मा स्टेट में एनसीसी होथम हिया होम मोथो सजू असाक आचन अंक्या मो वन जेले बोमा गवर्नर एजा बा मा अरुणाचल प्रदेश में एनसीसी जू मके होमो को सत हा मैजंग माले वै मुंगनु सांगो तै क्या हान पक मा तेजपुर एनसीसी हेडक्वार्टर थम आसु ते पो ले अचोक असन क्या बो मा रिपब्लिक डे पेरेड हिया प्राइम मिनिस्टर्स रैली मा चु हाकावन दो क्या हान पक मा अरुणाचल प्रदेश एनसीसी कैडेट्स थम अचोक असन क्या का चु ngai वले अरुणाचल प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चौना मैन मनी ईटानगर मुख्य लोक भवन तो हाई एंड क्या ए स्टेट गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनाइक भाई आपों असोले हॉकी हजा मा होनई खतले चु इंफ्रास्ट्रक्चर हिया लमसाई कनेक्टिविटी चा सनफो एम्पावरमेंट बोमा खनकनु हानपक मा मोट सेट होनुई अलाई अदन अंक्या निंक्या डेवलपमेंट मोटो सजु हिया वेलफेयर स्कीम पो होमोको सेट फन अचन अमई अंक्या मो वनजेले बोम हॉकी ए 2026-29 जंग पुंबा मोकोसा अंक्या सेंट्रली फंडेड प्रोजेक्ट या स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम अंक्या होमोकोसत थोपुमान पमो चु वनजेले डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर मेने जबा मा गवर्नर हा मा हाय अंक्या नवंबर लेट नि बन आली तारीख नि नाम चाई होनुई मा खनक नु हा तो आहो अंगाई अंग सक्यामुनि बुद्धा अंक्या होली रेलिक्स वन अंक्या मो वनजे एंटोले गवर्नर अंग हजा होसो एक्सपोजिशन जमजंग दुसो तो हुआ हक अंग वंगहै ले चु वनजेले अरुणाचल प्रदेश होम मिनिस्टर मामा नातुंग ए मनी ईटानगर जूली होनोई मक्या फोर्ट आयरबियन बैटलियन हेडक्वार्टर मा प्रोजेक्ट अभया मोथो होका डाबले हजा प्रोजेक्ट अभया नौसम खो से सन अंक्या होमोको सद जू आचा काजों क्या बो मा पोक्सो एक्ट वालम बा मा अपोनोल को ओतोन अंक्या जू तो जीले जिंग जो क्या मोथो चंग तेले बो मा होम मिनिस्टर नातुम ए हज बा मता सोशल मीडिया का हो मा नौसम खो से सन अंक्या मोथो ओवा तानुता पा मोट अंग चिचंगले पंगनुसा ए मोकोसा अंक्यता खत खा क्या होली मोट अंग एला अंक्या मोट ले वनजेले अरुणाचल प्रदेश स्टेट कमीशन फॉर वुमेन APSCW होथम ए मनी ईटानगर मुख्य डेरा नातुंग गवर्नमेंट कॉलेज DNGC माम होने खले चु साइबर क्राइम स्टॉकिंग हिया लाइन नो सम मेंटल हेल्थ मो वनजे अंग ओले जी लेता अवेयरनेस प्रोग्राम टू सो अंगोत असोले टू सो मा APSCW होथम चेयरपर्सन यालम तागा बुरंग ए लानु नसम अंग ड्रग हिंग हाई पे होन्यन असाया लोले ngo hyo boma academic lainak swak man kya phai tam vai le mongte kan sung wan maya chong hyo boma practical skill mod sat tikman ang azong mong hai ol van tole drugs hing hai sa aling kya e sa kya pa mi hok तो हूँ चिचंग ले सोसाइटी तो यो पो पाक ले सथम तेया ले चु फन ले तू सो माजे बो मा आतिकमान रिसोर्स पर्सन थम लान उन्नो सम अंग आनी गाई क्या तू अवान तो पूर सा गाय दों अंग सत ले ngo te kya wishing cuishing cyber slavery here juice jacking ning kya cyber twitter yi zan ma pho ba ma apu no zan sai le ko tol le bo ma tu so बोमा हजा तुसो हजा DNGC कॉलेज अंक्या वोमेन सेल थम अजो अकम अंगोत असोल पासीघाट म्यूनिसिपल काउंसिल PMC होथम ए होम ए इजुम ए सोल अंगो ते क्या सेवा मेरा योगदान 2026 मथो अंक्यता मोलुंग सेन मा मई पासीघाट होनुई मक्या JN कॉलेज प्लेग्राउंड मा रन फॉर clean, green and plastic free Pasigat man mata

0: แมราธอนฮอซิคตุปันตุโซอังอดอสอลก็หมาอาจารย์ว่าลักการทำมันปักมาอากูกิโลเมตรบ่มาเชโกทำมันปักมาอาจกกิโลเมตรฮอซิคตุปันฮอซิคตุปมาอปันอังอดอสอกยาฮายาแมราธอนเรสมามีฮักโฮอากาเตกุจูขันนุฮักให้เลยก็หออีเวอีจ้าอากาศวันนี้อีตานักก้าวไปมาใส่อปังให้ปองปองไอจ้าใส่เพ่โบปองละหมอซึมลิงมาปองกลับไป
1: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक-एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला, अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्यघर।
3: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
5: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे थे वन चो श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे। तो चलिए अब शुरू होगा एक बार फिर से हमारा संगीत में सफर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स के साथ।

0: श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे ईद और मिसमी श्रोताओं का समाचार।
1: वांछित श्रोताओं का कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे, ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है ईद और मिसमी कार्यक्रम।
2: आकाशवाणी ईटानगर माचला पुचे जोहलसो आंडोलिनी एतानीचे ईद मिसमी आहुला केजे दरगालंबो बॉर्डर्स पुमने आमु इलांदोगा बबदाने नाही रागा कोलंबो इंडिया माचे इलेक्शन कमीशन में इंडिया अधिकाय में स्टेट दोने यूनियन टेरिटरी आतिमा माचे बॉर्डर्स पु मने आमु गाबाय गाबंदो एतेलाउजी ना लातिगा बने दिल्ली माचे चामेम Holoso District Election Officer, Inhu Electoral Registration Officer, Mambra Hoso Ne Hoso, BLO Supervisor, Donem, Ezarin Bahu Kene Mambra Kini, BLO Anabrume, Imutri, Jopagam Bada, Lahoga, Uttar Pradesh Maji, Lagene, Ezarin Bahu Inhu Alu, Board Hamu Mane, Amu Etilao, Naugabane, Jopagam Bamaho, Sikkim Maji, Mawatahona Nihokaso, Board Hamu Mane, Amu

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: घर घर सूर्य घर।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के
4: अब 0 रुपए कैसे दूं।
3: ओहो भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हर घर सूर्य घर।
6: तो दोस्तों आप सुन रहे थे दुमिस में श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब चलिए शुरू करते हैं हमारा संगीत में सफर एक बार फिर से हिंदी फिल्म में सॉन्ग्स के साथ।

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स आकाशवाणी ईटानगर का रून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पे, जहां होती है दिल से दिल की बात। और इसके तुरंत बाद आप सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का समाचार। और दोस्तों, इसी के साथ हमारी स्टूडियो की घड़ी में बज चुकी है 4:17, यानी अब वक्त हो चला है मेरा आपसे अलविदा कहने का। लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि अब आपके साथ जुड़ने वाली है आप सबके चहेते आरजे मंजू पामो, जो बने रहेंगी आप सबके साथ हमारी तीसरी प्रसारण सभा में। और आई होप कि आप सबको आज की हमारी इस सभा में बजे सारे कार्यक्रम बेहद पसंद आए होंगे। और जाने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, आज के इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो और HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक पी धोले और इंजीनियर ऑन ड्यूटी पे थे रितेश सिंह। तो फिर मिलेंगे दोबारा इसी स्टेशन से। सुनते रहिए अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, जहां होती है दिल से दिल की बात। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आरजे ननास। दीजिए मुझे इजाजत, शुभ दिन, नमस्कार।

आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मजौसा डुबा सन सोम अक्टूबर जिलिंग रंगसारोम तारीख पां हजनेरा खक्रो पां आरो रंगजा बलै बै खु मिनिट थोर नांसो तांसा प्रोग्राम तफंग रे मजौ रंगजा सौ सैतारमन कचै रुंगलांग रोकवांग कोन का मामाई र बहुत कुरक्षी वन मई मंग वोटर लिस्ट नंग वही मंग वरो नांगमुंग इलेक्शन कमीशन र स्टेट ताम नंग नई यूनियन टेरिटरीज ताम नंग कैंपेन काम त्रयांग र नेशनल कैपिटल दिल्ली नंग इर काम प सुगुंडे त्रयांग र मतान रो वासेरुम खाक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर्स हेंग र नई वासन से खाक इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हेंग रा पर जो हजार सिरा रचारुम रा वासेरुम खाक बूथ लेवल ऑफिसर सुपरवाइजर्स हेंग रही परम हजार सर बलैरा रचित का अपद बूथ लेवल ऑफिसर्स हेंग काम सुम रंगो रोक मचुलिंग रंगसा मचे तरीक सा पोलिंग स्टेशन स्टाम नंग स्पेशल कैंपेन तयंग चिमरो दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फांत नंगमुंग नंग बलिबा स्टेट ताम नंग नई यूनियन टेरिटरी स्टाम नंग स्पेशल कैंपेन तयंग रंगो रोक उत्तर प्रदेश नंग स्पेशल कैंपेन पर लाख सिरा हजार सनसस नेट अपात पोलिंग बूथ स्टाम नंग तयंग रे प्रतुंग नंग सिक्किम रे स्टेट बूथ थोंगन मई मंग पर वोटर लिस्ट नंग वही म तानरो रचक रोग रा खुरा रूम खग पोलिंग स्टेशन स्टाम नंग स्पेशल ड्राइव तयंग रे मोरो तो नेशनल कैडेट कोर्प्स एनसीसी हेडक्वार्टर तेजपुर ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर मायंग वेद प मने ईटानगर नंग लोक भवन नंग गवर्नर के टी पटनायक जम रम तप्रजु पनवानई अरुणाचल पुलिस वपम नंग एनसीसी कामवांग प सहेंग मने तचेन म कमुंग नंग रफान त एनसीसी हेडक्वार्टर तेजपुर अरुणाचल प्रदेश नंग कामवांग

नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तानसा डायरेक्ट न्यूज। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। थैंक यू सो मच नानास जी आगे का कार्यभार मुझे सौंपने के लिए। उम्मीद करती हूँ कि आपका ये शाम बहुत सुहाना बीते। दोस्तों, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, उसके समाधान की दिशा में पहला कदम उठाना आपके हाथ में होता है। हिम्मत कीजिए और कदम उठाइए। श्रोता स्टूडियो के घड़ी के अनुसार इस वक्त 4:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ शुरू होती है हमारी आज की तीसरी प्रसारण सभा। ये भी बता दो आपको कि इस वक्त स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में हमारे बीच मौजूद है प्रसारण निष्पादक गैर एते तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम, और मैं हूँ आपकी दोस्त आपकी आरजे आज के इस सफर में मंजू पामो। अरुण एफएम, जी हाँ दोस्तों, आपके मनोरंजन का खास ख्याल रखती है अरुण एफएम। हर तरह के नए पुराने मजेदार गीतों के साथ आपके खिदमत में हासिर रहती है हमेशा। तो इसी मनोरंजन के सिलसिले को चलिए आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर की ओर।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में। हमेशा की तरह अच्छी अच्छी बातों के साथ दोस्तों मजेदार गीत भी लेकर आए हैं आपके लिए। कुदरत की गोद में जो पलते हैं लोग कुदरत की गोद में जो पलते हैं लोग उनसे दूर रहता है हर एक रोग। सूखी जमीन पर जो हरियाली लाते हैं सूखी जमीन पर जो हरियाली लाते हैं वो जिंदगी को फिर से सजा जाते हैं। घर के आंगन में जो पौधा लगाते हैं वो आने वाले पीढ़ी को सांस दे जाते हैं। दोस्तों हम में से कई लोगों की ये आदत है कि हम अपने घरों के आसपास और अपने घर में बहुत कई तरह के पौधे लगाते हैं। इनके बहुत सारे फायदे हैं, ये घर को खूबसूरत करता ही है, साथ ही साथ दोस्तों हमारे लिए ये बहुत ही फायदेमंद है हेल्थ वाइज, और इसी बारे में आज हम बात करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। आज हम ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप घर के अंदर रख सकते हैं आसानी से, और इनके बहुत सारे फायदे हैं, हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, और इन्हीं हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में आज हम बात करेंगे कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर के दौरान। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बताती हूँ आपको स्नेक प्लांट के बारे में। स्नेक प्लांट आप सभी ने देखा ही होगा और आपके घर में भी होगा, तो चलिए इसके बारे में बताते हैं आपको। ये पौधा रात के समय भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसीलिए इसे बेडरूम में रखना बहुत अच्छा माना जाता है। अगर आप घर के बाहर स्नेक प्लांट रखे हुए हैं या लगाए हैं, आपने रखा है, तो इसे आप हो सके तो घर के अंदर स्पेशली अपने बेडरूम पर भी लगाइए, क्योंकि ये रात के समय बहुत ऑक्सीजन छोड़ता है और ये हमारे लिए बहुत अच्छा माना जाता है। दोस्तों ये हवा से फॉर्मल्डिहाइड और बेनेजेन जैसे हानिकारक टॉक्सिन्स को साफ करता है। इसे बहुत कम पानी और कम धूप की जरूरत होती है, तो इसे आप आसानी से घर के अंदर रख सकते हैं। और दूसरी प्लांट के बारे में दोस्तों क्या ही कहना, हर कोई इसे अपने घर में लगाना ही चाहता है, रखना ही चाहता है, और ये है मनी प्लांट। वास्तु के अनुसार कहा जाता है कि मनी प्लांट घर में सुख समृद्धि लाता है। ये एक शानदार एयर प्यूरिफायर है जो इंडोर एयर को फ्रेश बनाता है, इसीलिए दोस्तों घर में अगर आपने मनी प्लांट लगाया है तो बहुत अच्छी बात है। वास्तु के अनुसार तो सही है ही है, और साइंटिफिकली दोस्तों ये कहा जाता है कि ये हमारे हवा को शुद्ध करता है, ये घर के आसपास के अपने आसपास के हवा को शुद्ध करता है। इसे पानी या मिट्टी दोनों में ही आसानी से उगाया जा सकता है और ये कम रोशनी में भी अच्छी तरह से बढ़ता है, तो इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है कि आपको इसे बार बार बाहर ले जाना है अंदर लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप घर के अंदर रखिए, हाँ कुछ अंतराल के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ देर के लिए आप बाहर ले जा सकते हैं, या फिर बहुत दिनों तक आप घर के अंदर भी इसे उसके बाद रख सकते हैं। फिलहाल चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं एक अच्छे से गीत का, और आगे और भी बताएंगे आपको कि किस तरह के पौधों को आप घर के अंदर रख सकते हैं जो हमारे हेल्थ वाइज बहुत ही बेनिफिशियल है। चलिए अब आनंद लेते हैं इस गीत का, ये प्रेम मोल्लिया फिल्म से।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा, गुवाहाटी हाईकोर्ट, ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

तो चलिए दोस्तों, इस बार बताऊंगी आपको पीस लिली के बारे में। ये पीस लिली भी बहुत कॉमन है दोस्तों, बहुत से घरों में मैंने देखा है और आपके घर में भी है शायद। ये पौधा घर के अंदर के मोल्ड स्पोर्स को न्यूट्रलाइज करता है और हवा से हार्मफुल टॉक्सिन्स को हटाता है और फिर घर का जो वातावरण है इसे शुद्ध करता है। इसके सफेद फूल घर को बेहद खूबसूरत बनाते तो है ही है। इसे शेडी या कम धूप वाली जगह पर रखना चाहिए और मिट्टी में नमी मॉइस्चर बनाए रखनी पड़ती है। और फिर दोस्तों, दूसरा जो पौधा है वो है एरिका पाम। एरिका पाम आप सभी जानते होंगे, ये नेचुरल ह्यूमिडिफायर की तरह काम करता है, यानी कि ये मौसम में हवा में मौसम ये सूख यानी कि ड्राई मौसम में दोस्तों शुष्क मौसम में हवा में नमी बनाए रखता है। ये फॉर्मल्डिहाइड और साइलिन जैसे टॉक्सिन को भी फिल्टर करता है। इसे हल्की रोशनी और नियमित रूप से पानी की आवश्यकता होती है, बस सिंपल इतना ही है। हल्की धूप चाहिए, बस इतना ही। इसे बहुत ज्यादा तकलीफ या मेहनत करनी नहीं पड़ती है इन पौधों को घर के अंदर रखने में। दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ जरूर आया होगा कि इन पौधों को रखने के बहुत सारे फायदे हैं। ये भी बता दूं आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का मुरारी ठाकुर की आवाज में महाराज फिल्म से। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, जिसके तुरंत बाद आप सुन सकेंगे नौके डायलेक्ट न्यूज। और इसी के साथ ही हमारे आज की अरुण एफएम प्रसारण, माफ कीजिएगा, इसी के साथ हमारे आज की गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक जो है यहीं पर समाप्त होता है। कल हम लेकर आएंगे एक और नया अंक कुछ और मजेदार गीतों और बातों के साथ।

0: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत की आर्थिक वृद्धि मजबूत हो रही है। उन्होंने नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम को संबोधित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने बिम्स्टेक को क्षेत्रीय एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण मंच बताया। यूपीआई पर ग्राहक के व्यापारी के बीच 2000 रुपए से अधिक के लेनदेन पर यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट दीपावली के बाद लागू। असम के तेजपुर स्थित नेशनल कैडेट कोर एनसीसी मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर मयंक वैद्य ने ईटानगर स्थित लोक भवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल टायर के टी पारनायक से मुलाकात की। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर स्थित चौथी आरबीएन मुख्यालय में प्रोजेक्ट अभ्या का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य बच्चों को सुरक्षा को मजबूत करना और पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। आईएमएफ ने 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। कैनेडा की विदेश मंत्री अनिता आनंद आज से 2 दिन की भारत दौरे पर और शेफाली वर्मा और शुभमन गिल को सितंबर 2026 के लिए आईसीसी महिला और पुरुष प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा है कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा है कि शक्ति केवल आगे बढ़ने की क्षमता नहीं है, बल्कि दूसरों को सशक्त बनाने की क्षमता भी रखती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि डिजिटल शक्ति ने भारत के लिए नए अवसर खोले हैं। श्री मोदी ने कहा है कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत

0: में 100 से ऊपर भाषाएं हैं, करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं, 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का आर्थिक विकास मजबूत नींव पर टिका हुआ है। उन्होंने कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही से सकल घरेलू उत्पाद विकास दर 7.8% रही। उन्होंने कहा है कि आज भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है और बैंकिंग प्रणाली कई दशकों के अपनी सबसे मजबूत स्थिति में खड़ी है। श्री मोदी ने कहा है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेज गति से आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
0: पावर के पर्पज पर जो फोकस है यही सोच गवर्नेंस में भी जरूरी है। सरकार के पास अथॉरिटी है लेकिन इसका उद्देश्य ये नहीं होना चाहिए कि देश का नागरिक सिस्टम पर ही निर्भर हो जाए, बल्कि इसका मकसद ये होना चाहिए कि देश के नागरिक सक्षम हो, सशक्त हो, और भारत इसी रास्ते पर चल रहा है। इसी रास्ते पर चलते हुए भारत ने बीते एक दशक में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है।
1: असम के तेजपुर स्थित नेशनल कैडेट कोर एनसीसी मुख्यालय के ग्रुप कमांडर ब्रिगेडियर मयंक वैद्य ने ईटानगर स्थित लोक भवन में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड केटी पारनायक से मुलाकात की। इस दौरान राज्य में एनसीसी की गतिविधियों को सुदृढ़ और विस्तारित करने के उपायों पर चर्चा की गई। राज्यपाल ने अरुणाचल प्रदेश में एनसीसी की गतिविधियों के सफल संचालन के लिए तेजपुर स्थित एनसीसी मुख्यालय की सराहना की। उन्होंने गणतंत्र दिवस परेड और प्रधानमंत्री रैली में राज्य के कैडेट्स की भागीदारी तथा उनके समर्पण की प्रशंसा की है। युवाओं के विकास में एनसीसी की भूमिका पर अपने विचार व्यक्त करते हुए राज्यपाल ने कहा है कि संगठन को युवाओं में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, देशभक्ति, एकता और सेवा भावना का संचार निरंतर करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि एनसीसी का प्रशिक्षण युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ाने, उनके चरित्र निर्माण और उन्हें समाज तथा राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पित जिम्मेदार नागरिक बनाने में सहायक होना चाहिए। राज्यपाल ने अधिक से अधिक विद्यार्थियों को एनसीसी में नामांकन कराने और उसकी गतिविधियों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री मामा नातुंग ने ईटानगर के जूली स्थित चौथी आईआरबीएन मुख्यालय में प्रोजेक्ट अभ्या का शुभारंभ किया। इस परियोजना का उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा को मजबूत करना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो अधिनियम के प्रावधानों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नातुंग ने कहा है कि बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण को सामूहिक प्राथमिकता बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए स्कूलों, छात्रावासों और समुदायों में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी सभी की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि इस पहल के माध्यम से बच्चों के लिए अधिक सुरक्षित वातावरण बनाने और उनके उज्जवल एवं सुरक्षित भविष्य के निर्माण में योगदान दिया जा सकेगा। यूपीआई पर ग्राहक से व्यापारी के बीच 2,000 रूपये के अधिक से लेन देन की यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट दीपावली के बाद लागू किया जाएगा। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI ने नेशनल सोशल मीडिया में पोस्ट में बताया है कि यूपीआई और सेवा संचालन समिति ने त्योहारी मौसम को ध्यान में रखते हुए आज यह निर्णय लिया है। रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि इसकी तारीख की सूचना अलग से दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर को 6.4% से बढ़ाकर 7% कर दिया है। IMF की प्रमुख विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अनुमानों में ये सुधार सुदृढ़ घरेलू मांग और मजबूत सेवा गतिविधियों के कारण आर्थिक वृद्धि को मिली अपेक्षा से अधिक गति के कारण किया गया है। भारत नई दिल्ली में बहुपक्षीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी क्षेत्र की पहल बिम्स्टेक संगठन के गृह मंत्रियों की पहली बैठक की मेजबानी कर रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि ऐतिहासिक बैठक आतंकवाद, संगठित अपराधों, नशीले पदार्थों की तस्करी, अवैध वित्तीय प्रवाह तथा साइबर खतरों से निपटने और साझा संकल्प को उजागर करती है। श्री शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ

0: अभियान में सभी पक्षों के सहयोग का आह्वान किया।
1: ये केवल नशे का कारोबार नहीं है, बल्कि हमारे युवाओं के जीवन, हमारे समाज, हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों पर हमला है। ये एक देश के प्रयासों से रुक नहीं सकता। हमें होल ऑफ रीजन अप्रोच अपनाना होगा। ड्रग की अवैध कमाई संगठित अपराध को आर्थिक शक्ति देती है और आतंकवादी वित्त पोषण में भी इसका इस्तेमाल होता है। प्रीकर्सर्स रसायनों का डायवर्जन और डार्क वेब के माध्यम से लेन देन इस चुनौती को और जटिल बनाते हैं।
0: गृहमंत्री ने कहा है कि सदस्य देश आपसी समन्वय के माध्यम से सुरक्षित और मजबूत बिम्स्टेक क्षेत्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि मानव तस्करी की समस्या मानवाधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
1: मानव तस्करी भी हमारे साझा सुरक्षा और मानव अधिकारों के समक्ष गंभीर चुनौती है। पीड़ितों की पहचान, बचाव, सहायता, पुनर्वसन और सुरक्षित वापसी में सहयोग हमारे सामूहिक प्रयास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहना चाहिए।
0: आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति पर श्री शाह ने इस दिशा में सामूहिक संकल्प का आह्वान किया। श्री शाह ने खुफिया जानकारी, कानून प्रवर्तन, वित्तीय निगरानी और सीमा प्रबंधन एजेंसियों के बीच त्वरित सहयोग और समन्वय की जरूरत पर भी बल दिया। उन्होंने आतंकवादियों को मिलने वाले धन और संगठन अपराधों से निपटने में नवोमित नोडल एजेंसियों के जरिए खुफिया जानकारी के आदान प्रदान को बेहतर समन्वय पर भी बल दिया है। भारत के कोस्टा रिका में सैन्य जोस में स्थित नए रेजिडेंट मिशन में कार्य करना शुरू कर दिया है। ये माध्यम अमेरिका के अपने राजनयिक दायरे की बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा है कि मिशन भारत और कोस्टा रिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मिशन आपसी राजनीतिक जुड़ाव को सुगम बनाएगा, द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देगा तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोगी मजबूत साबित होगा। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा ने कहा है कि विशेष रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के युग में सुरक्षा आधारित नीति निर्माण के लिए आंकड़े एकत्र करना और उनका विश्लेषण करना आवश्यक है। कनाडा के विदेश मंत्री अनिता आनंद आज से 2 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान वे विदेश मंत्री डॉ. जयशंकर तथा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात करेंगे। इस बीच भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कोटर ने कहा है कि कनाडा प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते, अधिक निवेश और दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही के जरिए भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार सुदृढ़ करने के इच्छुक है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय इंदू चुकू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड द डिसेंटर हैज एम्बॉडीड द प्रिंसिपल ऑफ पावर टू एम्पावर इन इट्स गवर्नेंस अप्रोच एंड वर्क कल्चर। स्पीकिंग एट द ब्लूमिंग न्यू इकोनॉमी फोरम इन न्यू दिल्ली, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इज टेकिंग प्लेस ऑन स्ट्रांग फाउंडेशन अमिड्स ग्लोबल अनसर्टेनिटी। मिस्टर मोदी सेड दैट इंडियाज प्रोग्रेस इज रूटेड इन collective growth and shared opportunities. He said the government's constant endeavor is to ensure that India's capabilities open new doors of opportunity for other countries as well. He said the power is not just the ability to move ahead but is also the ability to empower others. Mr. Modi said in the present era, digital power has emerged as one of the drivers of this transformation and playing a significant role in advancing this vision. Mr. Modi stated that digital power has opened up greater opportunities for India. India is hosting the first Bay of Bengal initiative for multi-sectoral technical and economic cooperation, BIMSTEC, Home Ministers meeting in New Delhi. This historic meeting highlights the collective commitment to combating terrorism, transnational organized crime, narcotics, radicalization, human trafficking, illicit financial flows, and cyber threats. Speaking on the occasion, Home Minister Amit Shah said that BIMSTEC has emerged as an important platform for regional integration, economic cooperation, and collective security. He said India has always been committed to peace and human welfare, guided by the principle of Vasudeva Kutumbakam, reaffirming India's policy of zero tolerance towards terrorism. The Home Minister called for a कलेक्टिव कमिटमेंट

0: भवन को गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड कैटी पर नायक दमना चुमेवा और चुमिंग तक स्टेट को चेंचन इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नति हुआ यिंगले लमखो कनेक्टिविटी यूथ एम्पावरमेंट साकुरी लंपो जनरेट हुआ वेलफेयर स्कीम से सोलेवन यिंग हे जो अजा थम्प चुथोमिंग गवर्नर ममिंग स्टेट को मिज्ञान हेमा मामा जीन बी पक्षाली लंपो चहोमारा रंगमा स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप टूरिज्म हॉर्टिकल्चर ले लिहान लोकल लाइवलीहुड काम गे नंग अजा पा लागी मोट में नंग डिप्टी चीफ मिनिस्टर नंग गेंग पा चोथोको जो रेवा गाले स्टेट कवा जान छुपांग मी यूथ से रोंडोंग सनवांग रंग गाले डिसिप्लिन पा तादंग रंग खेनको स्पोर्ट्स गे नंग मेंग गवर्नमेंट मा चान पा कोवा रंग जो गवर्नर मा मेन नंग चोथोको जो मेंग रेवा चोना मेन मा मेंग शक्या मुनि बुद्ध होली रेलिक्स पा नाम सैना नेनप हॉक मिंगिंग पा गवर्नर नंग चोथोको जो रेवा गाले अरे सक्रेट एक्सपोजिशन रिचुअल्स रंगसोम नंग मिंग को गवर्नर मिंग नाम सैना मावांग रंग मेन मा गवर्नर नंग इनवाइट पा होंजो प्ले का होम मिनिस्टर मामा नातुंग मा मजा ईटानगर वा जूली वा फोर्ट आईआरबीएन हेडक्वार्टर को प्रोजेक्ट अभया पा लाभंग लोसेकता अरे अभया प्रोजेक्ट पा दिहक लता है सिक्योरिटी ले सेफ्टी पा ले थोंग रोंग सिप रंग गाले पोक्सो एक नियम पा नोक तंग है नंग अजा अजा तापुंग चुजे वन थुक रंग थम लाम जो लोसेरिका दिहक लता है नंग रोंडे वा जमें स्कूल्स हॉस्टल्स ले कम्युनिटी खन नंग सेफ्टी पा मरो ताचेन में गा काम है ngā ngā mā jau lāgi thonghunman mī ngā mā home minister ārē project pa lōsiko nung mā bānglo jāp jau lēwā. Arunachal Pradesh Commission for Women ngē mā mā jā ītānāgarwa Dera Nātung Government College ko cyber crime stalking lē students say mental health ko ko awareness program mā te ko kam lōsiko. ārē program ko APSCW chairperson Yalam Taga Burang mā ngēng thota ko students se ma drugs le achi akha jok phak cha pa lamong thongun mingjo ngale nyave danam ko chen chen practical skills rang rang kam he heven rang ming thongun ming ama students nang chu thoku jo leva are program pa college ko wa women cell le students le faculty members se dam nang rom lama Arunachal Pradesh State Commission for Women nge me jo kho kam lo seva pa sikha taun pa sa pung pung ta chien clean green le plastic free pa ta chin lang thim pa chin lama maja pasighat municipal corporation khanwa seva mera yogdan 2026 ngema pasigarwa jain government college jain college wa playground ko marathon race to chunming program ante khokam losiba are program ko environmental conservation le healthy lifestyle pa dangrang ngeng heyo choyatuk rewa ngale cha banga to rang runners se ma participate honjo rewakwa teja ato yana nok te khabut latimata arba akashwani tanagar dibrugar ade se se prongok ne ma abang ko wang pam lowang le lamlu heba se bangchu tan man
1: ma chung nam lo hiv rak kamung nang areng rung rang ta chen HIV rak asa kamung nang ahum tagro jua dai mai pa akawong jangro mai yung hanwang HIV rak manai mai jang ma tongwo lo kamara parma HIV rak un mai bochim aking sings kaum rak po reling renang ma aro mai yung hanwang rak po nausa hanata reling rakchi parma tai po jachie po mai jang ma tongang lo nai jak lalu lo ra रखुई पाम रो नई आदम म फक्सा रो एच आई वी राग पर रलिंग मु पर म सुरोंग रो काव रो मन पर एच आई वी राग पर रलिंग मु एच आई वी राग पर होमोइनांग कराई रो रे कुथंग म आचा तोमाई रक्षी आरो एच आई वी राग म हद्रंग जमु आरो डॉक्टर म कराई रंग रार रसन पान रंग जमु पर म एर राग कम नांग नरी म तगाई म नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1097 nang phone nang rar iruman po singmung wang mai ma ahu rang tan mong ro Arunachal Pradesh State AIDS Control Society ro gu de

0: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे नोकते डायलेक्ट न्यूज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इस बार आनंद लेते हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम 6 बजे इवनिंग ड्राइव।

दोस्तों कहते हैं कि हर शाम अपने साथ एक नया सुकून लेकर आती है, बस जरूरत है तो उस सुकून को महसूस करने की। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपके इस शाम को खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं बेहतरीन बातें और कुछ सदाबहार गीतों का खूबसूरत संगम। स्वागत करती हूँ आप सभी का कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में, और बता दो आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का बेटा फिल्म से।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ईटानगर बेंच।

अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

दोस्तों, जिंदगी में बड़ी बड़ी खुशियों का इंतजार करते करते हम अक्सर छोटी छोटी खुशियों को भूल ही जाते हैं। कभी चाय की एक प्याली, कभी किसी अपने का फोन, कभी किसी बच्चे की हंसी और कभी रेडियो पर बजता हुआ अपना पसंदीदा गाना। ये छोटी छोटी बातें ही तो जिंदगी को बहुत खूबसूरत बनाती हैं। बता दो आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का वीर फिल्म से।

दोस्तों, वीर फिल्म के इसी गीत के साथ ही बता दूं आपको कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन मनोरंजन का सिलसिला रुकेगा नहीं। अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर बने रहिए दोस्तों। चलिए और आगे बढ़ते हैं और लिए चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम शाम की महफिल का।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पावर डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य में आयोजित कर रहा है सेवा सेतु कैंप्स। हर कैंप्स में रजिस्ट्रेशन डेस्क होंगे, स्कीम काउंसलिंग डेस्क, वेंडर डेस्क और बैंकिंग डेस्क भी होंगे, ताकि कंज्यूमर्स कैंप पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, सवाल या समस्याओं का हल पा सके, रजिस्टर्ड वेंडर्स से कोटेशन प्राप्त कर कैंप पर ही बैंक लोन भी अप्लाई कर सके। कैंप शेड्यूल इस प्रकार है, 27 सितंबर 2026 को बोलंग इलेक्ट्रिकल डिवीजन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, 29 सितंबर 2026 को राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को राज्य के सभी इलेक्ट्रिकल डिवीजन में ये कैंप लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम से आप हर महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 1 किलोवाट पर 33,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 66,000 का सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 85,800 रुपए का सब्सिडी ले सकते हैं। बैंक से 2 लाख तक के कोलेट्रल फ्री लोन पर लगभग 5.75 इंटरेस्ट रेट होंगे और 2 लाख से 6 लाख तक के लोन पर 7.9% इंटरेस्ट रेट होंगे, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% मिनिमम मार्जिन के साथ। इस योजना के लिए पावर डिपार्टमेंट से वैलिड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाले कोई भी घर अप्लाई कर सकते हैं सही दस्तावेज के साथ। इस योजना में जिनका स्मार्ट मीटर नहीं है

उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए हैं, वे डिवीजन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए www.pmsuryaghar.gov.in या द पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप पर पावर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, आधार डिटेल्स और बैंक अकाउंट डिटेल्स। और ध्यान रहे, इंस्टॉलेशन के लिए नेशनल पोर्टल पर रजिस्टर्ड वेंडर्स का ही चयन करें। इस स्कीम को आप 31 मार्च 2027 तक ही प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए सभी कंज्यूमर्स जल्दी से अप्लाई करें। किसी भी तरह की सहायता के लिए स्टेट हेल्पलाइन 9378193870 पर आप संपर्क कर सकते हैं या अपनी नजदीकी इलेक्ट्रिकल डिवीजन सब डिवीजन ऑफिस पर संपर्क कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन ऑफिस ऑफ द चीफ इंजीनियर पावर वेस्टर्न इलेक्ट्रिकल जोन ईटानगर की ओर से जनहित में जारी है।

कुछ शामें यादों के नाम होती हैं तो कुछ शामें अपनों के नाम होती हैं और कुछ शामें ऐसे भी होती हैं जो बस मुस्कुराने के नाम होती है। दोस्तों बताना चाहूंगी आपको कि इस वक्त आप सुन रहे हैं इस गीत का विवाह फिल्म से पामेला जैन और श्रेया घोषाल की आवाजों में।

0: श्रोता, विवाह फिल्म के इसी गीत के साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम शाम की महफिल के आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आप निराश मत होइए क्योंकि आगे हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ और हिंदी फिल्मी गीत जो हमें कुछ और यादों के साथ जोड़ देगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं कुछ और हिंदी फिल्मी गीतों का।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत पावर डिपार्टमेंट अरुणाचल प्रदेश पूरे राज्य में आयोजित कर रहा है सेवा सेतु कैंप्स। हर कैंप्स में रजिस्ट्रेशन डेस्क होंगे, स्कीम काउंसलिंग डेस्क, वेंडर डेस्क और बैंकिंग डेस्क भी होंगे ताकि कंज्यूमर्स कैंप पर ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सके, सवाल या समस्याओं का हल पा सके, रजिस्टर्ड वेंडर्स से कोटेशन प्राप्त कर कैंप पर ही बैंक लोन भी अप्लाई कर सके। कैंप शेड्यूल इस प्रकार है, 27 सितंबर 2026 को बोलंग इलेक्ट्रिकल डिवीजन सियांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में, 29 सितंबर 2026 को राज्य के सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 7 अक्टूबर और 12 अक्टूबर को राज्य के सभी इलेक्ट्रिकल डिवीजन में ये कैंप लगाए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत रूफटॉप सोलर सिस्टम से आप हर महीना 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्राप्त कर बिजली के बिल को कम कर सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश स्पेशल कैटेगरी स्टेट के अंदर 1 किलोवाट पर 33,000 का सब्सिडी, 2 किलोवाट पर 66,000 का सब्सिडी और 3 किलोवाट पर 85,800 रुपए का सब्सिडी ले सकते हैं। बैंक से 2 लाख तक के कोलेट्रल फ्री लोन पर लगभग 5.75 इंटरेस्ट रेट होंगे और 2 लाख से 6 लाख तक के लोन पर 7.9% इंटरेस्ट रेट होंगे, जो प्रोजेक्ट कॉस्ट के 10% मिनिमम मार्जिन के साथ। इस योजना के लिए पावर डिपार्टमेंट से वैलिड डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाले कोई भी घर अप्लाई कर सकते हैं सही दस्तावेज के साथ। इस योजना में जिनका स्मार्ट मीटर नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए जो उपभोक्ता स्मार्ट मीटर नहीं लगवाए हैं, वे डिवीजन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। इस योजना के लिए अप्लाई करने के लिए www.pmsuryaghar.gov.in या द पीएम सूर्य घर मोबाइल ऐप पर पावर डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी डॉक्यूमेंट्स है इलेक्ट्रिसिटी

दोस्तों, शाम शाम का वक्त बड़ा ही खास होता है। सुबह से शाम तक हम न जाने कितने लोगों से मिलते हैं, कितने काम करते हैं और कितने सारे बातें बातें होती हैं। लेकिन शाम होते होते हम अक्सर उन यादों की गलियों में घूमने लगते हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब होते हैं। कभी किसी पुराने दोस्त की याद, तो कभी बचपन के दिन, तो कभी ऐसा गीत जो हमें बीते हुए खूबसूरत पलों में ले जाता है। लीजिए दोस्तों, बता दो आपको कि इस वक्त आप आनंद ले रहे हैं इस गीत का दबंग 3 फिल्म से मुस्कान और सलमान अली की आवाजों में।

0: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है।
1: एचआईवी संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से एचआईवी नहीं फैलता।
1: एचआईवी की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: एचआईवी से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाए, जांच कराए, भेदभाव मिटाए।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी GHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: सुपीरियर हैंडलिंग, स्टाइलिश लुक, एक्सप्लोर मारुति सुजुकी ब्रेजा कम्स विद सुपरस्टार 9 इंच स्मार्ट प्ले प्रो।

0: A 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा गुवाहाटी हाई कोर्ट ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च ESS सेक्टर ईटानगर नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

0: नमस्कार दोस्तों, आदि डायलेक्ट न्यूज के बाद स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अरुण एफएम प्रसारण सभा में। तो चलिए इसी सिलसिले को, यानी कि मनोरंजन के इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए लिए चलते हैं आपको हमारे अगले सेगमेंट की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम आज के कलाकार का।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

हेलो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में स्वागत करते हुए बताना चाहेंगे आपको कि हमेशा की तरह आज भी हम कुछ अच्छी अच्छी गीत तो लेकर आए ही हैं आपके लिए, और साथ ही साथ एक ऐसे कलाकार के बारे में बात करेंगे जिन्हें आप सभी बहुत पसंद करते हैं। जी हाँ, आज हम बात करेंगे 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल के बारे में। 19 अक्टूबर 1956 को जन्मे सनी देओल का असल नाम है अजय सिंह देओल। घर में उन्हें सनी कहकर पुकारा जाता है और इसीलिए उन्होंने ठाना कि वो फिल्मों में सनी नाम से ही एंट्री लेंगे। धर्मेंद्र के सबसे बड़े बेटे सनी का एक भाई बॉबी देओल और दो बहनें विजेता और अजिता हैं। दोनों बहनें अमेरिका में रहती हैं और सनी की दो हाफ सिस्टर्स ईशा और आहाना देओल हैं। 80 के दशक की शुरुआत में बॉलीवुड में कई सितारों ने अपने संतानों को बॉलीवुड में लॉन्च किया। धर्मेंद्र ने भी अपने बड़े बेटे सनी को फिल्म बेताब के जरिए अभिनय की दुनिया में प्रवेश दिलाया। एक दिलेर

नौजवान की इमेज सनी के लिए लेखक जावेद अख्तर ने गढ़ी। फिल्म सुपरहिट रही और सनी के कदम बॉलीवुड में मजबूती से जम गए। और आज भी आप सभी ने देखा होगा कि आज भी जब उनकी फिल्म आते हैं तो लोग क्रेजी हो जाते हैं उस फिल्म को देखने के लिए, क्योंकि वो आज भी लोगों के दिलों में राज करते हैं। तो चलिए इसी बात पर आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं फिल्म बेताब के ही इस गीत का।

श्रोता, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का फिल्म बेताब से। दोस्तों, फिल्मों में लॉन्च करने से पहले धर्मेंद्र ने सनी को बर्मिंघम में अभिनय सीखने के लिए भेजा था। कहते हैं पढ़ाई के दौरान सनी अपने पिता धर्मेंद्र के जीन्स पहनकर जाया करते थे और दोस्तों पर रोब जमाते थे कि ये जीन्स मेरे पापा ने शोले में पहनी थी। सनी देओल अपने पिता धर्मेंद्र को बेहद चाहते हैं। धर्मेंद्र का वो इतना सम्मान करते हैं कि वे पिता के सामने ज्यादा बोल भी नहीं पाते। धर्मेंद्र को सनी अपना प्रिय अभिनेता मानते हैं। धर्मेंद्र की फिल्म ब्लैकमेल का गाना पल पल दिल के पास उनका सबसे पसंदीदा गीत है। अभिनेत्रियों में सनी को तनुजा सबसे ज्यादा पसंद है। सनी के बारे में और भी बहुत सारी बातें करेंगे श्रोता इस कार्यक्रम के दौरान। फिलहाल चलिए आगे बढ़ते हैं और आनंद लेते हैं इस अगले गीत का, चालबाज फिल्म से।

तो दोस्तों, अभी अभी आपने आनंद लिया इस गीत का घायल फिल्म से, और घायल फिल्म की बात करें तो दोस्तों, घायल फिल्म 1990 में प्रदर्शित हुई। घायल फिल्म ने सनी के करियर में अहम मोड़ निभाया। इस फिल्म में उन्होंने शानदार अभिनय के बल पर स्पेशल जूरी अवार्ड यानी कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड भी जीता। दोस्तों, घायल के जरिए सनी ने निर्देशक राजकुमार संतोषी को पहला अवसर राजकुमार संतोषी ने सनी को पहला अवसर दिया। फिल्म की स्क्रिप्ट सुनते ही सनी को अंदाजा हो गया था कि इस पर बनी फिल्म हिट होगी, और उन्होंने घायल को अपने बैनर तले बनाया। उसके बाद 1993 में फिल्म दल में काम करना सनी के लिए खराब अनुभव रहा। सनी को लगा कि सेट पर उनकी अपेक्षा की जा रही है, जिन चीजें उनके मन मुताबिक नहीं हुई, और इसके बाद उन दोनों के बीच का रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहा। राजकुमार संतोषी और सनी ने 3 फिल्में की, घायल, घातक और दामिनी, और ये तीनों फिल्में ही बहुत बेहतरीन फिल्में मानी जाती है, और दर्शकों ने इन तीनों फिल्मों को बहुत ज्यादा प्यार दिया और पसंद किया। सनी दिल के साफ है, इसीलिए उन्हें झूठ बोलने वाले और बेईमान लोग बिल्कुल पसंद नहीं। एक बार

0: 시 따갑세 아감고 원래 아까스파니 이타나거 일꿈 로케서 부이샴 멀린지든 물론이 물르돌루가 밥네 냠냐가고 아니옴 억치르가베 HIV la AIDS ga pago samning chendo HIV AIDS alman bo HL hab su tal so chin bo sam chinam samnule bo su brima pan ma so HCM yo kam chida pa hal so ning ni vyap si tan hal do ma da na nule sam al jar chen do du bri pa sam chen do du bri nam CM yo kam nule chen do bolo so H pago samnule ayab ka al chen bal do bolo kam nule so H bo ning do ja kam so H samnule anyab su su du bi tan na si koi go su du bi tan ओगे HIV ला AIDS ओगे जिदन हब लो कम सी नेम नेगा दोबम कोलो ओगे सो उई ना कोसुल दोल कम ओगे सो सो बीजी पिन नम बी कोसुल नी एच वो ओगे बी कम हो सो एच सी दोदन ओगे सो एच सी नुले एच सी उसी मादन नुलुक अला चिरु कोलो चेतिन मिसल दोकलो लेकिन गो दवन दावन ला दोल कम नुले सी एच सी उमादन ओ गाव नुले एचसी दोने दोमादन हम मोद मोदम काग द नुल मेडिकल हाला नुल एंगम का काकम दो लिपाने ओ पिंग कोलो मुलु निंग एचआईवी ला एस वे गुतु गोरा लो यिन दोद लो कम हो नि तुलो हम कम नुल अन्या बिला दोद लिदन साम नुल तिंपा दो लिमादने साम या नुल सका दो लिपने एम अबदी सी सका म ब अन्या म तिंपा बन्यो कम सो नि सी एचपे या दो तादना ओ गे साम नुल चेन दोत कल बाहरा नुल चिन दो लो कम नुल 1097 host number so call mugdo sam anyaba takataka oga sam chemdo sam ayar gig mugdo sam nulam eshat mama do el kal do bunga Arunachal Pradesh State AIDS Control Society oga DHS Naharlagun loga jilin panam ke sei takap sa puya hat ko payalin cho
1: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
2: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.

श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से निशी डायलेक्ट न्यूज। स्वागत करती हूँ आप सभी का एक बार फिर से अरुण एफएम प्रसारण सभा में, और यहीं पे आपको बताना चाहेंगे कि आपसे बस कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित

0: आकाशवाणी है विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में प्रस्तुत है परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे हैं रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडी जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही है सोनू सूद।
1: जनसेवा से देश सेवा श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा हम जानते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 वर्ष पूरे किए हैं सार्वजनिक सेवा के, 13 वर्ष गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में और 12 वर्ष से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, बंदरगाह समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत का जो समुद्र तट है वो बहुत लंबा है, 11,099 किलोमीटर के करीब का, और जो इनलैंड वाटरवेज हैं उनकी भी लंबाई 14,500 किलोमीटर के करीब है, और 95% भारत का जो ट्रेड बाय वॉल्यूम और लगभग 70% बाय वैल्यू मैरिटाइम रूट से आवाजाही उसकी होती है। तो इसलिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इस पर हम एक्सपर्ट ओपिनियन आज चलेंगे, बारीकी से चर्चा करेंगे। तो हमारे विशेषज्ञ हैं हमारे साथ जुड़े हुए इस कार्यक्रम में, कॉमोडोर केडी जोशी जो है डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा जो है स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: कॉमोडोर जोशी, बंदरगाहों का जो विकास गुजरात में हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, सबसे लंबी कोस्टलाइन है भारत में वो गुजरात में ही है, 2340 किलोमीटर। सो जिस तरह से वहां की सरकार ने ये रियलाइज किया कि प्राइवेट पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है और प्राइवेट पार्टिसिपेशन के साथ उन्होंने वहां पर कैपेसिटी बिल्डिंग की है, इसको आप कैसे देखते हैं और क्या ये मॉडल पूरे भारत में पूरी जो कोस्टलाइंस है वहां पर भी सफल रहा है?
3: आप बिल्कुल सही बोल रही हैं कि जो प्राइवेट पार्टनरशिप है वही एक फ्यूचरिस्टिक, मैं कहना चाहूंगा कि आगे की सोच का कदम माना जाएगा, क्योंकि जब तक देश के सारे विभिन्न तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कह लीजिए, इंडस्ट्रियल हाउसेस कह लीजिए, सरकार कह लीजिए, ये सारे एक साथ अगर आएंगे और पूरे देश का चौतरफा उन्नति की दिशा में अपना अनुदान देंगे, तभी देश में मेरे ख्याल से एक उन्नति ठीक से हो पाएगी। और अगर आप देखें तो सरकार ने जो 2-4 साल पहले मेरे ख्याल से 2020 के आसपास एक फाइनेंशियल शिप बिल्डिंग के लिए एक फाइनेंशियल व्हीकल लॉन्च किया था, तो वो भी सरकार की तरफ से एक कदम है कि ईज ऑफ बिजनेस जिसे बोलते हैं, कि अगर आपको किसी को शिप बिल्डिंग में जाना है, किसी को मैरिटाइम रिलेटेड किसी भी इंडस्ट्री में आपको पार्टिसिपेट करना है, तो ये एक कॉरपोरेशन है जिससे आप जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इस फील्ड में जाना चाहते हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और उनको सरकार की तरफ से भी मदद मिलेगी।
1: जी, सो प्रोफेसर मिश्रा, जैसे कॉमोडोर जोशी ने बताया कि पूरी तरह से सरकार ने एक बढ़ावा दिया है निजी क्षेत्र को पोर्ट्स के जो सेक्टर है उसमें उतरने के लिए, हमारे यहाँ 13 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 से भी अतिरिक्त पोर्ट्स हैं। आप हमें बताएं कि ये जो एक बल दिया गया है बंदरगाहों के विकास पर, समुद्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर, कैसे देखते हैं आप इसको, कितना इम्पोर्टेंट है ये हमारे लिए, हमारे आर्थिक सशक्तिकरण के लिए?
2: भारत में आर्थिक विकास की जो गति है और आर्थिक हमारी जो हर साल की जो सालाना हमारी आर्थिक विकास, आर्थिक प्रगति की जो परसेंटेज है वो कंसिस्टेंटली एक हाई लेवल पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने पिछले 2 दशकों में, खासतौर से पिछले 12 सालों में, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कनेक्टिविटी को लेकर के, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कॉमोडोर जोशी ने कहा, इन तमाम क्षेत्रों में सरकार ने अपनी नीतियों को बहुत स्पष्ट तौर पर सामने रखा है कि सरकार का रोल एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का है। एक ऐसा एनवायरनमेंट तमाम जो प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं उनके लिए और आम इंसान के लिए भी ऐसा एनवायरनमेंट सामने रखना जिसमें कि वो अपनी जो उनकी क्षमताएं उनका विकास कर सकें। तो सरकार का काम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है जिसमें मुझे लगता है

0: कि सरकार ने पूरी तरह से अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित किया है इस इनेबलिंग एनवायरमेंट के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि देखिए व्यापार के लिए किसी भी देश की या राज्य की सरकार व्यापार में सीधे तौर पर नहीं उतरती है अगर वो एक कम्युनिस्ट सरकार ना हो, तो ऐसा जो वातावरण बनता है उसमें प्राइवेट सेक्टर को सीधे तौर पर एक स्टेक होल्डर के तौर पर उतरना पड़ेगा। और इसलिए मुझे लगता है कि जैसे भारत की आर्थिक प्रगति हो रही है और भारत से मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन उभर रही है और उनका व्यापार बढ़ रहा है दुनिया के तमाम कोनों से, उसको ध्यान में रखते हुए प्राइवेट सेक्टर की पार्टनरशिप बहुत आवश्यक थी। और भारत के, जैसा आपने कहा कि भारत के बड़े जो बंदरगाह हैं 13 बंदरगाह हैं, लेकिन 200 छोटे बंदरगाह भी,
1: जी
0: इनको कैसे पूरी तरह से समेकित रूप से इनका विकास कैसे किया जाए, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता थी। मुझे लगता है कि जो भारत का जो मैरिटाइम विजन 2030 है या मैरिटाइम अमृतकाल 2047 है,
1: जी
0: उसको ध्यान में रखते हुए एक समग्र और समेकित विकास की आवश्यकता रही है। और उसके विकास के लिए ही मुझे लगता है बंदरगाह से जुड़ा हुआ है या पोर्ट लेड डेवलपमेंट जिसकी हम बात करते हैं,
1: जी
0: वो आवश्यक एक जरूरत थी और वो पूरी तरह से निखर के आ रही है सामने। दूसरा एक बड़ा पहलू है कि भारत के जो बंदरगाह है, हम देखते हैं कि जो पूर्वी क्षेत्र के बंदरगाह हैं और पश्चिमी क्षेत्र के बंदरगाह हैं, दोनों में पहला तो पूर्व और पश्चिम के बंदरगाहों के बीच में क्षमता को लेकर के उनका जो व्यापार है, एक जो टनेज का टर्नओवर है, उसको ध्यान में रखते हुए ही पूर्व और पश्चिम में बहुत अंतर है। पश्चिम के पोर्ट बहुत विकसित है और मुंबई का जो बंदरगाह है उस पर बहुत ज्यादा लोड था, और इसको ध्यान में रखते हुए गुजरात के जो नए बंदरगाहों का अपग्रेडेशन हो रहा है वो बहुत आवश्यक था। इसमें पूर्व और दक्षिण के बंदरगाहों पर भी काफी व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। आगे आने वाले समय में भारत की विकास की गति को सामने रखते हुए इन बंदरगाहों के विकास पर भी काम होगा और तभी भारत एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में निखर कर सामने आ पाएगा।
1: बिल्कुल, जैसे आपने कहा कि अब प्राइवेट पोर्ट्स भी बहुत मेजर हो गए हैं। अगर हम देखें पीपावाव या हजीरा या मुंद्रा, मुंद्रा अब बाय वॉल्यूम सबसे बड़ा पोर्ट है भारत में, और जो पोर्ट कैपेसिटी है उसमें बहुत बढ़ोतरी हुई है। 2014-15 में 1561 मिलियन टन पर एनम था, और अब वो बढ़कर 2817 पर पहुंच गया है। और जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है वो भी 96 घंटों से कम होकर 49 घंटे आ गया है। आप हमें बता सकते हैं कॉमोडोर जोशी की जो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है ये कितना इंपॉर्टेंट है, और ये किस तरह से एफिशिएंसी बढ़ाता है, जो पोर्ट लेड डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको गति देता है?
2: आपने बिल्कुल सही आंकड़े दिए हैं। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है कि ये टर्न अराउंड टाइम अभी थोड़ा और भी शायद कम हो रहा होगा, क्योंकि जो सरकार का बेसिक अगर आप एक उद्देश्य मान लें कि टर्न अराउंड टाइम कम करने से पोर्ट में ज्यादा जहाज आएंगे, ज्यादा माल की ढुलाई होगी, ज्यादा माल उन पे लोड किया जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो काम होता है उससे पोर्ट का जो टर्नओवर कहते हैं आप, मुनाफा कहते हैं फाइनली, वो बढ़ेगा। तो अगर पहले क्या होता था, ये सारे जहाज जाते थे, दो दो तीन तीन दिन एक पोर्ट में ये रहते थे, सामान की आवाजाही हो रही है, कंटेनर उतर रहे हैं, कंटेनर चढ़ रहे हैं, तो ये दो तीन दिन का टाइम लगता था। तो अभी अगर जैसे आपने बताया कि ये समय बहुत कम हो गया है, तो उस हिसाब से अगर देखें दैट में अगर एक दिन में ये काम हो रहा है, तो ये पहले 3 दिन में होता था, अभी एक दिन में 3 जहाज निकल गए, पहले एक ही जहाज निकलता 3 दिन में, तो उस हिसाब से टर्नओवर पर शिप अगर देखें तो 3 टाइम्स हो गया है। उस हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये एक पूरा जो आर्थिक अपनी जो गति है देश की, उसके लिए बहुत ही ज्यादा एक पैमाना है, टर्नओवर टाइम कितना है और इसको कौन देखता है। ये जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस है, वर्ल्ड बैंक का ये कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस का इंडेक्स है,
1: जी
2: वो ये सारे मेजर करके ये देखते हैं कि कौन कौन कैसे परफॉर्मेंस चल रही है इन सब चीजों में।
1: जी
2: एक ये पैमाना, उसके अलावा बहुत भी होंगे। अगर आप देखें इनका जो लेटेस्ट इंडेक्स आया हुआ है उसमें टॉप 30 में हमारे 3 पोर्ट्स आ रहे हैं। जैसे आपने सही बोला, मुंद्रा पोर्ट है गुजरात का, पारादीप पोर्ट है उड़ीसा में, और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है मुंबई का। ये
1: जी
2: 3 पोर्ट टॉप 30 में भारत के हैं, तो ये मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा देश के लिए ये एक गर्व करने की बात है कि ये हमारा देश एक ऐसी दिशा में जा रहा है जो थोड़ा वर्ल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छी मानी जाएगी।
1: जी बिल्कुल, इसी संदर्भ में हम आपसे जानना चाहेंगे प्रोफेसर कि जब हम बात करते हैं पोर्ट लेड डेवलपमेंट की या जो लॉजिस्टिक्स है समुद्री यातायात, तो उसमें कौन कौन से ऐसा कार्गो है जो बहुत हमारे लिए क्रिटिकल है, हमारे देश के लिए, जो समुद्री जो रास्ते हैं उनसे वो उसकी आवाजाही होती है, और जिसके कारण ये जो समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर है इस पर इतना बल दे रही है सरकार?
0: यहाँ कुछ मूलभूत बातें हैं जिनको समझना आवश्यक है
1: जी
0: हमारे लिए भी और श्रोताओं के लिए भी, कि भारत का और दुनिया का अधिकतम व्यापार 90-95

0: 90% से ज्यादा व्यापार वो शिपिंग रूट से ही होता है, समुद्री जहाजों से होता है, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है और उससे ज्यादा माल की ढुलाई हो सकती है। इस बात को हम ध्यान रखें। पहली चीज ये है कि जितना तेल और गैस का व्यापार होता है वो सारा व्यापार समुद्री जहाजों के माध्यम से होता है, जितना हैवी कार्गो जाता है वो भी समुद्री जहाजों के माध्यम से जाता है, और इसके साथ ही साथ भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे आने वाले खाद्य पदार्थों का आयात और निर्यात भी समुद्री क्षेत्र से होता है। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि अगर ये समुद्री यातायात की जो ये जो लाइफ लाइन्स हैं इनको अगर रोक दिया जाए तो दुनिया में व्यापार ही नहीं, दुनिया का चलना मुश्किल हो जाएगा। और ये हमने जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्राइसिस में हमने ये बात देखी कि जब वहां से जहाजों का आवागमन रुका या उस पर एक तरह से नियंत्रण लगा तो दुनिया के तमाम देश, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे देशों में ऊर्जा को लेकर के बहुत बड़ा संकट हो गया। भारत ने इस संकट को बहुत अच्छे से टैकल किया, ये एक प्रशंसनीय बात है, लेकिन हमने देखा कि कैसे दुनिया के तमाम देशों पर ऊर्जा के क्षेत्र में जो अपने को बहुत ही स्वावलंबी मानते हैं ऑस्ट्रेलिया जैसे देश, उनके लिए भी यह स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो गई थी। तो इसलिए कार्गो के क्षेत्र में हम देखते हैं कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ साथ आयरन और स्टील जैसी चीजें, रबर जैसी चीजें जो औद्योगिक विकास के लिए आवश्यक है, लोगों के जीवन में जो खाद्य पदार्थ हैं या जो सामान उनके आम जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जरूरी होते हैं उनकी भी, तो किसी भी देश की आर्थिक प्रगति, उसका एक सस्टेनेबल रहना और उसकी जो जनता है, उसके जो नागरिक हैं, उन लोगों का जीवन भी सुगम रूप से चले, इन सभी के लिए मैरिटाइम रूट्स और शिपिंग रूट्स की आवश्यकता है।
1: और कॉमोडोर जोशी, जैसा कि प्रोफेसर मिश्रा ने बताया कि हमारे रोजमर्रा के जीवन के लिए, एक आम नागरिक के लिए जो जरूरत की चीजें हैं उनके लिए भी ये जो समुद्री कारोबार है कितना जरूरी है। अगर हम मैरिटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आप नेवी में रहे हैं तो आप बता सकते हैं हमें कि इसी संदर्भ में ये जो आवाजाही भी सुगम रूप से बनी रहे, मैरिटाइम सिक्योरिटी का कितना बड़ा एक एस्पेक्ट है जो हर देश के लिए और खासकर अब जब भारत की बात कर रहे हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
2: आपने एक जो एक पॉइंट निकाला है मैरीटाइम सिक्योरिटी का, वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है। आज से नहीं, पिछले 15-16 साल से, जब ये दुनिया में जब इनका हूतीज जो थे या यहाँ पे जो हाईजेक हो रहे थे जहाज और उनसे रैंसम मांगी जाती थी और पूरा का पूरा जहाज बोर्ड कर लिया जाता था और समुद्री जो लुटेरे होते हैं वो आते थे एंड अभी भी आते हैं, और उसके कारण 2008 के करीब से भारतीय नौसेना ने इस एरिया में पेट्रोलिंग शुरू की थी और वो पूरा का पूरा जो जो एंट्री पॉइंट्स हैं ये मिडल ईस्ट के, उसमें बहुत सारे देशों का एक कंसोर्टियम टाइप आप कह सकते हैं, उनके सारे जहाज अपने अपने वहां पे पेट्रोलिंग करते थे, टर्न बाय टर्न आते थे और काफी अच्छी पेट्रोलिंग के कारण ये जो समुद्री लुटेरे आते थे उनका जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट थे सारे बहुत कम हो गए। अभी अगर आप देखें ये क्यों हुआ ये सारा, जब तक आपके पास नौसेना का बल नहीं है आप अपने सी लेन्स जो समुद्री रास्ते हैं, समुद्री जहाजों के आने जाने के लिए जो रास्ते बने हुए हैं वो आप सिक्योर नहीं कर सकते, वो खुले पड़े रहेंगे, कोई भी आएगा रास्ते पे आपके जहाजों को वो लेके जाएगा, रैंसम मांगेगा या जो भी करेगा। आगे वो सिक्योर तभी हो सकते हैं जब नौसेना के जहाज उन सी लेन्स को सिक्योर करे। तो एक ये जो एक काम है भारतीय नौसेना का, एक प्रमुख काम है, पीस टाइम वर्क कह सकते हैं आप, कि जब युद्ध ना चल रहा हो तो ये एक मेजर काम रहता है। और हमारे जहाज कंटिन्यूसली वहां पिछले इतने सालों से पेट्रोलिंग कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, दो दो तीन तीन जहाज होते हैं वहां पे, तो उसके कारण मेरे ख्याल से आप ये कह सकते हैं कि अगर देश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो रही है तो उसके लिए एक सशक्त नौसेना का होना बहुत जरूरी है
1: जी।
2: और मेरे ख्याल से पिछले करीब करीब कुछ सालों में सरकार ने ये काम किया हुआ है। अगर आप जहाजों का थ्रूपुट देखें, जो नेवी के जहाज बन रहे हैं वो काफी सारे जहाज लॉन्च हुए हैं, काफी सारे जहाज कमीशन हुए हैं और बहुत मॉडर्न जहाज हैं। आज की तारीख में भारतीय नौसेना जो है वो एक सशक्त और आप कह सकते हैं नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बोलते हैं इंडियन ओशन रीजन, तो जिसमें अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल भी आ जाता है, तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर भारतीय नौसेना को माना जाता है।
1: बिल्कुल, बहुत ही जरूरी है, दोनों का पैरेलल विकास जिस पर पूरा बल दिया गया है पिछले कुछ वर्षों में। प्रोफेसर मिश्रा, अगर आपके पास आए तो सागरमाला प्रोग्राम जो सरकार का 2015 में शुरू हुआ पोर्ट लेड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, जिसमें मैकेनाइजेशन, जो आजकल एडवांस टेक्नोलॉजी का जमाना है तो डिजिटल सिस्टम्स को पोर्ट ऑपरेशंस में इनकॉर्पोरेट करना, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी, इस सबको आप कैसे देखते हैं, ये जो एक कहें कि फोकस्ड एफर्ट है सरकार का?
0: देखिए, सागरमाला जो परियोजना 2015 में जिसको लॉन्च किया गया, उसके पीछे जो महत्वपूर्ण उसके उद्देश्य थे वो ये थे कि भारत के तमाम बंदरगाह पुरानी तकनीक पर चल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट था और उसमें बहुत ज्यादा जो पुराने किस्म के तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा था। सागरमाला परियोजना के तहत ये बात की गई कि बंदरगाहों का न सिर्फ उनका आधुनिकीकरण करना है, बल्कि बंदरगाहों के बीच में आपस में कनेक्टिविटी हो। और एक बार जब किसी जहाज से, किसी कार्गो या कंटेनर शिप से जब माल वो बंदरगाह पर डॉक होता है, तो वहां से रोड कनेक्टिविटी कैसी है, और तमाम बंदरगाहों के साथ एक ये भी समस्या भारत में पहले रही है कि उनके लिए जो इनेबलिंग इकोसिस्टम है वो नहीं था, तो उसके विकास के लिए भी सागरमाला परियोजना में ध्यान दिया गया। साथ ही साथ इस इकोसिस्टम में ये बात की गई कि किसी भी बंदरगाह में सिर्फ यही नहीं होना चाहिए कि वहां पर एक पोर्ट फैसिलिटी है, डॉकिंग फैसिलिटी है, वहां पर सामान उतर गया, उस सामान का स्टोरेज कैसे हो और वो अत्याधुनिक तकनीक पर कैसे बेस्ड हो। तटीय शिपिंग और अंतरदेशीय जो परिवहन है, चाहे वो जल परिवहन हो, चाहे वो रोड परिवहन हो, चाहे रेलवे के रास्ते जाए, उसको कैसे विकसित किया जाए, और खास तौर से जो इनलाइन वाटरवेज हैं उनके विकास की कोशिशें की गई। तो सागरमाला परियोजना मुझे लगता है कि एक बहुत क्रांतिकारी कदम रहा है पोर्ट लेड डेवलपमेंट के क्षेत्र में भारत में, और इसने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको भी बहुत तेजी से दुनिया की तमाम जो अग्रणी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनसे कॉम्पीट करने और उनके बराबर चलने की क्षमता प्रोवाइड की है। 845 परियोजनाओं को नामांकित किया गया था 2015 में, और उनमें से 315 परियोजनाएं अभी पूरी हो चुकी हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि सागरमाला इनिशिएटिव, जैसा कि नाम भी खुद ये बताता है कि ये तमाम जो भारत के बंदरगाह है उनको एक माला की कड़ियों की तरह जोड़ना है, जिससे कि उन तमाम बंदरगाहों में आपस में भी कनेक्टिविटी रहे, एक कोऑर्डिनेशन रहे, अत्याधुनिक तकनीक से वो जुड़े रहे, कम्युनिकेशन और उन कोऑर्डिनेशन की उनमें लगातार एक सुगम यातायात रहे, और साथ ही साथ इस पूरी बंदरगाहों के विकास और उनके अत्याधुनिकीकरण के साथ साथ भारत के आम नागरिक, छोटे जो व्यापारी हैं, जो लोग पर्यावरण संबंधी मुद्दों से जुड़े हुए हैं, या जो लोग टूरिज्म से जुड़े हुए हैं, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से जुड़े हैं, उनके लिए भी ऐसी व्यवस्थाएं और ऐसी परियोजनाएं चलाना कि वो भी जब बंदरगाहों का विकास हो और ज्यादा माल ढुलाई हो, व्यापार बढ़े, तो वो लोग भी इस विकास का फायदा उठा सके और उसमें अपना योगदान दे सके।
1: बिल्कुल, और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी कम हुए हैं, समय जो लगता था उस सामान को पहुंचाने में वो भी कम हुआ। आपने इनलैंड वाटरवेज की बात करी, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेटिस्टिक्स है हमारे सामने कि लगभग 700% बढ़े हैं कार्गो मूवमेंट इनलैंड वाटरवेज में। सो इस संदर्भ में जो हमारा कहें कि जो वाराणसी मल्टी मोड टर्मिनल है, जो पहला मल्टी मोड टर्मिनल है गंगा नदी पर, जो गवर्नमेंट की जल मार्ग विकास परियोजना है, ये आपको कितना इम्पोर्टेंट लगता है, जैसा आप कह रहे थे कि लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने के लिए और जो समय है उसको भी कम करने के लिए?
0: देखिए, इनलैंड वाटरवेज भारत में उनकी परिकल्पना बहुत पहले से रही है, लेकिन इनलैंड वाटरवेज का उतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं हो सका, और क्योंकि भारत में गंगा नदी मुख्य रूप से, गंगा नदी के रास्ते बनारस से लेकर, वाराणसी से लेकर कलकत्ता तक का एक वाटरवे बनता है जिसमें तमाम जो छोटे और बड़े शहर हैं वो उसके साथ जुड़ सकते हैं। आज जो इनलैंड वाटरवे 1 की बात हो रही है, जिसमें वाराणसी को एक बहुत प्रमुख स्थान दिया गया, क्योंकि सीधे इस इनलैंड वाटरवे के माध्यम से भारत के उत्तरी जो राज्य हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, तमाम ये जो प्रदेश आते हैं जो किसी भी तरह से किसी भी बंदरगाह से या समुद्र तट से जुड़े नहीं है, उनके लिए कैसे ये व्यवस्था की जाए कि वो भी पोर्ट लेट डेवलपमेंट में हिस्सेदार बने और उनके जो निर्यात के सामान है या उनके लिए जो सामान बाहर से आ रहा है उसको कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके। क्योंकि देखिए, शिपिंग में और जो समुद्री व्यापार है ये वैसे ही है, एक बहुत अच्छा उदाहरण तो नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति को जब हार्ट अटैक आता है तो उसके जो 3 घंटे और 4 घंटे होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह जब कोई माल, खास तौर पे खाद्य पदार्थ, जब वो किसी बंदरगाह पर डॉक होता है, जब उसको उतारा जाता है, वहां से कितनी जल्दी वो बाजार पहुंच सके, मार्केट में पहुंच सके, लोगों के पास पहुंच सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। खाद्य पदार्थों के मामले में ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर वो 48 घंटे और 72 घंटे के बाद पहुंचेगा तो आधे से ज्यादा सामान खराब हो जाएगा। भारत के उत्तरी राज्यों के लिए ये एक विशेष चिंता की बात है, क्योंकि जैसे अगर हम आम, क्योंकि उत्तर भारत के तमाम प्रदेशों में आम निर्यात करने की कोशिश होती है, उनके लिए ये हमेशा से एक समस्या रही है कि उनके जो एक्सपोर्ट आइटम्स है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट तक पहुंचने से पहले ही सड़ जाते थे। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि इनलैंड वाटरवेज पर खास ध्यान दिया जाए और उनको विकसित किया जाए। और इसीलिए मुझे लगता है कि वाराणसी मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट या नमो घाट और तमाम जो परियोजनाएं वाराणसी में चल रही हैं उनका एक बहुत दूरगामी परिणाम होगा इनलैंड वाटरवेज।

0: इसको आगे बढ़ाने में और उनके योगदान को बढ़ाने में, पोर्टलेट डेवलपमेंट की जो संकल्पना है भारत की आर्थिक विकास को
1: आपने
0: लेकर।
1: बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी देकर हमें ये बात समझाई है। कॉमोडोर जोशी, आपके पास हम आते हैं। विजिंगजाम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज सी पोर्ट जो केरला में विकसित हुआ है, 2015 में ये इनॉग्रेट हुआ, कैसे देखते हैं आप इसको? ये ग्लोबल सी रूट से हमें कनेक्ट करने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये?
2: जी, अगर आप थोड़ा नक्शे पे ध्यान दें दुनिया
1: जी
2: के, तो आज की डेट में एक प्रोसेस बोला जाए, एक तो ट्रांसशिपमेंट का एक प्रोसेस है और वो सिंगापुर आज की डेट में सबसे बड़ा एक पोर्ट है जिसमें ये सबसे ज्यादा ट्रांसशिपमेंट होती है।
1: जी
2: ट्रांसशिपमेंट का मतलब ये है कि जो बड़े बड़े जहाज बहुत सारा सामान लेके आते हैं उनको पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल करना मतलब कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है, बहुत ज्यादा उसकी कीमत लगती है। तो क्या किया जाता है कि समझिए आप सिंगापुर का एग्जाम्पल ले रहे हैं, जो ईस्टर्न साइड से सामान आ रहा है वो सिंगापुर में छोटे जहाजों में जाएगा, कंपैरेटिवली छोटे जहाजों में,
1: जी
2: और फिर वो बाकी वेस्टर्न साइड की तरफ मतलब हिंदुस्तान की तरफ मलाका स्ट्रेट से होता हुआ इस तरफ आएगा या फिर मिडल ईस्ट या जो भी अफ्रीका में जाना है वो जाएगा। तो एक प्रोडक्शन सेंटर है, एक ट्रांसशिपमेंट सेंटर है। अगर हमारी ज्योग्राफी देखा जाए, पेनिनसुलर कंट्री बोलते हैं अपने को, एंड ये जो विजयनगरम इंटरनेशनल सी पोर्ट बन रहा है त्रिवेंद्रम में,
1: जी
2: वो एक डीप वाटर पोर्ट है। एक 20 से 24 मीटर का ड्राफ्ट मिलता है वहां पे, स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है और इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स जो है ये उसके बहुत करीब है। इनफैक्ट जो सिंगापुर से लेके जो पर्शियन गल्फ की तरफ लेन जा रही है, मलाका स्ट्रेट से पर्शियन गल्फ की तरफ, वो तो इसके बिल्कुल साथ से होती हुई जाती है। और जो स्वेज कैनाल की तरफ जो लेन जा रही है वो इससे करीब 20 से 30 नॉटिकल माइल, अगर किसी को विजयनगरम पोर्ट में आना होगा तो 20 से 30 माइल का डायवर्जन लेना पड़ेगा। तो
1: जी
2: ये लोकेशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें क्या होगा कि जो समझिए आप मिडल ईस्ट से, यूरोप से, मेडिटेरियन से स्वेज कैनाल के थ्रू होते हुए जहाज इधर आ रहे हैं, वो सारे के सारे ट्रांसशिपमेंट अपने यहाँ हो सकती है और फिर यहाँ से जहाज या तो लोकल डिस्ट्रीब्यूशन में इस्तेमाल होंगे या फिर ईस्टर्न साइड ऑफ द वर्ल्ड जाएंगे। सो मेरे ख्याल से ये जो एक दूरगामी जो परिणाम है इसका वो काफी आगे देखने को मिलेगा, क्योंकि जो 24-25 में करीब करीब 1.2 बिलियन TEUs जो यूनिट होती है, 20 फुट इक्वेलेंट यूनिट बोली जाती है, वो इसका थ्रूपुट हो चुका है। और जब फेज 2 और फेज 3 खत्म होएगा 2028 तक,
1: जी
2: तो उस टाइम पे जो इनका जो एम है, टारगेट है, एक विजन है कि 4.5 मिलियन TEU से ऊपर का व्यापार होगा यहाँ पे, और फाइनल फेज 2040 में 7.2 मिलियन TEUs का होने का उद्देश्य है इस बात का।
1: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जन सेवा से देश सेवा श्रृंखला, और आज हमारी चर्चा का विषय है बंदर का समुद्र और नई आर्थिक शक्ति। और हमारे साथ दो विशेषज्ञ आज इस कार्यक्रम में शामिल हैं, कॉमोडोर KD जोशी डिफेंस एनालिस्ट और प्रोफेसर राहुल मिश्रा स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट। प्रोफेसर मिश्रा, आपके पास आते हैं। एक जो बहुत ही रोचक और कहें कि बहुत ही उपयोगी ग्रास रूट्स लेवल पे जो प्रोग्राम है समुद्र तट के विकास को लेकर गुजरात ने, जहां पे सबसे ज्यादा लंबी कोस्ट लाइन है, सागर खेड़ू सर्वांगी विकास योजना जो 2007 में शुरू की गई, इसको आप कैसे देखते हैं, जिसमें लगभग 13,000 जो कोस्टल विलेजेस हैं वहां पर बिजली पहुंचाने की और उसको निर्बाध रूप से पहुंचाने की व्यवस्था पर बल दिया गया है?
0: देखिए, ये जो परियोजना है सागर काठा के तमाम जो जिले हैं जिसमें कच्छ, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़ और तमाम भावनगर, अहमदाबाद, ये सभी उसमें आते हैं। इन तमाम शहरों के साथ एक समस्या ये थी कि जो बुनियादी ढांचा है, चाहे वो बिजली की आपूर्ति हो या पीने के पानी की सतत आपूर्ति हो, इन तमाम मुद्दों पर जो सामुद्रिक क्षेत्र का विकास होता है, खारे पानी के प्रवेश को रोकना, एक गुजरात के तमाम बंदरगाहों के साथ एक समस्या ये है कि क्योंकि वहां पर हाई टाइड के साथ बहुत ज्यादा सिल्टिंग हो जाती है और जो गाद आ जाती है उसको निकालना बहुत मुश्किल होता है। बहुत पहले के समय में, आज से 1000 साल पहले भी, जब लोथल एक मानव निर्मित जब बंदरगाह बनाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता के समय, आज से 3000 साल पहले बल्कि
1: जी जी
0: उससे
1: जी
0: भी ज्यादा, तब भी यही समस्या आई थी कि बहुत सारी गाद जो है वो बंदरगाह और उसके रास्ते उस क्षेत्र के अंदर आ गई। तो खारे पानी के साथ साथ इन तमाम समस्याओं से निपटने के लिए इस योजना का की संकल्पना की गई और मूलभूत तौर से इसका उद्देश्य ये है कि जो लोग जो जनता इन बंदरगाहों के आसपास रहती है, जो इन बंदरगाहों से होने वाले व्यापार और इन

0: दरगाहों के सुचारू रूप से चलाने के लिए जिनकी जरूरत है, उनकी जो डेली लाइफ की जो आवश्यकताएं हैं उनको कैसे पूरा किया जा सके, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके लिए इंटरनल पीपल सेंट्रिक कनेक्टिविटी को कैसे जोड़ा जाए, उनके लिए पीने का पानी कैसे मुहैया कराया जाए और तमाम इन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, इसके लिए इस परियोजना को चलाया गया था। तो इसका फोकस बहुत ही लोकलाइज था, लेकिन इसका इम्पैक्ट मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि ये किसी भी बंदरगाह के लंबे समय तक और सुदृढ़ रूप से चलने के लिए बहुत आवश्यक है,
1: कह सकते हैं एक तरह से मॉडल है। और सागरमाला के तहत 11 जो फिशिंग हार्बर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके तहत 30,000 जो मछुआरे हैं उनको फायदा हुआ है, आपको लगता है ये भी बहुत होलसम होलिस्टिक अप्रोच है?
0: जी बिल्कुल। दुनिया के तमाम देश जिन्होंने बंदरगाहों का आधुनिकीकरण किया है और उनके विकास पर ध्यान दिया है, उन्होंने ये भी देखा है कि जो छोटे मछुआरे हैं, जो लोकल अर्थव्यवस्था है, वो बंदरगाहों पर जो निर्भर है या तटीय क्षेत्रों पर निर्भर है, उनको कैसे इस बंदरगाह के विकास में या पोर्टलेट डेवलपमेंट में से जोड़ा जा सके। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है, और ऐसे भी उदाहरण है दुनिया के तमाम बंदरगाहों के, जहां बहुत तेजी से विकास हुआ, बहुत तेजी से उनको डेवलप किया गया और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बंदरगाह बन गए, लेकिन जो जनता उससे जुड़ी हुई थी वो कहीं ना कहीं मार्जिनलाइज हो गई। इन तमाम सागरमाला के तहत इन तमाम जो जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे एक बड़ा उद्देश्य ये है कि जब हम आर्थिक प्रगति और आर्थिक विकास की बात कर रहे हैं, ज्यादा बड़े इंडस्ट्रियलाइजेशन और बहुत ज्यादा आयात और निर्यात की बात कर रहे हैं, तो हम आम जनता के कंसर्न्स और उनकी जरूरतों को कहीं पीछे ना छोड़ दें।
1: जी
0: तो ये एक बहुत ही होलिस्टिक, बहुत ही समेकित परियोजना है सागरमाला, और इसके तहत मुझे लगता है कि जनता विकास के साथ साथ आर्थिक प्रगति दोनों को जोड़ने की कोशिश की गई।
1: बिल्कुल। कॉमोडोर जोशी, अभी प्रोफेसर मिश्रा ने एक मेंशन किया लोथल जो गुजरात में, वहां पर जो नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि ये एंशंट जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वहां डॉकयार्ड था 4,500 वर्ष पुराना, तो ये जो हमारी एक हिस्ट्री है मैरिटाइम हिस्ट्री, उसके लिए आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा उसको शोकेस करने का और पूरे देश के गौरव के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है? कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा मैरिटाइम म्यूजियम होगा जब ये बन जाएगा तो।
2: जी सोलो जी, बिल्कुल सही आप दिशा में आपने जो बोला है, ये जो 4,500 साल पहले जब ये बनाया गया था, इसमें एक ड्राई डॉक भी होता था। तो मतलब आप सोचिए कि कितना एडवांस वो सिटी होगा जिसमें एक जहाजों को अंदर लाके ड्राई डॉकिंग की भी फैसिलिटी बनाई गई हुई थी। तो उस हिसाब से मैरीटाइम कल्चर जो बोलेंगे, या फिर इंडियन सिविलाइजेशन का या इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो मैरीटाइम कल्चर था,
1: जी
2: वो कहीं ना कहीं आज की डेट में हम सारे हमारे देश के लोगों को थोड़ा सा, हमें जानकारी नहीं है, हमें उस चीज का ज्ञान नहीं है। और मेरे ख्याल से जब ये नेशनल मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जब बन के पूरा हो जाएगा, ये दो फेजेज में बन रहा है और पहला फेज में फेज ए और फेज बी भी है, तो जब ये पूरा हो जाएगा मेरे ख्याल से ये एक बहुत ही आकर्षक जगह होने वाली है, जिसमें अपने आप में ये डेस्टिनेशन हो जाएगा कि आप लोग वहां पे जाएंगे और एक मैरीटाइम जो हेरिटेज है
1: जी
2: उसको कैसे हिंदुस्तान ने प्रिजर्व किया है, और आज पास्ट, आज की डेट में और फ्यूचर, ये तीनों कैसे इंटीग्रेट होके उस जगह पे दिखाए जाएंगे, ये मेरे ख्याल से जनसाधारण के लिए एक अच्छी परियोजना जो है वो स्थापित हुई है। और
1: जी
2: जब ये कंप्लीट हो जाएगी मेरे ख्याल से एक ये बहुत ही अच्छा, एक आप कह सकते हैं एक दर्शनीय स्थल हो जाएगा लोगों के लिए, वहां पे भी जाना बहुत आवश्यक हो जाएगा।
1: प्रोफेसर मिश्रा, आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? नेदरलैंड्स और वियतनाम के साथ मिलकर उनसे भी लिया जा रहा है टेक्निकल एडवाइस, तो कैसे देखते हैं आप इस प्रोजेक्ट को?
0: मुझे लगता है इसमें दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है, विकसित भारत 2047 में भारत को एक आर्थिक महाशक्ति ही नहीं बनना है, भारत को अपने जो इतिहास को प्रेजेंट करने में जो गलतियां की गई हैं उनको भी सुधारना है। तमाम तथाकथित इतिहासकार जो भारत के हैं और भारतीय इतिहास पर लिख चुके हैं, वो ये हमेशा से कहते आए हैं कि भारत कभी एक मैरिटाइम नेशन नहीं रहा है, ये तो एक कॉन्टिनेंटल देश रहा है जिसने कभी समुद्री यातायात या समुद्री सुरक्षा को ध्यान में नहीं रखा। इस नैरेटिव को एक सिरे से नकारने के लिए और इस डिबेट को पूरी तरह से ध्वस्त करने के लिए मुझे लगता है इस मैरिटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की स्थापना जरूरी थी। और क्योंकि ये इस बात को सामने रखता है कि आज से 5,000 साल पहले भी भारत एक समुद्री महाशक्ति था, भारत के पास उस समय की सबसे अत्याधुनिक तकनीक थी, जब हम अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक बड़ा स्थान रखते थे, हमने मानव निर्मित एक बंदरगाह बनाया जिसको आज फिर रिवाइव करने और उसको एक हेरिटेज कॉम्प्लेक्स में रखने की बात हो रही है। और इससे यह भी सिद्ध होता है कि लोथल जो कि अहमदाबाद शहर का हिस्सा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में कितना बड़ा उसका योगदान रहा है। और इसमें आपने जो बात कही नेदरलैंड्स और वियतनाम के

0: सहयोग किए। ये दोनों देश भी, वियतनाम और नीदरलैंड्स, दोनों ही देश ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़े पोर्ट्स को लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय
1: जी
0: समुद्री व्यापार को लेकर के वो हमेशा से ही बड़े एक्टर्स और बड़े प्लेयर्स रहे हैं। तो उनके साथ सहयोग मुझे लगता है इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम कलेक्टिवली अपनी जो हमारी जो साझा विरासत है उसको भी हम सामने लेकर के आए, और इस लिहाज से एक यूरोपीय देश और वियतनाम जो कि जिसकी अपनी 5,000 साल की एक ग्लोरियस उसका
1: हिस्ट्री
0: इतिहास
1: है।
0: है उसको भी सामने रखना बहुत जरूरी है।
1: तो कॉमोडोर जोशी, जैसा आप दोनों ने ही बताया कि कितना हमारा ग्लोरियस इतिहास है, मैरिटाइम इतिहास, उसको दर्शाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको लगता है कि बहुत होलिस्टिक अप्रोच है सरकार का कि विरासत का गौरव उसको बनाए रखना, साथ ही साथ जो मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 जिसकी बात अभी प्रोफेसर मिश्रा भी कर रहे थे, जिसमें 150 से ज्यादा पहले हैं, 3 से 3.5 लाख करोड़ रुपए की, और जिसमें पिछले वर्ष का लगभग 70,000 करोड़ रुपए का पैकेज शिप बिल्डिंग का भी शामिल है, और न सिर्फ ये मैरिटाइम अमृतकाल विजन भी 2047, उसको भी सरकार ने ऑलरेडी उसके बारे में सोचा है एक दूरगामी सोच के साथ। कितना आपको ये अप्रोच, कहें कि ऑलराउंड अप्रोच लगता है?
2: बिल्कुल, एक चौतरफा सोच मेरे को दिखती है पूरे इसमें, क्योंकि आप देखिए बंदरगाहों को डेवलप करना, कोस्टल कम्युनिटी को साथ में लेके चलना, जो प्रोफेसर साहब अभी बोल रहे थे कि कई बार मार्जिनलाइज हो जाती है जो लोकल लोग रहने वाले हैं,
1: जी
2: वो बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है लेकिन लोकल लोगों को उनकी सुविधाओं का, उनकी जरूरतों का थोड़ा सा ध्यान नहीं रख पाते हैं बहुत बार। लेकिन अगर आप देखें ये सारे के सारे जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे MIV के तहत हो, चाहे MAKV के तहत हो, या चाहे फिर सागरमाला के तहत हो, पांचवा जो पिलर है सागरमाला का
1: जी
2: वो है कोस्टल कम्युनिटी डेवलपमेंट का पिलर है। मतलब पूरा का पूरा एक फंडामेंटल पिलर यही बोल रहा है कि जो हमारी जो कोस्टल कम्युनिटीज है, नॉट सिर्फ पोर्ट में नहीं, सिर्फ बंदरगाहों में नहीं, पूरी कोस्ट में, उन सबको साथ में लेके हमको डेवलप करना है
1: जी
2: और उनका ध्यान जरूर रखना है। और उसके लिए अगर आप देखिए तो अगर डेवलपमेंट कोस्ट में हो रही है, पोर्ट्स पे हो रही है, तो जो सरकार ने इतना जो बजट आउटले किया हुआ है 3-3.5 लाख करोड़ रुपए का MIV के लिए और करीब करीब 80 लाख करोड़ रुपए का इसके लिए MAKV के लिए, तो ये सारा का सारा बजट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, पोर्टलेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो सागरमाला के तहत एक और पिलर माना जाता है, जिसमें इस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में कोस्टल इको जोन्स, कोस्टल इको यूनिट्स एंड साथ में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स बनेंगे, उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाई जाएंगी, और पोर्ट कनेक्टिविटी जो थोड़ी देर पहले जिक्र हुआ था कि कैसे की जाए, तो अभी जिक्र में यही आया कि इनलैंड वाटरवेज के थ्रू समझिए पोर्ट कनेक्टिविटी हो रही है, समझिए आपका जो नेशनल वाटरवे वन बन रहा है जो वाराणसी और हल्दिया को कनेक्ट कर रहा है, तो हिंटरलैंड जो इंडिया की है वो उनको एक जिसे बोलते हैं उनका दरवाजा खुल गया है समुद्री रास्ते के लिए, क्योंकि इनलैंड वाटरवेज बननी शुरू हो गई हैं। और वैसे ही अगर आप देखे हैं कुछ दिन पहले एक ट्रायल रन हुआ था एक वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर का, जिसमें एक कंटेनर ट्रेन चलाई गई थी जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से लेकर वडोदरा तक। तो अभी आप देख रहे कि मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट में हिंदुस्तान ने जो पहला कदम लिया है, पहला देश है जिसने एक बिजली की जो ट्रेन है उसमें डबल डेकर कंटेनर सिस्टम अपनाया है, बाकी
1: जी
2: पूरे दुनिया में सिंगल कंटेनर सिस्टम जाते हैं, मतलब एक के ऊपर एक दो कंटेनर नहीं रखे जाते हैं। तो ये जो ट्रेन गई है करीब मेरे को लगता है 300-350 कंटेनर यूनिट से लेके गई थी, काफी लंबी ट्रेन थी ये, और ये एक पायलट प्रोजेक्ट माना जा सकता है, और
1: जी
2: ये सारी चीजें इन तीन प्रोग्राम्स के तहत हो रही है। और अगर आप देखेंगे कि अपनी जो लोकल सिटीजन्स हैं, नागरिक हैं, उनकी जानकारी के लिए मैरिटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है,
1: बिल्कुल
2: सागर खेड़ू जो सर्वांगी विकास योजना थी गुजरात की वो
1: जी
2: एक मॉडल था, उसके हिसाब से पूरे देश में वो मॉडल अभी अडॉप्ट हो रहा है किसी ना किसी स्कीम में, और उसके बाद में जो पोर्ट्स बन रहे हैं, बड़े बड़े पोर्ट्स बन रहे हैं, इनफैक्ट वेंजम पोर्ट है, लेकिन अगर आप वाधवान पोर्ट देखें महाराष्ट्र में जो बन रहा है वो एक और पोर्ट है, गलातिया बे का जो पोर्ट है अभी वो तो बहुत ही स्ट्रेटेजिक पोर्ट माना जाएगा जो अंडमान में बना रहे हैं, जो करीब करीब सिर्फ 40 मील है मलाका स्टेट से। तो
1: जी
2: आप
1: जी
2: देखिए कि आप कैसे पूरा देश में हर जगह पे पूरी देश की पूरी जो लैंड मास है वो कवर हो रहा है, जो भूमि है देश की सब जगह कहीं ना कहीं मैरीटाइम डेवलपमेंट हो रही है, चौमुखी विकास लग रहा है मुझे।
1: जी बिल्कुल कॉमोडोर जोशी, प्रोफेसर मिश्रा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमारी समुद्री अर्थव्यवस्था

0: ताकि समग्र विकास से देश के आर्थिक सशक्तिकरण पर प्रकाश डालने के लिए।
1: धन्यवाद जी, शुक्रिया।
2: विशेष श्रृंखला जनसेवा से देश सेवा के 27वें संस्करण में आप सुन रहे थे परिचर्चा समुद्र बंदरगाह और नई आर्थिक शक्ति। इसमें भाग ले रहे थे रक्षा विश्लेषक कोमोडोर केडे जोशी और रणनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रही थी सोनू सूद।
3: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित विशेष श्रृंखला। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश की ओर।
4: हेलो फरमाइश।
5: हेलो फरमाइश।
6: हेलो फरमाइश
5: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर
6: जी। हेलो फरमाइश ईटानगर जी। सर नमस्ते।
5: नमस्ते
6: जी। जिला बदीसा तहसील लटेरी ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ
5: जी। हमारे नियमित श्रोता रवि केवड़ जी, आप तो गायब ही हो गए
6: जी। बिल्कुल सर, काफी दिन बाद क्या टाइम नहीं मिल पाता सर, तो इसलिए कम लगा पाते
5: हैं। जी जी जी जी, कोई बात नहीं, आप हमें याद करते हैं यही हमारे लिए काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद
6: जी। धन्यवाद सर, क्या है टाइम मिल जाता सर कॉल भी लगा लेते हैं।
5: हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, इसी तरह से प्यार बनाए रखे हमारे ऊपर
6: जी। बिल्कुल सर।
5: अभी कहाँ से कर रहे हो एमपी?
6: जी मैं इंदौर से कॉल कर रहा हूँ।
5: अच्छा, इंदौर से कॉल कर,
6: ड्यूटी पे हूँ सर।
5: अरे वाह, क्या बात है, ड्यूटी पे होते हुए भी आप हमें याद करते हैं
6: जी। बिल्कुल जी सर।
5: तो चलिए कहिए, आज कौन सा फिल्म का गाना हम आपको सुनाएं?
6: आज सर आपकी पसंद का रहेगा गाना सर।
5: मेरी पसंद का?
6: हाँ जी बिल्कुल।
5: ओके जी, जरूर सुनाऊंगा और आशा करना हूँ कि मेरी पसंद आपको जरूर पसंद आएगी
6: जी। कुछ दोस्तों के नाम ले दूं सर?
5: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी,
6: पहले नंबर रहेगा गाना आपका, आपके लिए
5: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
6: जिसके वो दोस्त हैं हमारे प्रदीप साहू जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, उदिता विश्वकर्मा जी हैं, सुजीता विश्वकर्मा जी हैं, और संतोष राव जी हैं, और शिवा भाई हैं, और भानु महपिल जी हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए रहेगा सर।
5: ओके तो रवि जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके पसंद का गाना, नहीं आपके पसंद का नहीं, मेरे पसंद का गाना आपको सुना रहे हैं
6: जी। थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर में हम आपका स्वागत करते हैं।
1: बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को प्रोग्राम में शामिल किया।
0: जी आप कॉल करेंगे।
1: पहले दुर्गा पूजा का ढेर सारी बधाई आपको और ईटानगर का पूरे टीम को और सुनने वाली सारी सुबह।
0: जी जी, हमारी ओर से भी आपको और आपके परिवार वालों को दुर्गा पूजा की शुभेच्छा, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: और मैं दुर्गा देवी से प्रार्थना करता हूँ, दुर्गा देवी सारे लोगों को सुख शांति से भर दे।
0: जी, और अपना परिचय हो जाए पहले।
1: मैं आशुतोष दत्तनाथ त्रिपुरा से बोल रहा हूँ।
0: जी, हमारे नियमित श्रोता आशुतोष माता के दर्शन।
1: और एक प्रार्थना करता हूँ कि बाकी एक दो दिन रह गया है, बारिश ना हो, मौसम अच्छा हो।
0: ओके, हाँ जी, मौसम अच्छा हो तो लोग घूमने फिरने भी जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे, माता जी के दर्शन करेंगे। जी हाँ जी। और आपका घर के पास है क्या पंडाल या फिर दूर में?
1: हमारा घर से 1.5 किलोमीटर दूर है।
0: अच्छा।
1: हमारा कैलाशर का सबसे बड़ा पंडाल।
0: ओके ओके।
1: 1,00,000।
0: ओहो,
1: सबसे
0: क्या बात।
1: बड़ा पैंडल।
0: हाँ जी।
1: और थीम है गुजरात का थीम सोमनाथ टेम्पल।
0: अच्छा, क्या बात है।
1: और सारे ये लाइटिंग पैंडल और मूर्ति बनाने वाले सारे वेस्ट बंगाल का ही है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी,
1: लोकल का बिल्कुल हाई नहीं।
0: ओके, क्या बात है जी। हमारे यहाँ पे भी वेस्ट बंगाल से ही आते हैं कारीगर लोग, पंडाल वगैरह बनाते हैं। जी, तो वैसे अभी तो यहाँ फिलहाल शुरू नहीं हुआ है पूजा, पंडाल बनना शुरू हो गया है।
1: जी जी
0: जी जी, जी तो इस बहुत ही पवित्र समय में आप कौन सा फिल्म का गाना सुनना चाहेंगे?
1: तो सर जी, इसलिए मैं देवी का एक गाना सुनना चाहता हूँ।
0: अच्छा जी, हाँ जरूर सुनाएंगे।
1: 1986 में रिलीज हुआ फिल्म का नाम है सड़क से सुंदर।
0: ओके।
1: और गाने का बोल है, देवी माता रानी तूने सबको जानी, किशोरदा और लता जी ने गाया इसका।
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। और किन साथियों के साथ?
1: गाने को लिखा है मशहूर लिरिक्स आनंद बख्शी जी ने और सुर से साजा लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी।
0: ओके जी जी।
1: और सर जी, आपका इजाजत हो तो मैं दो चार दोस्तों को याद
0: जी
1: करता
0: जी बिल्कुल बिल्कुल याद कीजिए। हाँ जी,
1: पहले आपको सुनाना चाहता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और आसाम से है अमल बिमल भस्मचारी और है प्रेमजी चक्रवर्ती, और त्रिपुरा से अविनाश तेली जी, और मध्य प्रदेश से भगवान सिंह परमार, प्रेम सिंह सिसोदिया और रमेश प्रजापति, राम बाबू शर्मा, केसरी सिंह राजपूत, मेरे धर्म पत्नी संगीता देवलप, भाई कुन मुंडा और नेटवर्क का सारे श्रोताओं को लेकर सुनना है।
0: ओके।
1: तो आपने भालो था।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो फरमाइश।
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश, ईटानगर।
1: नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। मैं हाइलाकांदी डिस्ट्रिक्ट बनीवी से बात कर रहा हूँ, बापन आचार्य।
0: बापोन आचार्य, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो गायब ही हो गए हेलो फरमाइश
1: नहीं सर, नहीं, ऐसा मत बोलिए, क्योंकि
0: से।
1: थोड़ा बिजी रहता हूँ ना काम
0: ओके,
1: से, इसलिए मतलब वक्त नहीं मिलता है, लेकिन याद हमेशा आता है।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: लेकिन
0: आप
1: प्रोग्राम सुनता हूँ, आपकी आवाज को भी सुनता हूँ। आपकी आवाज है ना, वो मेरे दिल में ना, दिल में बसता है।
0: अरे वाह, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और अभी तो दुर्गा माता का पूजा शुरू होने वाला है, मतलब
0: जी जी जी हाँ जी
1: 3 दिन का इंतजार है, और अभी तो नवरात्रि चल रहा है।
0: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल।
1: तो आपको और आपका परिवार को मैं दुर्गा पूजा का हार्दिक शुभकामना है। ये 4-5 दिन बहुत अच्छी तरह से आपका काटे, खूब ही मतलब खूब इंजॉय ये 4-5 दिन रहेगा हम लोगों के बीच में।
0: जी जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी हम बहुत सारी शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा खुशहाल रहे और भला चंगा रहे।
1: हाँ जी। तो
0: जी
1: सर आप कैसे हैं?
0: मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो।
1: जी मैं भी ठीक हूँ, और मैं भी अभी मतलब काम कर रहा हूँ, दुर्गा माता
0: अच्छा
1: का मूर्ति का रंग कर रहा हूँ, कलर
0: अच्छा
1: कर रहा
0: अच्छा
1: हूँ।
0: अरे वाह वाह, क्या बात है। जी जी जी
1: जी इसलिए।
0: आप मूर्ति कारीगर हैं।
1: हाँ जी हाँ जी
0: ओके, वाह वाह, क्या बात है। तब तो आपके वहां से हमारे यहाँ पे भी मूर्ति आता होगा।
1: हाँ जी हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी
1: हाँ जी। तो अभी यहाँ का मौसम कैसा है?
0: हाँ, अभी बढ़िया है मौसम। सुबह शाम ठंडी होती है, दिन को थोड़ा गर्म होता है।
1: हमारे यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा ठंड मतलब है, लेकिन गर्मी अब तक कमा नहीं है, जैसा
0: ओके
1: है वैसा ही है।
0: अच्छा, जी, हमारे यहाँ पे थोड़ा
1: लेकिन
0: कम
1: सुबह
0: हुआ है।
1: शाम थोड़ा थोड़ा ठंड लगता है,
0: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
1: और
0: जी
1: दिन में मतलब पूरा गर्मी है।
0: ओके, ठंडी का मौसम आ ही रहा है।
1: हाँ आ रहा
0: जी
1: है।
0: जी जी हाँ जी
1: आज गाना सुनना चाहता हूँ,
0: हाँ जी बिल्कुल।
1: आंदोलन मूवी से गाना सुना दीजिए, नजर में तू जिगर में तू,
0: नजर में तू जिगर में तू, जी हाँ
1: जहाँ
0: जरूर सुनाएं।
1: देखूँ वहाँ है तू।
0: ओ क्या बात है, जी जी
1: नहीं मतलब दिल कर रहा है ना इस गाने के
0: हाँ
1: सुनने के लिए।
0: हाँ हाँ जरूर सुनाएंगे, क्यों नहीं।
1: और मैं कुछ दोस्तों को डेडिकेट करना चाह रहा
0: हाँ
1: हूँ।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: पहले मेरा बहुत मतलब क्या बोलूँ, मेरा दिल के धड़कन है वो केसार जी के लिए,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: और भाभी जी के लिए भी।
0: ओके, क्या बात है जी, मैं जरूर बताऊंगा उनको।
1: और अनुप अनुप कुमार है, और सुतपा भट्टाचार्य है, सिंधु दास है, और देवजीत दास है, और अभी सुनने वाले सारी श्रोताओं के लिए।
0: तो आगे भी हमसे जुड़ते रहिए।
1: हाँ जी हाँ जी हाँ जी
0: ओके, तो पापोंदा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: जी नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: जी धन्यवाद। प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा, तहसील नागदा, जिला उज्जैन से।
0: जी प्रेम सिंह सिसोदिया जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: जी धन्यवाद सर, मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए आप कैसे हो?
0: जी मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: जी अभी हमने आपको खेत से कॉल लगाया है, अभी हमारे
0: अच्छा,
1: यहाँ पे सिंचाई शुरू हो गई है।
0: ओके, क्या बात है, खेत से ही आप कॉल कर रहे हैं हमें।
1: हाँ बिल्कुल, मटर की
0: जी
1: फसल लगाई है हमने,
0: ओके,
1: लहसुन
0: तो
1: भी लगाया है और गेहूं भी लगाया है।
0: ओके, तो बहुत ही सुंदर नजारा होगा, चारों ओर हरियाली।
1: हाँ बस
0: और जी, आसपास पेड़ वगैरह होगा शायद।
1: हाँ बिल्कुल, चारों तरफ पेड़ है, पेड़ के खेत जो मेड़ है
0: अच्छा जी,
1: उनमें छोटे बड़े पौधे भी लगा रखे हैं,
0: हाँ
1: ऑरेंज के
0: जी
1: बगीचे भी हैं, मतलब
0: जी
1: हरियाली तो चारों तरफ
0: हाँ
1: छाई हुई
0: जी
1: है। और साथ में किसी के यहाँ पे ट्यूबवेल चल रहा है, किसी के यहाँ के कुएं की मोटर चल रही है, कुछ लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं, मतलब बड़ा सुंदर नजारा लग रहा
0: जी
1: है।
0: जी जी जी इसी सुंदर नजारे की मैं बात कर रहा था, और हरियाली की भी। जी
1: जी
0: बहुत
1: बिल्कुल।
0: ही, मतलब मन
1: और
0: खुश हो जाता
1: एक अभी
0: होगा।
1: हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने हमारे लिए किसानों के लिए काफी अच्छी सुविधा कर दी गई है, क्योंकि पहले लाइट रात में भी मिलती थी 4 घंटे के लिए,
0: अच्छा,
1: लेकिन इस टाइम बना रहे हैं कि दिन दिन में ही लाइट मिलेगी, पूरे दिन 10 घंटे के लिए।
0: अरे वाह, क्या बात है जी।
1: इससे सिंचाई करने में काफी फायदा होगा
0: हाँ जी हाँ
1: और
0: जी
1: हमें रात देर रात मतलब भटकना नहीं पड़ेगा।
0: जी जी जी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबों की ओर
1: हाँ
0: से
1: जी
0: हम कहना
1: बिल्कुल।
0: चाहेंगे। जी
1: और सभी का मतलब हमारे जो मध्य प्रदेश सरकार है ना, वो काफी मतलब एक्टिव है, सभी का बहुत ध्यान रखते हैं, छोटे से लेके अगर बड़े काश्तकार हुए या जो थोड़े गरीब परिवर्तित लोग आते हैं उनके लिए भी काफी सुविधा कर रखी है, रास्ते काफी चौड़े हैं हमारे यहाँ पे, हर तरह की मतलब सुविधा उपलब्ध है पूरे मध्य प्रदेश में।
0: क्या बात है,
1: जी
0: जानकर बहुत ही अच्छा लगा। हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है
1: हाँ
0: जी।
1: जी बिल्कुल। अभी तो ऐसा आपको बताएंगे पूरे हिंदुस्तान में सभी सरकार जितनी भी है मिलके मतलब पूरे हिंदुस्तान को ऐसा फिर से सोने की चिड़िया बनाने की पूरी कोशिश कर
0: जी
1: रहे
0: जी जी
1: हैं।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल, सोने की चिड़िया।
1: इसमें सभी का साथ है, किसानों का साथ है, बॉर्डर पे जवानों का साथ में साथ है, शहर में जितने भी लोग काम करते हैं उनका साथ है, मतलब हर एक कंधे से कंधे मिलाकर सभी लोग चल रहे हैं, तभी तो हमारा देश आगे बढ़ रहा है।
0: जी, मिलजुल कर काम करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: ओके, तो आज
1: तो आप
0: कहिए।
1: फिर चांदनी फिल्म का गीत सुनवा दीजिएगा, तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत मितवा।
0: ओके, बहुत ही प्यारा गीत चुना है आपने, और किन साथियों को
1: हाँ
0: सुनाना
1: जी,
0: चाहेंगे?
1: लोकेंद्र वर्मा, भगवान सिंह परमार, केसरी सिंह राजपूत, सुनील झा, रमेश तेवर के साथ में ये गाना सुनना चाहेंगे।
0: ओके, तो कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, सुनते हैं आपके पसंद का
1: जी
0: गाना।
1: धन्यवाद, मुझे आपसे बात

0: हेलो बागरा जी, नमस्ते।
1: नमस्ते। हेलो, फरमाइश में आपका हम स्वागत करते हैं।
0: मैं रमेश पात्रो गुलाघाट आसाम से बात कर रहा हूँ।
1: जी रमेश पात्रो जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए, कैसे हो आप?
0: मैं तो बढ़िया हूँ, और आप कैसे हैं?
1: जी रमेश जी, मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
0: अच्छा,
1: जी
0: और आपको और मेरे सब साथी श्रोता को नवरात्रि की अनेक अनेक शुभेच्छा ज्ञापन करता हूँ।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी ओर से भी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत शुभेच्छा नवरात्रि की।
0: हाँ,
1: और कैसा मनाया जा रहा है आपके वहाँ पे?
0: नवरात्रि अब शुरू हो गया, दुर्गा पूजा में शेष होगा।
1: ओके जी। आपके
0: उधर
1: घर के पास ही पंडाल है या फिर कुछ
0: हाँ
1: दूर?
0: हाँ घर के पास ही पेंडल है,
1: अच्छा, बाबा क्या
0: रोज
1: बात है।
0: शाम को पूजा अर्चना होता है वहाँ।
1: ओके, तो यही प्रार्थना करते हैं कि माँ दुर्गा हम सभी को अच्छी आशीष दे।
0: आशीष दे।
1: जी। तो कहिए रमेश जी, आज कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
0: मैं सुनना चाहता हूँ, हर दिल में रब बसता सबसे बड़ा खिलाड़ी, मूवी का ये गाना है।
1: ओके, सबसे बड़ा खिलाड़ी। जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ आप सुनना चाहेंगे?
0: पहले डेडिकेशन रहेगा आपको,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: मेरा मेरा श्रीमती है रोनू पात्र, पुती है लाकी, और उधर है अमल बसुमतारी, भाईकोन मुंडा, विमल बसुमतारी, जोगेंद्र रंगपी, सुनीता बसुमतारी, देवाशीष हजारिका, हेलो प्रोमाइस एकता ग्रुप से है भगवान सिंह परमार, पूरन वर्मा, धर्मवीर, राकेश, शिवा लोहार जी, रमेश प्रजापति और तनुश्री बिटिया, प्रेमजीत चक्रवर्ती और प्रेम सिंह सिसोदिया और सभी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी नमस्कार। हेलो फरमाइश ईटानगर।
1: नमस्कार सर, मैं अमल बात कर रहा हूँ आसाम से।
0: जी अमल जी, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: जी बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा है सर।
0: काफी दिनों के बाद आपने कॉल लगाया।
1: जी जी जी जी जी
0: जी चलिए।
1: और आप कैसे हैं बताओ थोड़ा।
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: अच्छा अच्छा
0: जी
1: अच्छा, उधर नवरात्रि की कुछ कैसे चल रहा है? नवरात्रि के
0: हाँ हाँ जी
1: अवसर मनाता है कि नहीं उत्तर अरुणाचल में?
0: हाँ हाँ अरुणाचल में मनाते हैं, क्यों नहीं। बहुत सारा मंदिर है और पंडाल भी अभी शुरू हो रहा है। जी और आपके वहाँ
1: हमारे
0: शुरू हो
1: आसाम
0: गया?
1: पर भी मनाता है नवरात्रि, लेकिन कहीं कहीं जगह पे नहीं है। हमारा ये पूरे दुर्गा पूजा होने के बाद उधर बेलबर्न में हमारा जो पूजा मेन पूजा में है हमारा ज्यादा पालन करते है इधर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा मेन पूजा में ना।
1: हाँ
0: जी हमारे यहाँ पे भी वैसा ही है जी। 17 या 18 तारीख को जो मेन पूजा होगा उसी में हम लोग जाते
1: जी
0: हैं।
1: जी जी जी
0: हाँ जी, तो कहिए कहाँ से बोल रहे हैं अभी, घर से या
1: मैं
0: फिर
1: अभी घर
0: खेत?
1: पे हूँ
0: अच्छा
1: और थोड़ी देर बाद में बाजार जाना है।
0: अच्छा कुछ मार्केटिंग करना है?
1: हाँ,
0: ओके।
1: कुछ दोस्त आने वाले हैं।
0: ओहो क्या बात है, कोई पार्टी है क्या?
1: हाँ, वो तो कंपनी में रह के आज पहुंचेगी घर,
0: अच्छा
1: तो सीधे
0: अच्छा
1: मेरे घर में आना चाहता है वो।
0: ओ क्या बात है, क्या बात है, आपके दोस्त।
1: हाँ, मेरे दोस्त हैं।
0: ओके
1: वो मुंबई में काम करते थे,
0: अच्छा
1: 2 सालों के बाद आज घर में आ रहा है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा 2 साल के बाद।
1: हाँ, दो
0: ओके।
1: साल उनके साथ कभी भी से देखा नहीं हो रहा है
0: अच्छा
1: तो।
0: अच्छा ओके, तो आज तो जमकर पार्टी होगी ना,
1: जी
0: बढ़िया
1: जी
0: पार्टी
1: जी
0: होगा।
1: हाँ हाँ
0: जी
1: रात
0: जी जी
1: को।
0: ओके, तो आप अपने दोस्त को जरूर डेडिकेट करना चाहेंगे कोई अच्छा सा गीत?
1: जी, उनका नाम है गौतम बसुमतारी है।
0: ओके जी,
1: जी जी जी
0: और कौन सा गाना आप डेडिकेट करना चाहेंगे आज?
1: उदित नारायण की आवाज में ये सिलसिले मुलाकात है ऐसा गाना है, उसको सुना दीजिए।
0: ओके हाँ जी जरूर सुनाएंगे। और
1: और मैं सबसे पहले हमारे इस गाने को हेलो फरमाइश प्रोग्राम के निर्माता हमारे सबसे अच्छे दोस्त बोके बागरा सार के लिए डेडिकेट करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। आप दोस्त भी कहते हो फिर सर भी कहते हो, दोस्त ही कहो अच्छा
1: जी जी जी हमारे दोस्त
0: लगता
1: होते भी लेकिन सार कह सकता है, लेकिन हमारे से बहुत
0: है।
1: सीनियर है ना आप।
0: जी
1: बहुत
0: हाँ
1: अच्छे
0: वो
1: तरह से हमको गाना सुनाते हैं और अच्छे अच्छे बात सुनाता है इधर
0: जी।
1: उधर की, जैसे खबरा हमारे साथ मिलते रहते हैं,
0: जी जी जी जी
1: बहुत अच्छा लगता है।
0: ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी
1: और मेरे दोस्त रहेगा भाईकोन मुंडा, रमेश पत्रो, बिमल बसुमतारी, गागे रभा, संजय मुंडा और सुनीता बसुमतारी, दिया बसुमतारी और देवाशीष हजुरिका है।

0: और पांचीराम शर्मा, पुष्करनाथ शर्मा और है रिंकू दीदी, स्वाति है, दीपाली, तानुश्री, इन सबको डेडिकेट रहेगा सर। और कंचन हजोंग और हमारे आसाम से है स्वरत द्वारा, नीलोत्पल द्वारा, उन लोग को भी डेडिकेट रहेगा। और हमारे ईटानगर के हमारे अरुण एफएम के आरजे जिसका नाम है करगेरेवा, और हमारे सबसे प्यारे आरजे आरजे दंपक, उनको भी डेडिकेट रहेगा। और सभी अरुण एफएम के सभी इंजीनियरों को, सभी आरजे को डेडिकेट रहेगा।
1: ओके तो अमल जी, गौतम बसुमतारी को हमारी ओर से हेलो कहिएगा जी। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर, मैं चिरमिरी कुरासिया कालरी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी इंद्रभान सिंह जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनाइए कैसे हो आप?
1: ठीक है सर, सबसे पहले आपको नवरात्रि, दुर्गा पूजा, दशहरा, आने वाली दीपावली और छठ पूजा की ढेर ढेर हार्दिक शुभकामनाएं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद, हमारी ओर से भी आपको और आपके परिवार वालों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आज मैं सर अपने पसंद की गीत बताता हूँ। फिल्म का नाम है, नाम तो उटपटांग है सर, लेकिन गाना जबरदस्त इसमें।
0: अच्छा,
1: फिल्म का नाम है चंडाल, इसमें गाना है तू है लड़की तीखी मिर्ची दिल्ली बाजार की, गायक है अभिजीत। ये मेरे को लगता है मिथुन चक्रवर्ती जी का फिल्म का गाना है।
0: जी जी जरूर सुनाइए।
1: सबसे पहले गीत आपको, केंद्रीय निर्देशक साहब को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोता को और आकाशवाणी विद्यानगर में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजन को, रिश्तेदारों को, आपके दोस्तों को, सभी उद्घोषक भाई बहनों को, स्टाफ कर्मचारियों को, हेलो एक्टर रेडियो प्रभावित ग्रुप में जुड़े श्रोताओं को, इंस्टाग्राम में जुड़े सभी श्रोताओं को, पूरे भारत राष्ट्र श्रोताओं को जुड़े कर रहा हूँ सर। मंगलवार को 7:30 बजे और रात को 8 बजे, शनिवार को 1:15 पर होगा। पसंद सर, तीनों टाइम सुना दीजिएगा।
0: ओके जरूर सुनाएंगे। दरभंगा से कॉल करने के लिए बहुत

0: हेलो
1: नमस्कार, हेलो फरमाइश
0: जी।
1: ईटानगर।
0: हेलो फरमाइश
1: जी
0: आकाशवाणी ईटानगर के सब दीवाने और दीवानियों को, यानी कि अनुप कुमार भट्टाचार्य का सब प्रेम नमस्कार,
1: सब
0: सत
1: प्रेम
0: श्री अकाल,
1: नमस्कार।
0: सलाम अलैकुम, राधे राधे, है ना।
1: राधे राधे अनुप जी, कॉल करने के लिए
0: अरे
1: बहुत बहुत
0: बहुत
1: धन्यवाद।
0: मशक्कत करना पड़ता है अभी ईटानगर में फोन लगाने में, है
1: जी,
0: ना।
1: काफी लोग कॉल
0: मतलब
1: करते हैं ना। हाँ जी।
0: जी, मतलब मैं तो एकदम क्या कहूँ, बाकी निराश हो गया था,
1: अरे अरे, ऐसा मत कहिए
0: लेकिन
1: अनुप जी, ऐसा मत कहिए।
0: भगवान की कृपा से, शिव बाबा जी के कृपा से मेरा फोन अभी लग गया, आपने उठा
1: जी
0: लिया, है
1: जी जी
0: ना।
1: जी जरूर जरूर। हाँ जी।
0: तो मैंने कुछ लोग लगा रखे हैं पीठ पीछे बात करने के लिए,
1: अच्छा
0: पगार कुछ नहीं है उनकी, पर काम बड़ी ईमानदारी से करते हैं, है ना।
1: क्या बात है।
0: जी, इसलिए इस प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: पहले आपको जगत जननी श्री श्री दुर्गा माया की आशीर्वाद सबका पर बरसित हो, ये मेरा कामना है,
1: जी।
0: और सब लोग अच्छे फूले फूले रहे, ये माँ जगत जननी से मेरा दुआ है
1: जी
0: ना।
1: जी जी हमारी ओर से भी माँ से यही प्रार्थना है। जी
0: जी। तो चलिए आज इस प्लेटफॉर्म में गाने का लुत्फ उठाना चाहता हूँ।
1: हाँ जी
0: फिल्म का नाम है शतरंज
1: ओके।
0: और गाने का बोले से

0: गाने
1: वाह वाह वाह जी जी जी बहुत ही बढ़िया गाना है।
0: कुछ दोस्तों को मैं याद करता हूँ
1: जी बिल्कुल हाँ जी।
0: पहले है डेडिकेशन गोज टू पहले हमारे बहुत बहुत अच्छे दोस्त है जिसका जिनका नाम है बोके वागेरा,
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: और कविता जी नूरी मैडम के लिए, और लुकेंद्र वर्मा जी फ्रॉम उज्जैन मध्य प्रदेश, अमर सिंह साहू जी काश्मीर से, पुरुषोत्तम कुमार जी, श्रीकांत जोशी जी, बसंतीलाल सूर्यवंशी जी, और है हमारे दिलीप पाहुचा जी के लिए, और है हमारे सहधर्मिणी सुप्पा भट्टाचार्य, विजय सिंह लखेरा, और है हमारे पापन दास के लिए, और प्रेमजीत चक्रवर्ती आसम से। सब लिए बातचीत को यही पे विराम देता हूँ। बहरहाल आप अच्छे रहिए, हमारे श्रोता भाई बहन अच्छे रहे, ये हमारा प्रार्थना है।
1: जी जनाब, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सर। मैं सर अहमदगढ़ मंडी पंजाब से मोहम्मद अनवर अंसारी बोलता हूँ सर।
0: जी अनवर साहब, कैसे हो आप?
1: बहुत अच्छा सर, मेरे को पहली बार कॉल लगी है, बहुत इंतजार रहता था अभी सोमवार कब आएगा तो कब कॉल करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है ईटानगर में कॉल करके।
0: जी आप पहली बार कॉल कर रहे, तो हम आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
1: थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद
0: जी। और आशा करते हैं आगे भी आप जुड़ते रहेंगे हमसे।
1: बिल्कुल जी, बिल्कुल सर
0: जी। अनवर साहब कुछ बताइए अपने बारे में, क्या करते हैं आप?
1: सर मेरी हेयर सैलून की शॉप है, मेरे को शौक है रेडियो सुनने का, मैं ऐप के जरिए रेडियो सुनता हूँ सर, और MP3 लगा रखा है, मैं 4 स्पीकर उसके सर ऐप के जरिए हम रेडियो के प्रोग्राम सुनते हैं सर।
0: क्या बात है, क्या बात है। आप अपने ग्राहकों को गाना भी सुनाते हैं और उनके बाल भी?
1: हाँ जी, हाँ जी, गाना भी सुनाते हैं और साथ साथ में आप से बात कर रहा हूँ और चाय चाय का भी आनंद ले रहा हूँ सर।
0: अच्छा, क्या बात है, चाय का नाम सुनते ही मेरे भी अंदर में चाय पीने की जिज्ञासा जाग गई है।
1: अगर आप आए तो पंजाब में गिड़ा लगा तो आपको पंजाब की चाय बहुत बढ़िया पिलाएंगे सर।
0: ओके जी, कभी जरूर आएंगे, कोशिश करेंगे आने के, आने से आपसे जरूर मुलाकात होगी।
1: जी सर।
0: तो अनवर साहब कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर जी हमारे को प्रेम रोग का फिल्म का गीत सुना दीजिए। हाँ जी, बबरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार, हमारा तो फूल नगर रेडियो काशमन ले गया।
0: क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। और किन साथियों को सुनाना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर जी हम अपने परिवार के साथ सुनेंगे, अपने रवीना, रजिया सुल्ताना और मोहम्मद जावेद आफिया सना सना के साथ।
0: ओके, तो अनवर साहब कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको और आपके पास
1: थैंक यू, धन्यवाद।
0: जी जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश। ईटानगर
1: मैं कछार से बोल रहा हूँ सर, जवाहरलाल वर्मन।
0: जी, जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हो आप?
1: आपको धन्यवाद सर। मैं ऊपर के दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ सर। और अभी फोन लग गया तो वो तो अच्छा लगता है, क्योंकि 11 बजे से ट्राई किया मैंने तो इतना बिजी बिजी,
0: जी।
1: तो भगवान की कृपा से फोन लग गया।
0: जी, फोन लग गया और आपसे बात हो रही है, हमें भी बहुत ही अच्छा लग रहा है
1: हाँ सर, हाँ
0: जी।
1: सर
0: और दुर्गा पूजा की तैयारी कैसे चल रही है?
1: जी हाँ, धूमधाम से चल रहा है। गांव में पूजा हो रहा है, पेंडल का काम तो चल रहा है,
0: अच्छा।
1: और पूजा के लिए वो भी कुछ सफाई काम वो मंदिर में चल रहा है। तो
0: आपके घर के पास है क्या पंडाल या दूर है?
1: नजीक में है सर।
0: नजदीक में ही है ना?
1: हाँ
0: ओके जी, तो सुबह
1: दूर
0: शाम
1: है
0: जाके पूजा कर सकते हैं
1: जी हाँ, जी हाँ।
0: जी। ओके, तो आज कहिए जवाहरलाल जी, कौन सा फिल्म का गीत हम आपको सुनाएं?
1: आज मुझे सुना दीजिए। ईशाम मसेतनी मदहोश किए जाए मुझे डोर, कोई खींचे तेरे ओर ले जाए। ये गाना सुनेंगे
0: वाह
1: कटे
0: वाह वाह
1: पतंग
0: वाह
1: फिल्म से।
0: जी, बहुत ही बढ़िया गाना जी।
1: जी हाँ, राजेश खन्ना जी ने अभिनय किया है, और इस गीत को लिखा है संगीत जगत का महान गीतकार आनंद बख्शी जी ने, और सुर में सजाए है महान संगीतकार राहुल देव बर्मन जी ने। और ये गाना मुझे डेडिकेट करना चाहता हूँ सर, पहले तो आपके त्रिपुरा
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: से है आशुतोष देवनाथ भाई प्रमोदजीत चक्रवर्ती है, और अविनाश भैया है, और श्री विजयपुरम से सप्तमी कुंडू जी सर।
0: ओके जी, तो जवाहरलाल जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: हाँ, थैंक यू सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: श्रोता अभी आप सुन रहे थे आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम हेलो फरमाइश। आइए इस बार आपको लिए चलते हैं कुछ पाश्चात्य संगीतों की ओर। आइए आनंद लेते हैं कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज का।

0: That is all for today, listeners. I hope you all enjoyed the songs today and that you'll catch us back tomorrow only on Akashvani Itanaka. This was your host Sam, signing off for the day. Goodbye.
1: Arunachal Christian Women Forum, यानी कि ACWF, अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आपका पसंदीदा कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस बार आपको लिए चलते हैं कार्यक्रम भूले बिशरे गीत की ओर, जहां हम आनंद लेंगे कुछ पुराने हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: बड़ी सुरक्षा है।
1: HIV संक्रमित खून, असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित सुई सिरिंज और माँ से बच्चे तक फैल सकता है।
0: लेकिन याद रखें, साथ बैठने, हाथ मिलाने, गले लगाने, साथ खाने या मच्छर के काटने से HIV नहीं फैलता।
1: HIV की जांच कराएं, समय पर पता चले तो इलाज से स्वस्थ और लंबा जीवन जिया जा सकता है।
0: HIV से डरे नहीं, जानकारी बढ़ाएं, जांच कराएं, भेदभाव मिटाएं।
1: अधिक जानकारी के लिए नेशनल एड्स हेल्पलाइन 1097 पर कॉल करें। अरुणाचल प्रदेश स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी DHS नाहरलगुन द्वारा जनहित में जारी।
2: अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम यानी कि ACWF अपना फर्स्ट एवर स्टेट लेवल सेमिनार आयोजित करने जा रहा है, जो होगा क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक, यानी कि 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। इस सेमिनार के रिसोर्स पर्सन होंगे श्री जेम्स तेचीतारा, प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम कम प्रेसिडेंट NBCC, एवेंजेलिस्ट गुमदे रिबा सोंगथिंग और एडवोकेट नाबम रामा, गुवाहाटी हाई कोर्ट, ईटानगर बेंच। अरुणाचल क्रिश्चियन विमेन फोरम अरुणाचल प्रदेश के सभी विमेन हेड्स ऑफ डिनोमिनेशंस, हेड्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिनोमिनेशंस, विमेन लीडर्स को इस सेमिनार में सादर आमंत्रित करते हैं। याद रखें, जगह है क्रिश्चियन रिवाइवल चर्च, ESS सेक्टर, ईटानगर, नियर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, और तारीख है 16 अक्टूबर से 18 अक्टूबर 2026 तक। धन्यवाद।

0: श्रोता बताना चाहेंगे आपको कि आपने आनंद लिया इस गीत का कश्मीर की कली फिल्म से आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में।
1: एचआईवी के बारे में सही जानकारी ही सबसे

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Arkemis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: श्रोता, लव इन टोक्यो फिल्म के गीत के साथ ही कार्यक्रम भूले बिछड़े गीत यहीं पर समाप्त होता है। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम प्रसारण है, जिसे आप सुन रहे हैं 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। बताना चाहेंगे आपको कि इस वक्त स्टूडियो के घड़ी के अनुसार 9:30 होने जा रहे हैं और इसी के साथ ही हमारी आज की अरुण एफएम प्रसारण सभा की समापन यहीं पर होती है। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इसी तरह के ढेरों मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक कार्यक्रमों के साथ हम फिर हाजिर होंगे कल सुबह 5:48 पर। तब तक के लिए स्टूडियो तथा अरुण एफएम ट्रांसमीटर में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक गैर एत तथा तकनीकी अभियंता तानातुम के साथ मुझे यानी कि आपकी दोस्त आपकी आरजे मंजू पामो को दीजिए इजाजत। लेकिन हाँ, कार्यक्रमों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, जिसके लिए आपको सीधा लिए चलेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र के एफएम गोल्ड पर। धन्यवाद।
1: This is Akashvani. In the program Money Talk, now we bring you a discussion on National Steel Policy Vision 2047. The participants are S.P. Sharma, Economic Analyst, and Rajesh Lake, Anchor.
2: Good evening and welcome to Money Talk. Today we turn our attention on one of the most ambitious industrial roadmaps in the country, the National Steel Policy Vision 2047. Steel is not merely a commodity. It is the backbone of highways, railways, housing, defense, renewable energy and manufacturing. To help us understand what this means for industry, investment and the climate, we are joined by Dr. S.P. Sharma, Economic Analyst. Welcome to Money Talk, Dr. Sharma.
3: Thank you, Mr. Lake.
2: Dr. Sharma, to begin with, why does India need a new national

0: आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार।
1: एसपी सिंह जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना शुरू की गई किसानों की मदद के लिए, किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए और उनके रोजगार के अवसर बढ़े, उनकी आमदनी बढ़े, इसलिए तमाम लक्ष्य निर्धारित किए गए। लेकिन अगर बेसिक तौर पर समझना चाहें तो किन किन मुख्य उद्देश्यों को लेकर के इस योजना की शुरुआत की गई थी?
2: प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का जो मूल उद्देश्य है या जो सोच के किया गया, उसमें ये मान के चला गया कि देश के उन जिलों में जहां पर

0: कृषि उत्पादकता बहुत कम है और वहां पे फसलों की जो सघनता कह सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, खेती के लिए किसानों को कर्ज कम मिलता है, ऐसी जगहों पे जहां खेती बहुत बुरे हाल में थी कह सकते हैं या बहुत न्यूनतम वहां की उत्पादकता थी और वहां के किसानों की बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, उनको कर्ज नहीं मिलता था, उनके खेती करने का तौर तरीका उनके पास वैज्ञानिक तरीके नहीं थे, इन सबको कैसे ठीक किया जाए, ऐसे 100 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट यानी आकांक्षी जिलों को चिन्हित किया गया और जो 100 जिले चुने गए उनमें लगभग देश के सभी राज्यों के जिलों को शामिल किया गया है। इस योजना को संचालित करने के लिए 11 मंत्रालयों और विभागों की केंद्रीय की 36 योजनाएं और जिसमें राज्य की भी योजनाएं शामिल है और निजी क्षेत्र की भागीदारी भी है, यानी जो निजी क्षेत्र, राज्य की योजनाएं और केंद्र की योजनाएं, मंत्रालयों, विभागों, सारी योजनाएं जो किसानों को संबल प्रदान करती हैं, जो उनकी खेती को अच्छी बना सकती हैं, उनको लेकर के एक ऐसी योजना तैयार की गई ताकि वहां की उत्पादकता बढ़े, वहां के किसानों की स्थिति में कैसे सुधार हो सकता है। सबसे बड़े जोर दिया गया कि फसलों की उत्पादकता यानी उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, यील्ड कैसे बढ़े, उनकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े। दूसरी चीज दी गई कि फसलों में विविधीकरण, वहां पे कौन सी फसल बोई जाए इसका पता होना चाहिए वैज्ञानिक तरीके से। इसका पता लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है कि वहां की मिट्टी की जांच की गई और वह स्टेट या वह डिस्ट्रिक्ट या वह क्षेत्र किस क्लाइमेटिक जोन में है, यानी वहां क्लाइमेट की ही फसल की खेती को किया जाए। तीसरा था कि क्या सिंचाई की सुविधा वहां है या नहीं है, तो दोनों स्थितियों का आकलन किया गया। उसके अलावा किया गया कि जो वहां उत्पादन होता है वहां पे भंडारण की, गोदामों की उपलब्धता है या नहीं है, क्योंकि देखा गया कि जो तमाम ऐसे डिस्ट्रिक्ट हमारे देश में हैं जहां उत्पादन तो हुआ लेकिन भंडारण की सुविधा नहीं है। आफ्टर जो हार्वेस्टिंग होता है, पोस्ट हार्वेस्ट को बोलते हैं, जो खेत से खलिहान तक आने में जो फसलों का नुकसान हो जाता है वह बहुत बड़े स्तर पर होता था, 30-35% तक नुकसान हो जाता था पूरी फसल का। ऐसे में फसलों का नुकसान न हो और उसके अलावा किसानों को समय पर ऋण उपलब्ध कराना, क्योंकि माइक्रो फाइनेंसिंग या जो सरकारी फाइनेंसिंग बैंकों के थ्रू होती है उन तक पहुंच नहीं पाती है। इस तरह के डेटा पहले जुटाए गए और चिन्हित जब किया गया इन डिस्ट्रिक्ट को, इन जिलों के चिन्हित करने से पहले वहां के एक एक छोटे छोटे डेटा यानी जो आंकड़े वहां जुटाए गए कि यहाँ पर स्थितियां क्या है, कौन सी खेती होती है, कितने आय वर्ग के लोग हैं, कितने आमदनी होती है, कितना कुल उत्पादन होता है, सिंचाई का रकबा कितना है, कौन सी फसलों की खेती की जा सकती है और किसकी खेती हो रही है, तो इन सब चीजों का आकलन करने के बाद वैज्ञानिक तरीके से खेती को कैसे किया जाए, इसके लिए युवा कृषि वैज्ञानिकों को और जो बहुत कुशल टाइप के जो कृषि के अधिकारी थे उनकी ड्यूटी ऐसे जिलों में तैनात की गई, उनको लगाया गया ताकि वहां के किसानों को हर घड़ी वैज्ञानिक खेती के तौर तरीके मिले जिससे वो अच्छी खेती करें और उनका आमदनी बढ़े।
1: एसपी जी, 11 मंत्रालयों और विभागों के 36 केंद्रीय योजनाओं को राज्य की योजनाओं के साथ जोड़ा गया है और ये हम भली भांति परिचित हैं कि प्रत्येक राज्य की स्थिति अलग है, तो ऐसे में प्रशासनिक ढांचे के साथ साथ इन बातों को ध्यान में रखना भी जरूरी होता है कि स्थिति के हिसाब से धन का आवंटन हो, जवाबदेही भी एक बड़ा मुद्दा होता है इसमें, और समय पर काम पूरा हो, इसके लिए किस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं?
0: मैंने पहले ही कहा था कि जो वहाँ पे गवर्नेंस के लिए जो अधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ऐसे कुशल वैज्ञानिकों की, ऐसे कुशल लोगों की बैंकिंग में क्षेत्र में, इन सारे लोगों को एक ऐसी कमेटी बनाई गई, सतर्कता की कमेटी की बनाई गई और इसकी पूरी निगरानी के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर और स्टेट लेवल पर ऐसी निगरानी कमेटियां बनाई गई जो लगातार इन चीजों का आकलन करती रही कि जो ये काम हो रहा है उनको ये सब चीजें उपलब्ध हो रही हैं, जो सरकार सोच रही है योजनाओं में जो चीजें बनाई गई हैं उन तक पहुंच रही है कि नहीं। समीक्षा और निगरानी के लिए राज्य, जिला और राष्ट्रीय स्तर पर समितियां बनाई गई हैं और ये समितियां लगातार इन चीजों का आकलन करती हैं और समीक्षा करती हैं कि कहीं से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, ये जो सुविधाएं जिन किसानों को खेती को मिलना चाहिए वो मिल रही है या नहीं मिल रही है।
1: एसपी जी, अभी अगर हम इस चीज को देखेंगे, किसानों की बेसिक नीड्स क्या होती है, तो उन्हें इस दिशा में सहायता मिलती रहे लगातार, और बहुत सारे किसान भाई ऐसे भी होते हैं जिनके पास जानकारी नहीं होती है, उनको किस तरह से मदद पहुंचाई जा रही है?
0: देश के ऐसे जिलों में जिनकी हम बात कर रहे हैं वो बेहद पिछड़े हुए और वहाँ पे जानकारी का अभाव नहीं था या नहीं है कह सकते हैं। ऐसे में जो ये योजना बनाई गई, 6 साल की योजना है, 2025-26 में लागू की गई, ये 2030-31 तक चलेगी, 1,44,000 करोड़ यानी 1,50,000 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा ऐसे 100 जिलों में। यह अपने आप में एक बहुत अनूठी टाइप की योजना है जिसमें करीब 2.25 करोड़ किसानों को और इनमें उन किसानों

0: लिया जाएगा, जो छोटे किसान है या सीमांत किसान, यानी मझोले या छोटे किसानों को ही इसका लाभ देने की बात है। हमारे किसान कितने कैपेबल हैं, कितने जानकार हैं, कितने दृढ़ प्रतिज्ञ हैं अपनी खेती को लेके, अपने तैयारी के लिए। ऐसे में प्रधानमंत्री ने सबसे पहली योजना शुरू की कि हर किसान के खेत की मिट्टी की जाँच की जाए,
1: जी
0: यानी उस मिट्टी में कौन कौन से तत्व हैं, ताकि ऐसी खाद का या ऐसे चीजों का प्रयोग न किया जाए जिससे खेती खराब होती है, और कौन सी ऐसी खाद दी जाए जिसकी कमी है सिर्फ उतनी ही खाद देने से, यानी न्यूनतम खाद देने पर बेहतर बीज और मिट्टी हो, और इसके अलावा उनको सिंचाई की सुविधा दी जाए। हमें लगता है कि ये सुविधा सरकार ने, बेसिक सुविधा होती है किसानों को, जो यहाँ के किसानों को तो दी ही जा रही है, इसके अलावा अतिरिक्त तौर पर पीएम धन धान कृषि योजना के तहत ऐसे किसानों को मतलब उन्नतशील बीज, और जो उनके खेतों की या उनकी फसल की जरूरत के हिसाब से कौन सी खाद फर्टिलाइजर यूज की जाए, ये इसका उपयोग, और उनकी फसल की देख रेख के लिए कोई उसमें रोग तो नहीं लग रहा है, इसका भी बाकायदा कृषि वैज्ञानिक जाके उसका निरीक्षण करते हैं और इस
1: जी
0: बात का पता लगाते हैं कि कौन सा पेस्टिसाइड यूज करके इनको रोका जा सकता है। दूसरा है कि सिंचाई की सुविधा कितनी है, और सिंचाई की अगर सुविधा बेहतर नहीं है तो आज की तारीख में भारत सरकार ने एक ऐसी योजना चला रखी है, प्रधानमंत्री का एक नारा है अभी कह सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, यानी एक एक बूंद से ज्यादा उत्पादन लेना, यानी ड्रिप सिंचाई योजना, स्प्रिंकलर सिंचाई योजना, ऐसी योजनाओं को सरकार किसानों को सब्सिडी के आधार पर, समझिए 90% सरकार ही देती है और 10% किसान लगाता है, और ऐसे 100 जिलों में जो योजना में ये लाभ शायद 100% ही दिया जा रहा है सरकार की ओर से, हर किसान तक, हर खेत तक अच्छी सिंचाई की सुविधा मिल जाए, ताकि उसकी खेती के लिए सिंचाई यानी पानी की कोई कमी न हो, अच्छी फसल पैदा करने के जितने भी होते हैं। तीसरी बात, आपने एक बात पूछी कि कृषि यंत्रों और जो उनको टेक्नोलॉजी खेती में यूज होती है कैसे उपलब्ध इनको कराया जाए, इसके लिए सरकार ने 2026 में एक योजना शुरू की है, कृषि यंत्रों की अनुदान देने की प्रक्रिया 2026 और 27 इसी साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पहले चरण में शुरू कर दी गई है। इस प्रक्रिया के तहत किसान जो भी चिन्हित जिले हैं, उन जिलों के जो किसान हैं, इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और उनको अनुदान देने की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गई है।
1: एसपी जी, प्रधानमंत्री जी का ये एक मुख्य लक्ष्य रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना में महिलाओं और युवा किसानों की भागीदारी बढ़े, तो महिला किसानों, कृषि उद्यमियों और खेती में जो नए नए प्रयोग करने वाले युवा हैं, वो किस तरह से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं, वित्तीय व्यवस्था उनके लिए क्या हो सकती है और आधुनिक तकनीक जो उनको उपलब्ध कराई जा सकती है, इन तमाम बातों पर रोशनी डालिए, हमारे श्रोताओं को बताइए।
0: महिला जो किसान हैं और उद्यमी हैं, जो एग्रीकल्चर से जुड़े उद्यम में हाथ आजमाना चाहते हैं या काम करना चाहते हैं, सरकार इसके लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराती है, और देश के सारे जिलों में ये सुविधा उपलब्ध है, महिला उद्यमी और युवा उद्यमियों के लिए विशेष तौर पर लाभ दिया जा रहा है, ताकि गाँव से जो लोगों का पलायन शहरों की ओर हो रहा था क्योंकि रोजी रोजगार नहीं थे गाँव में, ऐसे में खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और खेती के साथ जुड़े जो उद्यम होते हैं, एग्री बिजनेस इसको कहते हैं या फूड प्रोसेसिंग जिसे कहते हैं, ऐसे छोटे छोटे इंडस्ट्री लगाने की सुविधा सरकार की ओर से दी जा रही है, और ऐसे में उद्यमी आगे आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, ढेर सारे स्टार्टअप देश भर में खुल रहे हैं। किसानों की सुविधा देने के लिए जो डिजिटल सुविधाएं दी जाती हैं, वह भी युवा उद्यमी अपने स्टार्टअप के माध्यम से किसानों तक पहुंचा रहे हैं, और तमाम ऐसे स्टार्टअप हैं जो मुफ्त में सूचनाएं देते हैं किसानों को। सरकार की ओर से देखिए किसान को
1: जी
0: यहाँ तक सुविधा दी जाती है कि हर सप्ताह उसे यह सूचना दी जाती है कि मौसम में कैसा बदलाव आने वाला है, मौसम कैसा रहेगा, इसके अलावा उनकी फसल किस तरह की तैयार हो गई, अगर उनकी फसल में किसी भी तरह की कीड़े लगने या रोग लगने की कोई आशंका हो, तो अपने फोन पर या जो आपके पड़ोस का आपके पंचायत में जो CSC खुला हुआ है, सामुदायिक केंद्र, वहां से आप अपनी सूचनाएं दे सकते हैं, अपलोड करा सकते हैं, या आपके पास मोबाइल फोन है उस पर ये डाल सकते हैं सूचना कि ये मुश्किलें पैदा हो रही हैं। ये सारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे किसान को उसके खेत पर उपलब्ध हो जाता है, और खास तौर से जो ये चिन्हित धन धान्य कृषि योजना के तहत जो डिस्ट्रिक्ट के किसान हैं, उनके लिए विशेष सुविधा दी गई है कि उन्हें अगर किसी भी तरह का मौसम में परिवर्तन होता है तो उस ब्लॉक के ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट में बैठे हुए CDO या DDO या जो बैठे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या जिला कृषि अधिकारियों को ये पहले से निर्देश रहता है कि किसानों को जा जागरूक बनाएं रोज और उन्हें सूचना दें कि कब क्या सूचना देनी है और कब कैसे उससे अपने फसलों के बचाव कर सकते हैं। और अगर मान लीजिए उनकी फसल का पैदावार अच्छी खासी हो जाती है तो अब वो अपनी फसल को लगाएं और

0: तैयार खलिहान में आ जाती है या घर में आ जाती है तो उसे वो बाजार तक कैसे ले जाएं और किन बाजारों में ले जाएं और कहां रखें। तो भारत सरकार की एक योजना है बहुत बड़ी जिसको चला रहा है सहकारिता मंत्रालय। सोचिए इस देश में दुनिया की सबसे बड़ी योजना चली है प्रधानमंत्री अन्न भंडारण योजना, जो हर पैक्स में जितने भी न्याय पंचायतें ग्राम पंचायतें या ग्राम सभाएं हैं उनके मार्फत पैक्स जो होता है प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो होती हैं उन्हें यह सुविधा दी गई है, सरकार की ओर से मदद दी जा रही है कि हर गांव में गोदाम बनाए जाएं। इससे भारत सरकार की बहुत बड़ी सब्सिडी कर की बचत होती है क्योंकि अनाज एक बार खरीदती है सरकार, फिर कहीं दूर ले जाके गोदाम में उसे रखा जाता है, फिर वहां से लाया जाता है, तो लाने ले जाने लादने उतारने तो लॉजिस्टिक और इसमें जितना खर्चा होता है वो सारा बचत होगी।
1: एसपी जी, एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने तमाम बातें बताई हैं लेकिन कहीं ना कहीं जो FPOs हैं यानी कि किसान उत्पादक संगठन, उनकी भी बड़ी भूमिका इसमें रहती है कि वो भी काफी मदद पहुंचाते हैं किसान भाइयों को, तो इनके बारे में किस तरह से मदद इनसे ली जा सकती है, कैसे उनका लाभ उठाया जा सकता है और क्या उनका आज के समय में रोल है खासतौर पे इस योजना के संदर्भ में?
0: देखिए मैं इसी योजना के संदर्भ में एक बात बताऊंगा आपको कि FPO का इस योजना के साथ एक संगम हुआ था 15 राज्यों और 33 जिलों के करीब 72 से ज्यादा जिसमें FPO शामिल हुए थे। इस कार्यक्रम में उत्पादकता बाजार तक पहुंच आय बढ़ाने से जुड़े अनुभव साझा किए गए जिसमें प्राकृतिक तिलहन दलहन मधुमक्खी पालन संरक्षित खेती सूक्ष्म सिंचाई संस्थागत कैसे लोगों को कर्ज मिले और डिजिटल खेती जैसे विषयों पर चर्चा की गई थी। और देखिए FPO है क्या, छोटे छोटे किसानों का एक संगठन बना गया, एक समूह है, एक संकुल है और इनकी जो समूह है मिलकर एक पूरा समूह बना लेते हैं और सारे छोटे छोटे खेतों को बड़े खेत बना दिए जाते हैं। उसके मायने यह होते हैं उसमें आप बड़ी टेक्नोलॉजी के बड़े जो यंत्र हैं उसका प्रयोग कर सकते हैं। हार्वेस्टर हुआ, जब हार्वेस्ट करने की बारी आती है तो बड़ी बड़ी मशीनें आती हैं तो उन बड़ी मशीनों का संचालन छोटे खेतों में नहीं हो पाती, तो FPO के गठन के साथ ही किसानों को एक ताकत दी गई कि वो जब मान लीजिए बाजार से कोई इनपुट खरीदना हो जैसे बीज लेना हो, फर्टिलाइजर लेना हो, पेस्टिसाइड लेना हो या अपना माल बाहर बेचना हो, ऐसी दशा में किसान व्यापारी से जो मोल भाव करता है वो बार्गेनिंग पावर किसान को बहुत कम होती है, उसके पास क्षमता नहीं होती अपने अनाज को रोकने की या किसी इनपुट की खरीदने में। लेकिन जब सामने वाली पार्टी को पता लगता है, इफको क्रिपको या बड़ी कंपनी को पता लगता है कि इनको तो कम से कम 3 ट्रक फर्टिलाइजर की जरूरत है, 2 ट्रक इनको अब सीड की जरूरत है, ये इतने बल्क में खरीदेंगे, भारी मात्रा में खरीदेंगे तो वो मोल तोल कर लेते हैं, तो जो चीज महंगी बिकने वाली होती है उसे सस्ती में खरीद हो जाती है। इससे ये होता है कि लागत कम आती है और बेचते समय मोल भाव करके भाव बढ़ाकर बेचते हैं किसी कंपनी को बेचते हैं तो ऐसे में किसान को फायदा होता है, यानी FPO का फायदा हुआ तो किसान का फायदा हुआ क्योंकि FPO उसका पार्ट है, किसान उसका हिस्सा है, तो किसान का जब हिस्सा है FPO में उस संगठन में तो जब FPO को फायदा होगा तो किसान को फायदा होगा।
1: एसपी जी, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: देखिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी।
2: अभी आप सुन रहे थे कृषि उत्पादकता को मजबूत करती प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार एसपी सिंह और आकाशवाणी संवाददाता निखिल कुमार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्राची प्रिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है। इन क्षेत्रों में व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल है। दोनों नेताओं ने आज एक सार्थक बातचीत की। भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं। नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि सरकार ने

0: अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है। नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष पूरे होने पर उसे बधाई दी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारामन ने आज ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में ये बात कही। गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को शरण लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। गृहमंत्री ने बिम्स्टेक देशों के बीच सहयोग के 5 अहम क्षेत्रों पर बल दिया, जिनमें ड्रग्स पर नियंत्रण, आतंकवाद रोधी और कानून सहयोग, भागे हुए अपराधियों की वापसी, साइबर सुरक्षा और साइबर अपराध की जांच और संस्थागत सहयोग तथा क्षमता निर्माण शामिल है। सूचना और प्रसारण तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने अपने पद और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में डॉ मुरुगन ने कहा कि दिहाड़ी मजदूर के परिवार से निकलकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में सेवा करने तक का सफर उनके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।
2: I want to strengthen my party to Tamil Nadu.
3: मैं तमिलनाडु में पार्टी को मजबूत करना चाहता हूं और 2029 के चुनाव की तैयारी के लिए जमीन तैयार करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री ने हमेशा तमिल गौरव को वैश्विक स्तर पर पहुंचाया है। मैंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है कि मुझे मंत्री पद से मुक्त कर तमिलनाडु भेजा जाए ताकि मैं वहां पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर सकूं।
2: To strengthen the party.
0: भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार इस स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हावीचेक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वावधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को विशेष गहन पुनरीक्षण SIR के मुद्दे पर देशवासियों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। आज नई दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है। भारत के आनंद कुमार वेलकुमार ने पराग्वे में विश्व स्केटिंग गेम्स में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi and his Canadian counterpart Mark Carney have agreed to build on the positive momentum and bilateral ties and work towards concrete outcomes across key areas of the strategic partnership. These areas include trade, energy, technology, security and people-to-people ties. Both leaders had a warm and productive telephonic conversation today. Mr. Modi said in a social media post that India and Canada are together contributing towards a more stable and prosperous world. Terming the chemistry between Prime Minister Modi and his Canadian counterpart Carney is excellent, Canadian High Commissioner to India Christopher Kuta said that the two nations never had as good a relationship as it is right now. Meanwhile, Canadian Foreign Minister Anita Anand will be on a 2-day visit to India from today.

0: that the government will continue to follow a disciplined fiscal approach while protecting spending on key areas such as welfare, education, and healthcare.
1: Rupee has reached a low, and RBI is making a lot of efforts through their regulatory powers to make sure that rupee stays stable. They are not trying to fix the rupee. They are trying to stop the volatility. And for that, there is a lot of effort from RBI's side. The latest one was also a set of measures taken 2 days ago. And as a result, you saw the rupee sort of holding on and probably appreciating in value 1% or something. So these efforts from RBI, I understand, will continue.
0: Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs, Dr. L. Murugan, has resigned from both his ministries as well as membership of Rajya Sabha. In a letter to Prime Minister Narendra Modi, Dr. Murugan said that from the son of a daily wage labourer to serving in the Union Council of Ministers under his leadership has been the greatest privilege of his life. Talking to media, Dr. Murugan said in the letter he has mentioned that he wishes to return to the grassroots and dedicate full time to strengthening the BJP in Tamil Nadu. Home Minister Amit Shah today said that BIMSTEC countries should resolve to ensure that no part of the region provides any scope for terrorist networks to seek shelter, recruit members, undergo training, raise funds and carry out activities against neighbouring countries. Chairing the first meeting of BIMSTEC Home Ministers in New Delhi, Mr. Shah highlighted that India has a policy of zero tolerance against terrorism. India today reiterated that Ladakh is an integral and inalienable part of India, and no amount of denial by the Chinese side can change this established fact. In response to media queries regarding recent comments made by the Chinese side on Ladakh, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said the press release by Home Affairs Ministry is self-explanatory. The announcement mentions that the 28 places located in the Union Territory of Ladakh have been identified with standard place and feature names on the official map of the Survey of India. UPI merchant discount rate MDR on select person to merchant transactions will be implemented after Diwali. In a social media post, National Payments Corporation of India said that the UPI and Services Steering Committee today decided that keeping in mind the festive season, MDR on select person to merchant UPI transactions will be implemented immediately post Diwali. India's Anand Kumar Velkumar has won the bronze in the 500 meter sprint at the World Skate Games 2026 at Asunción, Paraguay, adding another medal to his expanding collection on the international speed skating stage. The 23-year-old speed skater from Tamil Nadu finished on the podium in 40.8.56 seconds, continuing his incredible run following his unprecedented accomplishments at the 2025 World Speed Skating Championships. And that is the end of this news bulletin.
2: नमस्कार आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अमन यादव मुख्य समाचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार ऊर्जा प्रौद्योगिकी सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत भारत ने दोहराया लद्दाख देश का अभिन्न अंग चीन के इनकार से तथ्य नहीं बदलेगा रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने पर पाकिस्तानी सरकार की निंदा और आनंद कुमार विलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने द्विपक्षीय संबंधों में सकारात्मक गति को आगे बढ़ाने और रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख क्षेत्रों में काम करने पर सहमति जताई है इन क्षेत्रों में व्यापार ऊर्जा प्रौद्योगिकी सुरक्षा और दोनों देशों के लोगों के बीच संपर्क शामिल हैं दोनों नेताओं के बीच आज सौहार्दपूर्ण और सार्थक बातचीत हुई भारत में कनाडा के उच्चायुक्त क्रिस्टोफर कुटूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के बीच बेहतरीन तालमेल का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्तमान में दोनों देशों के संबंध बहुत अच्छे हैं नई दिल्ली में कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की भारत यात्रा पर श्री कुटूर ने दोनों देशों के नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों के बारे में बात की जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर और अनीता आनंद के बीच हुई बैठकें भी शामिल हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने अपने शासन के दृष्टिकोण और कार्य संस्कृति में पावर टू एम्पावर के सिद्धांत को अपनाया है नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम में श्री मोदी ने कहा कि भारत की प्रगति सामूहिक विकास और साझा अवसरों पर टिकी हुई

0: है। उन्होंने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के बीच भारत का आर्थिक विकास एक मजबूत नींव पर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है।
1: भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। भारत में 100 से ऊपर भाषाएं हैं। करीब 80,000 रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पब्लिकेशंस हैं। 1,000 से ज्यादा सैटेलाइट टीवी चैनल्स हैं। हमारे यहाँ अलग अलग मुद्दों पर खुलकर बहस होती है, अलग अलग दृष्टिकोण पर जनता चर्चा करती है और वर्तमान समय में इसमें जिसने एक बड़ी भूमिका निभाई है वो है डिजिटल पावर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, डेटा, ज्ञान और नवाचार शक्ति के महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं।
1: क्या नॉलेज केवल कुछ लोगों की ताकत बनी रहेगी या सबकी क्षमता बढ़ाएगी? यहीं से एक नया विचार जन्म लेता है और ये विचार है पावर टू एम्पावर, पावर टू कंट्रोल से आगे पावर टू एनेबल, पावर टू कॉम्पीट से आगे पावर टू कोलैबोरेट, पावर टू सक्सीड से आगे पावर टू हेल्प अदर सक्सीड।
0: प्रधानमंत्री ने भारत में ब्लूमबर्ग के 30 वर्ष होने पर उन्हें बधाई दी और भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने पर बल दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि आगामी केंद्रीय बजट की तैयारियों के दौरान सरकार दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ कर हटाने के सुझावों पर विचार करने के लिए तैयार है। श्रीमती सीतारमण ने आज नई दिल्ली में ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमी फोरम के दौरान अपने संबोधन में यह बात कही। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत और विदेशों के निवेशक पूंजीगत लाभ पर कर और प्रतिभूति लेन देन कर सहित विभिन्न परिसंपत्ति वर्गों पर लगने वाले करों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कल्याणकारी योजनाओं, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे प्रमुख क्षेत्रों में खर्च को सुरक्षित रखते हुए वित्तीय अनुशासन बनाए रखेगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि बिम्स्टेक देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस क्षेत्र का कोई भी हिस्सा आतंकवादी नेटवर्क को पनाह लेने, सदस्य बनाने, ट्रेनिंग लेने, फंड जुटाने या पड़ोसी देशों के खिलाफ गतिविधियां करने का अवसर न दे। नई दिल्ली में आज बिम्स्टेक गृह मंत्रियों की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की कतई बर्दाश्त न करने की नीति है। श्री शाह ने कहा कि बिम्स्टेक क्षेत्र एकीकरण, आर्थिक सहयोग और सामूहिक सुरक्षा के लिए एक जरूरी मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रियों के तौर पर उनकी यह जिम्मेदारी है कि वे बिम्स्टेक को समावेशी विकास और सुरक्षा का मॉडल बनाएं। गृहमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सीमा पार संगठित अपराध और अवैध ड्रग्स तस्करी जैसी चुनौतियों में से निपटने में सहयोग के लिए बिम्स्टेक कन्वेंशन को पूरी तरह लागू करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।
2: आतंकवादियों, उनके सहायकों, आपराधिक नेटवर्क, वित्तीय चैनल और सीमा पार गतिविधियों पर सत्यापित तथा कार्रवाई योग्य सूचना का समय पर आदान प्रदान हमारी सामूहिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है।
0: भारत ने कहा है कि आतंकवादियों द्वारा किए गए अपराधों और अत्याचारों को निर्धारित कानूनी मानदंडों पर खरा उतरने की स्थिति में मानवता के विरुद्ध अपराधों के दायरे में शामिल किया जाना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 6वीं समिति के 81वें सत्र में भारत का पक्ष रखते हुए काउंसलर आर मिथिली ने कहा कि ऐसे कृत्यों के लोगों पर गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। भारत ने कहा कि मानवता के विरुद्ध अपराधों पर कोई नया बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता मौजूदा कानूनी व्यवस्थाओं का पूर्ण हो चाहिए, न उनकी पुनरावृत्ति। भारत ने इस बात पर बल दिया कि गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों और बड़े पैमाने पर किए गए अत्याचारों के मामलों में न्याय सुनिश्चित करना और दोषियों को जवाबदेह ठहराना देशों की जिम्मेदारी है। यह कार्रवाई उनके राष्ट्र कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में चेक गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री कारेल हाविलचिक से मुलाकात की। श्री सिंह ने कहा कि दोनों देश आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए भारत चेक संयुक्त रक्षा समिति के तत्वाधान में सहयोग को आगे बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों की बीच साझेदारी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित है।
3: भारत और चेक गणराज्य के बीच आपसी सम्मान, लोकतांत्रिक मूल्यों और नियम आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिए प्रतिबद्धता पर आधारित गहरे और पुराने संबंध हैं। बदलते समय के साथ भी हमारी ये दोस्ती कायम रही है। दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने की भी अपार संभावनाएं हैं।
0: भारत ने दोहराया है कि लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग है और चीन द्वारा किसी भी प्रकार का इनकार स्थापित तथ्य को नहीं बदल सकता है।
4: लद्दाख पर चीन की हालिया टिप्पणियों पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि गृह मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति अपने आप में स्पष्ट है। विज्ञप्ति में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 28 स्थानों की पहचान भारतीय सर्वेक्षण विभाग के आधिकारिक मानचित्र में मानक स्थान और भौगोलिक विशेषताओं के नामों के साथ की गई है। ये कार्य

0: लद्दाख प्रशासन और स्थानीय पक्षों के परामर्श से किया गया है। श्री जायसवाल ने कहा कि इन स्थानों को आधिकारिक मानचित्र में दर्ज करने का उद्देश्य उनकी सटीक पहचान सुनिश्चित करना और आम लोगों में उनके बारे में जागरूकता बढ़ाना है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: सऊदी अरब स्थित भारतीय दूतावास ने वहां रह रहे भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने और हवाई हमले की स्थिति के दौरान घरों में रहने की सलाह दी है। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय समुदाय की सहायता के लिए 24 घंटे सक्रिय नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किया है। भारतीय नागरिकों को एयरलाइंस के संपर्क में रहने और उड़ानों की ताजा जानकारी लेने की सलाह दी गई है। दूतावास ने कहा है कि 10 अक्टूबर को रियाद हवाई अड्डे पर हुए हमले में घायल भारतीय नागरिकों में 4 लोग अब भी आईसीयू में हैं और 4 सामान्य वार्ड में उपचार करा रहे हैं। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। एक प्रमुख मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में आपातकाल लागू करने के सरकार के फैसले की निंदा की है। संगठन ने इसे सेना के समर्थन से सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश जताया है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार फाउंडेशन IHRF ने खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी और हिरासत में लिए गए अन्य नेताओं को रिहा करने की मांग की है। संगठन ने कहा कि सरकारी आदेशों के जरिए लोगों के अधिकारों को निलंबित नहीं कर सकता। IHRF का यह बयान खैबर पख्तूनख्वा में राज्यपाल शासन लागू किए जाने के बाद प्रांतीय सरकार के कई मंत्रिमंडल सदस्यों को हिरासत मिले जाने के बाद आया है। भारत के अनंत कुमार विलकुमार ने पैरागुए में आयोजित विश्व स्केटिंग गेम्स 2026 में 500 मीटर स्प्रिंट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। तमिलनाडु के 23 वर्ष स्पीड स्केटर ने 40.856 सेकंड में पोडियम पर स्थान हासिल किया। विलकुमार ने 2025 चैंपियनशिप में भी 500 मीटर में कांस और 1000 मीटर और मैराथन में स्वर्ण पदक जीता था, जिससे वे 2 बार के विश्व चैंपियन बन गए हैं। भारतीय सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा को सितंबर 2026 का ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। वहीं भारतीय कप्तान शुभमन गिल को रिकॉर्ड 5वीं बार ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी व्यापार, ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, सुरक्षा तथा लोगों के बीच संबंधों में रणनीतिक साझेदारी प्रगाढ़ करने पर सहमत। भारत ने दोहराया लद्दाख देश का अभिन्न अंग, चीन के इनकार से तथ्य नहीं बदलेगा। रियाद स्थित भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए नया परामर्श जारी किया। खैबर पख्तूनख्वा में आपातकाल लागू करने पर पाकिस्तानी सरकार की निंदा। और आनंद कुमार विलकुमार ने विश्व स्केट गेम्स की 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही विश्व दर्पण का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।